0: अध्यात्म, आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को प्रभु के नजदीक ले जाना, इन सब की बातें बहुत होती हैं, लेकिन हम इनको समझते कितना है, थोड़ा वो बताइए ना, आपकी समझ से बताइए। मैम देखिए, आपने दुनिया देखी है और आप अभी भी लगातार बिजी हैं, लगातार प्रोडक्टिव कामों में लगे हुए हैं, तो कुछ तो समझा है आपने, ऐसी बात तो नहीं है। तो अध्यात्म आपकी निगाहों में क्या चीज है?
1: मेरे हिसाब से जो भी काम हो, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, जिस काम को हम लगन से, दिल से, मेहनत से करें, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा वर्शिप, जिसको हम कहते हैं, नहीं हो सकता। हाँ, हम मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, चांटिंग करें, वो सब बातें अलग है, लेकिन अपने कर्म को ही धर्म समझना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी वही है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं एक समय था जब मैं चेंबूर में रहा करती थी और वहां गोवंडी स्टेशन एक था, छोटा सा, और वहां से मुझे ट्रेन पकड़कर बीटी जाना पड़ता था क्योंकि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती थी। तभी वहां पे लेडीज का फर्स्ट क्लास जो आता था उसके सामने एक मोची बैठा करता था, ठीक है,
0: कॉबलर, कॉबलर,
1: हाँ जी, कॉबलर, कॉबलर,
0: राइट।
1: और मैं सच बताऊं, जब भी जल्दी पहुंचती ना, मेरी निगाह उससे हटती नहीं थी, इसलिए कि वो उसकी नजर हर एक के पैरों की तरफ ही रहती थी, कभी उसने ऊपर ताक के मेरी तरफ देखा नहीं है। मैं बहुतों दिन उनके पास खड़ी होकर उनको देखा करती थी, और जिस लगन से, जिस आई वुड से पैशन, यू नो, जैसे एक स्कल्प्टर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, उस तरह से वो हर जूती को पॉलिश कर रहे हो या तो फिर उसमें कोई सिलाई कर रहे हो, इतने प्रेम से वो करते थे ना, मेरे ख्याल से उनके लिए वही श्रद्धा थी, वही पूजा थी, और उनसे मैंने बहुत सीखा। ऐसी बात है कि द मेन थिंग इज एज अ जर्नलिस्ट, एज अ राइटर, आपकी निगाह हर तरफ होनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व द स्पिरिचुअल इन द रियल, इन द नॉर्मल। स्पिरिचुअल एक कुछ अलग, समथिंग स्पेक्टेक्युलर, समथिंग डिफरेंट नहीं है। अपनी जिंदगी को ढंग से जीना इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी। एक्सेप्टिंग वेयर यू आर, गिविंग इट योर बेस्ट, एंड नॉट लूजिंग फेथ एंड होप दैट टुमारो विल बी बिगर, ब्राइटर, बेटर।
0: राइट, ब्यूटिफुल। दोस्तों, आपने गौर किया किस तरीके से गांगुली मैम ने एक एग्जाम्पल लेके, कॉबलर का, एक मोची का एग्जाम्पल लेके हमें समझाया है अध्यात्म क्या होता है। इससे ज्यादा रिलेटेबल, इससे ज्यादा समझा के बताने की भाषा शायद मुश्किल से मिलेगी। बहुत खूब गांगुली मैम, बहुत बहुत आभार है आपका। चलिए, इस बारे में जब तक हमारे मित्र, हमारे दोस्त सुनने वाले विचार करें कि क्या कहा आपने, क्या उनकी भी जिंदगी में कुछ इस तरीके के व्यक्ति दिखाई दिए थे, तब तक हम एक प्यारा सा भजन सुनते हैं और फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर भजन। और गांगुली मैम, आगे बढ़कर पूछना चाहूंगा, ये बात आध्यात्म की हो गई, धर्म क्या होता है आपकी निगाह में, हमें समझाइए।
1: देखिए, धर्म जो चीज है इज पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, इन द सेंस कि आप बचपन में माँ बाप से या तो घर में रहने वाले बुजुर्गों से जो सीख लेकर आगे बढ़ते हो, इसी छोटे छोटे नियम में धर्म छुपा रहता है। जैसे कि हम जब छोटे थे, नियम ये था कि आप घर आओ तो पहले हाथ पैर धो लो, उसके बाद भगवान के वहां दिया जला हुआ रहता था, वहां खड़े होकर छोटी सी प्रार्थना जो भी है वो करो। और हमेशा मुझे ये बात अच्छी लगी कि उस प्रार्थना में सिर्फ स्वार्थ नहीं था, मतलब दो तीन श्लोक हम बोला करते थे। एक तो शाम का आगमन हुआ है तो शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे अंदर जो भी किसी के प्रति कटु भाव हो, दुश्मनी हो, उसका विनाश करने के लिए मेरे घर में दीप जलता है। अब देखिए, छोटी सी प्रार्थना है लेकिन उसमें कितनी बड़ी समझ छिपी हुई है। उसी तरह से हमेशा सबके कल्याण के लिए एक श्लोक हम छोटे से बचपन से ही बोलते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सब अच्छा ही देखें, सब विपद से बीमारी से मुक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किसी को कोई किसी प्रकार का दुख ना आए। इस तरह से जब हम जुड़ते हैं धर्म से, मतलब के समाज में जितने लोग हैं अच्छे बुरे सब रहते हैं, लेकिन हर एक की तरफ हमारी नजर में कटुता न हो, दुश्मनी न हो, हम उन्हें समझने की कोशिश करें। जैसे कि जर्नलिज्म में द फर्स्ट थिंग वी हैड टू लर्न ऑन जॉब वाज टू बी एबल टू वॉक अक्रॉस द फ्लोर, स्टैंड इन द अदर पर्सन शूज एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम हिज और हर पर्सपेक्टिव। अब एक भूखा बच्चा मिठाई के दुकान से मिठाई लेकर क्यों भागता है? भूख अगर आपने महसूस नहीं की हो, आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना? ठीक उसी तरह से हर चीज को समझ के फिर आगे बढ़ना। मेरे ख्याल से संसारी रूप में धर्म वही है। देयर आर ऑफ कोर्स धर्म के मोर यू नो आई वुड से ऑर्गेनाइज्ड धर्म जो है, मतलब जो कि नित्य नेम होते हैं, सुप्रभात से लेकर मंगल गीत तक हर मंदिर में, हर मठ में, या तो घर में पूजा हवन होता है, वो एक अलग प्रकार की चीज है। लेकिन इवन इन दैट, जैसे एक पूजा जो है उसमें अगर आप ठीक तरह से देखो तो 16 उपचार होते हैं, 16 उपचार मिलाकर पूजा बनती है, एक पूजा का रिचुअल जिसको बोलते हैं। लेकिन हर रिचुअल में, हर उसमें, उसके हर प्रोसीजर में धर्म छिपा हुआ है। किस तरह से, मतलब के बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं समझाने के लिए। जैसे कि आप जो दीप जलाते हो भगवान के सामने, उसमें तेल वैराग्य का हो, उसमें जो ज्योत जलती है वो श्रद्धा की हो, यू नो, इस तरह से मेरे हिसाब से आई ट्राई टू ब्रेक डाउन धर्म फ्रॉम द कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स इनटू प्रिंसिपल्स विच इम्प्रूव अवर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ एंड लिविंग इट टू अवर बेस्ट। मेरे लिए यही धर्म है।
0: वाओ, बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गांगुली मैम। सिंपल भाषा में साधारणतया समझने वाली चीज शैलजा मैम ने हमें समझाई है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, एक नया प्रस्पेक्टिव। एक नया तरीका देखने का। और ये सब क्यों? अब इसी बारे में गांगुली मैम आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा है, आई विल जस्ट कम बैक टू यू, पर एक छोटा सा भजन आत्मिक शुद्धि के लिए, आपकी बातों को अपने दिमाग में निसार करने के लिए थोड़ा सा रुकते हैं और एक भजन सुनकर वापस आए।
1: जी बिल्कुल।

0: जी, बहुत बहुत प्यारा सा भजन और बहुत सीधी सीधी सी बातें। शैलजा मैम, जो दिमाग में मेरे सवाल उठा था वो ये कि ये आध्यात्म हो गया, ये धर्म हो गया, और आपने एग्जाम्पल देकर हमें इस चीज को समझाया भी, फिर भी बहुत, क्योंकि ये बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, ये इतना आराम से हमारे अस्तित्व में उतर जाने वाली चीज नहीं है, तो इसको एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये आध्यात्म और धर्म भला हम इंसानों को क्यों चाहिए? Why do we need this? क्या जरूरत क्या है इसकी? चल तो रही है जिंदगी, बच्चे थे, बड़े हो गए, मर गए, ओवर एंड आउट, लेकिन क्यों ये आध्यात्म, ये धर्म, क्या करें हम इनका मैम?
1: देखिए, पूरे दिन सुबह से लेकर रात को आंखें सोने के लिए जब बंद होती हैं तक अगर हम दुनियादारी में ही फंसे रहे तो फिर हमारे अंदर हर तरह की कुबुद्धि, जिसको बोलते हैं ईर्ष्या, जो है या तो और पाने के लिए बहुत बहुत चाहत है, या तो जो हमें नहीं मिलना चाहिए हमारे बाउंड्री के बाहर हो उसके लिए भी एक ग्रीड है, ऑल द षड रिपु जिसको बोलते हैं, यू नो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब हमें घिर कर पकड़ के लेते हैं। लेकिन अगर इसके बीच थोड़ा सा समय हम एक ऐसी एक्टिविटी के लिए, एक ऐसे काम के लिए रखें जहां पर हम हमारे स्वार्थ को, हमारी जरूरतों को नहीं आने देते हों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारी परंपरा में, सनातन धर्म में चांटिंग जो है, इसी इष्ट देवता, जो देवता आपको पसंद है, गणपति है, कृष्ण है, राम है, जो भी है, उनके नाम का स्मरण करना, या तो फिर किसी तीर्थ क्षेत्र में जाना, क्षेत्र की अपनी महिमा होती है, वहां जाकर इंसान ज्यादातर अपनी वो छोटी छोटी जो मैं कहूँ ऑल द जंबल्स एंड मंबल्स दैट मेक अप द आई वुड से प्रॉब्लम्स ऑफ बीइंग स्टक इन सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, वो सब मिट जाते हैं, यू बिकम वन विथ द स्पिरिट ऑफ द प्लेस, वहां की जो शांति है, वहां की जो पूरी पवित्रता है, मंगलता है, उसमें खो जाने से मन को एक अनोखी शांति मिलती है, एक अनोखा सुकून मिलता है, जो कि जाती जिंदगी में कोई चीज बहुत बहुत चाहकर मिल जाने पर मिलता होगा, या बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स पाने पर मिलता होगा, छोटी मोटी चीजों में मिलता है, लेकिन ये जो रहता है, ये जो शांति रहती है, वी कैनॉट पिन इट टू एनी कॉज, इट इज द एटमोस्फियर दैट ब्रिंग्स यू दैट पीस विच यू डिजर्व, क्योंकि हर महात्मा ने यही कहा है कि आप वो नहीं हो जो आप अपने आप को समझते हो, यू आर नॉट दैट लिमिटेड पर्सन, यू आर अनलिमिटेड सत चित आनंद, यही आपका असली स्वरूप है, हमेशा खुश रहना, हमेशा इन द मोमेंट रहना, और हमेशा उस चेतना को लेकर रहना कि हम में और आप में कोई अंतर है ही नहीं, क्योंकि आप भी और हम भी उसी दिव्य शक्ति का एक छोटा सा पुतला है, मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम एक्टिविटी जो आपके मन को एक तरह की लॉन्डरिंग करती है, जैसे कि हम मंदिर जाते हैं तो बाहर हमारे स्लिपर्स शूज रखते हैं, उससे ही एक तरह से देयर इज अ फिजिकल गिविंग अप ऑफ द डर्ट विच अदरवाइज कोट्स अवर फुटवेयर, उसी तरह से अंदर जाते हैं, वहां खो जाते हैं उस पूजा पाठ में, उस द इंसेंस, द ब्यूटिफुल मूर्तिज, द मार्बल, द प्रसाद, All that creates a certain quiet in you, एक स्थिरता, एक शांति. All these things are very important for us to get back our poise, our composure. क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक हमारी सोच स्थिर नहीं होगी, सही नहीं होगी. ये मेरा मानना है। इसीलिए ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। और एक इन अ स्मॉलर वे घर में भी आपको जो अच्छा लगे, विच एवर गॉड यू लाइक, ऐसा नहीं है कि सनातन धर्मी होना चाहिए। मैंने अभी अभी जीवनी लिखी है हरिओम शरण महर्षि, भजन महर्षि कहा करते थे उनको, आप यूट्यूब पर देखिएगा, उनके हजारों भजन मिलेंगे विथ मिलियन मिलियन व्यूज। तो उनका एक बहुत सुंदर भजन है जिसके बोल ऐसे हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। नाम कोई भी हो, आपकी पूजा पाठ की जगह कोई भी हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, जो भी हो, श्रद्धा भक्ति एक है। देयर इज नो डिफरेंस। अब किसी को एक्सीडेंट के बाद एक रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत हो तो वो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो नहीं देखेंगे कि ये हिंदू का है या मुसलमान का है या क्रिश्चियन का है।
0: Right.
1: वो देखेंगे ब्लड ग्रुप सही है क्या नहीं। इस तरह से अल्टीमेटली इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव दैट कंपोजर फॉर सम टाइम इन द डे, और उसके लिए इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव अ सर्टन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिस, जो मेडिटेशन हो, पूजा हो, पाठ हो, चांटिंग हो, जो भी हो, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द डे सो दैट यू डोंट गेट पोल्यूटेड ओनली बाय योर मटेरियल नीड्स।
0: राइट, सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा गहराई में बहुत ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। साफ साफ दिखाई देता है, धुंध छट जाती है, फॉग हट जाता है, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू सो मच। चलिए मैम, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा से भजन का आनंद उठाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें और वापस आएं।
1: जी जी

0: बहुत सुंदर। बात आध्यात्म की हो गई, बात धर्म की हो गई और बात हमारी जरूरत की हो गई। व्हाई नॉट, धर्म और आध्यात्म हमारे लिए क्यों है, क्यों नहीं है। अब एक और इसी से जुड़ी हुई श्रृंखला है जिसके बारे में समझ लेते हैं। जब हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करने बैठते हैं, अब चलिए आध्यात्म किसी किताब में कहीं लिखा हुआ कोई चैप्टर नहीं है, धर्म भी किसी किताब में कोई चैप्टर नहीं है, एक बड़ी चीज है, इट्स मच मच बिगर देन ऑल ऑफ अस। लेकिन इसको कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, मतलब जी चलो मैं, मेरे को लगा शैलजा मैम ने आज समझाया और जी मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं आज से, और धर्म भी धर्म का पालन भी करूंगा। वेरी नाइस। सो अब मैं तो बड़ा समझदार हूं ना, तो शर्म आती है शैलजा मैम से पूछने में। तो मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि मैं कुछ करता हूं। कुछ करने में सबसे सिंपल तरीका है, प्रार्थना करने बैठ गया और ध्यान लगा लिया। तो मैम जरा प्रार्थना को और ध्यान को भी समझाइए। अब सच्चाई यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, कैसे लगाऊं ध्यान और प्रार्थना।
1: देखिए, सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक ऐसा वक्त निकालें, चाहे हम 10 मिनट से शुरू करें, लेकिन ऐसा वक्त निकालें जब हमारे ऊपर बाहर की चीजों का, बाहर के लोगों का कोई दबाव ना हो। आई एम नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड, ये सबसे पहला रूल मेरे हिसाब से। इफ यू वॉन्ट टू एंटर इन टू योर ओन इनर वर्ल्ड, ओके, तो सबसे पहले आई विल डिसाइड कि हाँ, मेरी दिनचर्या में सुबह सबके आगे, अगर हम औरों के साथ रहते हो तो सबसे आगे मैं आधा घंटा आगे उठ के थोड़ा साफ सफाई कर ले, और चाय पीनी है तो एक कप चाय भी पी लीजिए, और फिर 10-15 मिनट यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरप्टेड, ऐसा पहले समय का एक स्लाइस, मैं कहूंगी एक छोटी सी क्वांटिटी आप अपने लिए संभाल के निकाल लें, और धीरे धीरे सबको समझ आएगी कि अगर कोई और उठे भी कि दिस टाइम इज नॉट फॉर डिस्टर्बिंग दिस पर्सन, यू कैन नॉट इंटरप्ट, यू कैन नॉट ट्रेसपास। तो पहले समय निकाल लिया, फिर मुझे बैठना कहाँ है, ये जगह भी आप खुद ठीक करें,

0: छोटा सा, उसको आप अपना मंदिर ही समझ लें, एक्सक्लूसिव जगह जहां पर जिसके पास जाते जाते ही आप देखेंगे कि आपके मन की अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हो जहां आपके इष्ट देवता हैं, आप अपने ही देवता के निकट जा रहे हो, तो आपको लगने लगेगा उस टाइम पर, उन 15 मिनटों में, कि बाकी सब जो भी चीजें हैं वो दुनियादारी के हैं, वो आई विल मैनेज, पहले मैं यहां से शक्ति बटोर लूं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, आजकल तो यूट्यूब के जरिए, गूगल जी के जरिए जितने श्लोक, छोटी बड़ी प्रार्थनाएं आपको मिल जाएंगी, आपके अपने इष्ट देवता के जो भी आपको या तो याद होगा, या तो किसी पंडित जी से, या तो फिर अपने ही बुजुर्गों से, या तो फिर मंदिर से, या तो फिर गूगल से, यूट्यूब से, आपको मिल ही जाएगा एक छोटी सी प्रार्थना। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, एक प्रार्थना सबके कल्याण के लिए हो। इससे क्या होता है, मन थोड़ा खुल जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअल होने का, जो आप पूछ रहे थे कि मुझे कुछ करना है, सभी महात्माओं ने कहा है कि स्पिरिचुअल होने के तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक हुआ सुमिरन, जो मैंने जिसका मैंने तरीका अब आपको बताया कि उन 15 मिनटों में मैं सुमिरन करूं, धीरे धीरे उन प्रार्थनाओं को मैं समझूं, धीरे धीरे उनका पाठ मैं अपने आप बिना पुस्तक की ओर देखे कर पाऊं, धीरे धीरे मेरी उस तरफ श्रद्धा, उस तरफ लगन बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके लिए द डिसिप्लिन ऑफ रेगुलरिटी, एंड बिकॉज इट इज योर ओन, सो ओनली यू कैन गिव इट दैट इम्पोर्टेंस। कोई और आपको नहीं बोलने वाला, अरे 5:30 बज गए, आप अभी तक यहाँ पर हो, अपने मंदिर पे नहीं गए, इस तरफ कोई नहीं पूछने वाला। ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने निर्णय लिया है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग। तो ये हुई, सो सुमिरन एक हुआ, साधना उसके बाद में आती है, क्योंकि ये मेडिटेशन, द वर्ड हैज बीन टोटली अब्यूज्ड एंड ओवर यूज्ड, इतना आसान नहीं है। मेडिटेशन करना इज टू मेक योर माइंड फ्री ऑफ ऑल थॉट्स। आप एक एक्सपेरिमेंट हिसाब से, आप कहीं सफर कर रहे हो, आंख बंद करके देखिए फॉर हाउ लॉन्ग योर माइंड रिमेन्स लाइक अ ब्लैंक ब्लैक बोर्ड, नॉट इवन अ माइक्रोसेकेंड। अरे वो करना भूल गए, अरे इसको फोन करना था, उसकी चिट्ठी आनी थी, उसको मेल भेजना, ये सब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते रहेंगे। सो फर्स्ट वो स्थिरता, एक जगह जाके 15 मिनट विदाउट मूविंग बैठना, वहां के वो नियमित रिचुअल्स छोटे छोटे अपने आप बनाए हुए करना, वो प्रार्थना करना, और फिर वहां बैठ के अपने ही देवता से कहना कि अभी मुझे जरा स्थिर होकर आपके ही विचार में खोने की क्षमता दो।
1: जी
0: तब जाकर शायद 1 मिनट के लिए ऐसा होगा कि आप और कुछ नहीं सोच रहे हो, और एक तरह से फिजिकली, जैसे टीचर डस्टर लेकर ब्लैक बोर्ड साफ किया करते थे, उस तरह से आपको सोचना है कि मेरा मन एक ब्लैक बोर्ड है, जो विचार यहाँ पे जगह उनकी नहीं है, अगर आते हैं तो मैं उनको इमेजिनरी विजुअल, यू विजुअलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग टू मेडिटेट, तो विजुअलाइजेशन करके मैं हाथ में एक डस्टर लेके उस विचार को निकाल देता हूँ दरवाजे के बाहर, आप वहां रुको, मैं जब बाहर आऊंगा या आऊंगी तब आई विल डील विथ यू। इस तरह से धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा सुमिरन हुआ, साधना या मेडिटेशन कम्स लेटर, सुमिरन से शुरुआत, और वेरी इंपॉर्टेंट इज सेवा। सो द 3 S's, यू नो, सेवा, सुमिरन, साधना। सेवा मतलब क्या, आप कहीं भी किसी भी संस्था से, इट कैन बी एन ऑर्फनेज, इट कैन बी एन ओल्ड एज होम, इट कैन बी अ पीडियाट्रिक वार्ड ऑफ कैंसर चिल्ड्रन एफ्लिक्टेड विद कैंसर, कहीं भी आप वॉलंटियरिंग करना शुरू करो, महीने में एक बार करो, लेकिन शुरू करो कि 1 घंटा आप ऐसे लोगों को

0: दे रहे हो जिनकी बेबसी आपसे कई गुण ज्यादा है। एक बार वो करने लगो तो धीरे धीरे आपको ही लगेगा कि मेरे प्रॉब्लम इतने बड़े तो नहीं है, दुनिया में कितना कष्ट है, कितना दुख है। दिस सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गुरुद्वारा में तो देखा ही होगा किस तरह से लोग करते हैं, और हमारे हमारे बहुत सारे मठों में भी चप्पल स्टैंड मैनेज करना, फॉर एग्जाम्पल, दूसरों के जूते एक सही जगह पर रखना, उनको वापस। इसमें जो अंदर से एक तरह की ह्यूमिलिटी आती है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टुडे विथ फ्यूअर चिल्ड्रन, मोर मनी इन हैंड, द ईगो हैज अ फ्री वॉक, यू नो। और उससे क्या होता है, अध्यात्म में इंटरेस्ट या तो होता ही नहीं, और जो भी रहता है छोटे बचपन में सीखा हुआ वो सब हट जाता है। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि एक प्रमोशन नहीं मिला, एक जगह से नौकरी से आप ले ऑफ हो गए, आपको लगेगा मैं छत से कूदूं। सुइसाइड्स आर अ रिजल्ट ऑफ दीज थिंग्स, द डेस्परेशन दैट कम्स वेयर यू फील यू डोंट बिलोंग एनीवेयर। लेकिन अगर आप अध्यात्म से जुड़े रहते हो, आपको पता है कि जो भी हो अच्छे के लिए हो रहा है, इसके आगे सकारात्मक मैं क्या सोचूं, तब जाकर आपको उसके भीतर से निकलने की राह मिलेगी। सो सेवा, साधना, सुमिरन, इन तीनों को अपनी जिंदगी में जगह देने पर यू कैन मूव अहेड इन योर डिसीशन टू मैं कुछ करना चाहता हूं।
1: राइट मैम, बहुत ही प्यारे ढंग से सरल भाषा में डिटेल में एक्सप्लेनेशन शैलजा मैम ने हमें दिया है। दोस्तों विचार कीजिए, मनन कीजिए, बैठ जाइए, थोड़ी देर अपने आप को स्थिर कीजिए। जैसा उन्होंने कहा ना, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके उस एरिया में जाइए जहां पर पहुंचकर आपको लगे कि आप उनके पास पहुंच गए, विचार कीजिए। तब तक हम पेश करते हैं ये प्यारा सा भजन और फिर हम वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर। शैलजा मैम, ये बातें बहुत क्लियर हो गई अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उनके बारे में भी बहुत क्लियर हो गया। अगर अब आज की बात हो रही है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी बातों को हम आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट करें, वरना ये सब हम मतलब बड़े बूढ़ों की बात होकर रह जाएगी क्या? लेकिन ये तो पूरे संसार की बात है। तो मैम, इसको मॉडर्नाइज्ड तरीके से ढाल के, उस लैंग्वेज में बता के आज की यंग जनरेशन के लिए एक संदेश दीजिए कि क्या धर्म, क्या अध्यात्म, क्या मेडिटेशन, क्या प्रैक्टिसेस उनको देंगी, जिससे कि वो उनकी जिंदगी बहुत बहुत खूबसूरत, क्योंकि वो लोग बेनिफिट में इंटरेस्टेड है ना, तो उनको उनका बेनिफिट दे दीजिए मैम, जैसे कि उनको लगे ऑल राइट, शैलजा मैम ने कहा कि ये चीज हमको बेनिफिट करने वाली है, तो लेट्स डू इट। तो बस चलते चलते हमारे प्रोग्राम का जो तात्पर्य है, जो पर्पस है, वो यही है कि लोगों तक बात पहुंच जाए। तो बस मैम, यंग जनरेशन तक बात पहुंचा दीजिए।
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दक्षिण के श्री चित्रापुर मठ से जुड़ी हुई
0: हूँ, ऑल राइट,
1: और हाँ, उसकी 350 साल की गुरु परंपरा रही है। और अब हाँ जी, अभी जो एकादश गुरु उनके हमारे मठ के हैं, वो जीवित हैं, और उन्होंने क्या किया है, ही बिलीव्स इन बॉडी माइंड स्पिरिट सिंक्रोनाइजेशन, यानी के दे से ना कि अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो सबसे पहले हमें हमारे युवा लोगों को, जो कि मतलब अनफॉर्चुनेटली जंक फूड, कोलाज, इन सब के आदि हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंस, उनको सबसे पहले दे हैव टू बिकम मोर केयरफुल अबाउट फिजिकल फिटनेस। इट इज ओनली व्हेन यू आर फिजिकली फिट दैट योर माइंड विल बी मोर अलर्ट and awake and willing to learn something new. ye this is something iske liye hamare math mein it is a global network of young people 16 onwards this group is called yuvadhara. Yuvadhara ke liye adhyatma to like I said comes in gradually. उनके लिए उनकी पसंदीदा जो चीजें हैं, मतलब कि देर आर इंस्ट्रक्टर्स हु कम एंड टीच देम फिजिकल फिटनेस, हाउ टू फाइट अनप्लेजेंट, मतलब कि रेगुलर प्रोफेशनल मेथड्स, वर्ल्ड चैंपियंस को बुलाया जाता है इन बच्चों को सिखाने को, हाउ टू लर्न टू रिपेल any form of unpleasant physical attack, how to physically do trekking, rock climbing, canoeing, all the activities that bring about a, see, when you are physically fit, your mind and spirit feel lighter. So we have gadgets, we have rebounders, we have gym balls in every branch of our mutt.
0: Wow.
1: Because, haan, Swamiji is very particular ki aap mandir mein nahi jude ho, to wahan ja ke aap thoda exercise kar lo.
0: Are wa.
1: Haan, haan. Because it makes you feel good. Hmm. You will see, elderly women also in salwar kameezes dancing on the rebounders. Wow. You understand?
0: Hmm.
1: Haan. To ye, to yuva ke liye particularly, all these activities are the physical part of it. Okay. Iske baad, specialists from different fields who have, reached top levels are invited to give lectures on different things like IT ho, architecture ho, startups ho, jo bhi ho, subject. So that the children are made to understand the importance of giving direction to their intelligence. And then they are also taught कि सुबह में जो सुप्रभात के लिए ठाकुर देवता को जगाने के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका मायने, व्हाट इज द गायत्री मंत्र, व्हाट इज द मीनिंग। क्योंकि क्या होता है, ये मंत्र पढ़ना आप देखोगे ज्यादातर पूजा पाठ हो रहा है और यहाँ पे बातचीत चल रही है, या तो बच्चे तो बाहर अपनी मौज मना रहे हैं। वंस दे अंडरस्टैंड द मीनिंग दे गेट इन्वॉल्व्ड, सो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट। सो आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू ऑल दीज एक्टिविटीज, जैसे कि हमारा फार्म है जहां पे द प्रोड्यूस फॉर द किचन इज क्रिएटेड, फार्म में काम करना, गौशाला में काम करना, ये भी उनके आइटिनरी, जो कि जब उनके लिए शिविर बनते हैं, तो ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। आजकल आपने देखा सुना होगा कि सडनली बिकॉज ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट ही बोलिए, या तो चैतन्य महाप्रभु का जो नगर संकीर्तन हुआ करता था, इसकी महिमा ही बोलिए, somehow the youngsters have become aware that there is some power result in the chanting of the divine name, and usse unke andar jo unko ek alag tarah ki shanti milti hai, maybe it is done in a rhythm just like rock and pop music, but bhajan pop music, bhajan rock music abhi bahut chal raha hai. In a lot of places, like even in Bombay, in the Babulnath Mandir ke complex mein hua, aise kai jagah par, and in fact, hamare Pradhan Mantri Narendra Modi ji ne Man Ki Baat mein is baare mein zikr bhi kiya tha, ki it is a very good thing ki the yuva pidi mein bhi in cheezon mein dilchaspi aa rahi hai. To baat ye hai ki har ghar mein, because of nuclear family, sanskar, कम इसलिए होते जा रहे हैं कि किसी को समय ही नहीं है टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस और टू पास ऑन द राइट थिंग्स. पहले के जमाने में एक दादी माँ, नानी माँ, दादाजी, नाना जी रहा करते थे जिनके पास से बच्चों को अनायास ये शिक्षा मिलती थी, आजकल नहीं मिलती है. इसके लिए आई डेफिनेटली फील कि देयर शुड बी अ कंपोनेंट, नॉट एनी पर्टिकुलर फेथ बेस्ड बट मॉरल साइंस जैसे हमारे जमाने में हुआ करता था. द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपल हैबिट्स, जैसे कि हमारे भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन को बताया है कि सबसे प्यारा भक्त उनका कौन सा है, और उसमें एफिशिएंसी इन व्हाट यू डू इज वन थिंग, क्लेनलीनेस इज वन थिंग, बीइंग अ लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम व्हाट एवर यू आर डूइंग एंड इट्स आउटकम इज वन थिंग. ये सब छोटी छोटी चीजें, वंस द चिल्ड्रन लर्न एंड दे नो द सोर्सेज, व्हाट दे थॉट वाज दिस इज फॉर माय ओल्ड एज नॉट फॉर नाउ, व्हेन दे रियलाइज दैट द नॉलेज गिवन इवन इन स्क्रिप्चर्स इज वेरी टाइमली, फिर ये समझाने के लिए ऐसे ब्रिजेस, ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे आप आज कर रहे हो थ्रू पॉपुलर मीडिया टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम to discover the amount of inner strength, atmabal jisko bolte hain, which comes from the study, from the chanting, or from this activity, or which is not connected with tomorrow's test or increasing my pay packet. To ye dheere dheere ho raha hai, aur bhi ho, ye meri ichha rahi.
0: Bahut khoob. Of course. ये मैसेज गांगुली मैम का हमारी यंग जनरेशन के लिए है. यंग जनरेशन बहुत एंग्शियस होती है, जल्दी में होती है, थोड़ा सा ठहर कर ये बात को समझना जरूरी है, लेकिन वी आर होपफुल और लाइट दिख रही है कि लोगों को समझ में आ रहा है, यंग जनरेशन को भी अब ये चीज समझ में आ रही है. बहुत खूब गांगुली मैम, आपका बहुत बहुत आभार है, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, लोगों को आध्यात्म के बारे में, अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीने के बारे में हमें बताया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई होप दैट एटलीस्ट वन और टू लाइफ लेसन्स हैव बीन शेयर्ड थ्रू दिस प्रोग्राम. मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज लर्न टू एंजॉय present moment, गिव योर बेस्ट टू द प्रेजेंट मोमेंट. द पास्ट इज ओवर, द फ्यूचर इज येट टू कम. गिव योर बेस्ट टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड भविष्य आपका ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा. थैंक यू सो मच. नमस्कार.
0: नमस्ते मैम.
2: ओम भास्कराय नमः.
0: दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं. आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे. मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं. मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील पर बातें इधर की उधर की, और मैं हूं आपकी आरजे दोस्त, आपके तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा। शुरू करते हैं मेरे फेवरेट काम से, मेरे फेवरेट काम से। जी हाँ, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना। ये वाला सवाल शायद आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसका जवाब अमूमन लोग कहेंगे हाँ हम तो हैं। चलिए मुझे बताइए कि क्या आप इंटेलिजेंट हैं? हाँ हाँ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, दिमाग में अक्सर एक छोटी सी चीज आती है, मार्क्स। 90% आए तो इंटेलिजेंट, 70% आए तो ठीक ठाक, और मैथ्स में अगर दो बार सप्लीमेंट्री आ गई तो घर में सवाल होता है कि बेटा तुम्हारे अंदर टैलेंट है किस चीज का। क्या इंटेलिजेंस सिर्फ मैथ्स के सवाल हल करना, एग्जाम टॉप करना या इंग्लिश बोलने का नाम है? बिल्कुल नहीं। इंसान के दिमाग में इंटेलिजेंस के अलग अलग रूप होते हैं। हो सकता है आप क्लासरूम टॉपर ना रहे हो, लेकिन किसी के चेहरे को देखकर तुरंत समझ जाते हैं आज कुछ तो गड़बड़ है। और दोस्तों, ये भी इंटेलिजेंस है। चलिए देखते हैं इंटेलिजेंस के 9 नए रूप। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की, यानी शब्दों को समझने

और खूबसूरती से इस्तेमाल करने की वो कला। इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर। ऐसे लोग लिखने, बोलने, कहानी सुनाने, कविता या अपनी बात समझाने में नेचुरली अच्छे होते हैं। आपके ग्रुप में भी एक ऐसा दोस्त होगा जो सिंपल सी बात को भी ऐसे समझाता है कि आप बोल उठते हैं, भाई तू न्यूज चैनल क्यों नहीं खोल लेता। अगर आपको वर्ड्स के साथ खेलना पसंद है तो हो सकता है ये आपकी स्ट्रेंथ हो और यही आपकी इंटेलिजेंस हो। सेकेंड आता है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब आते हैं उन लोगों पर जिनके लिए दुनिया एक पजल है। नंबर्स, लॉजिक्स, पैटर्न्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका एग्जाम्पल है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसे लोग हर बात पे पूछते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। और अगर आप बोल दें कि बस ऐसे ही होता है तो उनका दिमाग कहता है रीजन बताओ। अगर पजल्स और नंबर्स आपको परेशान नहीं एक्साइट करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आपका दिमाग कैलकुलेटर से थोड़ा ज्यादा बिजी रहता है और आप एक एग्जाम्पल हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस के। फिर आता है स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी चीजों, शेप्स और जगह को दिमाग में इमेजिन कर लेना। एग्जाम्पल है लियोनार्डो डा विंची। ड्रॉइंग, डिजाइन, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी, इन सभी चीजों में ऐसे लोग नेचुरली अच्छे हो सकते हैं। आपने देखा होगा कोई घर में फर्नीचर देखकर बोलता है, सोफा यहां रखेंगे तो रूम और बड़ा लगेगा, और आप सोचते हैं मुझे तो बस सोफा दिख रहा था। हो सकता है उस इंसान की स्पेशल इंटेलिजेंस और सेंस बहुत स्ट्रांग हो। फिर आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे। अब जरा कान खोलकर सुनिए म्यूजिकल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल है वुल्फ गैंग एमेडस मोजार्ट। जी हाँ, मोजार्ट। सुर, ताल, लय और धुन को समझने की बहुत सुंदर एबिलिटी। कुछ लोगों को सिर्फ म्यूजिक सुनाई नहीं देता, वो उनकी रूह में उतर जाता है। गाना शुरू नहीं हुआ कि बोल देंगे, अरे सुर थोड़ा नीचे जा रहा है, और आप सोच रहे होते हैं कि भाई मुझे तो बस गाना चलता दिख रहा था। म्यूजिक को समझना एक इंटेलिजेंस का रूप है दोस्तों, और मुझे लगता है हमारी एसएनआर फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी की इंटेलिजेंस को बखूबी निभाते हैं अपने जीवन में। फिर आते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस पे। एग्जाम्पल है बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन। एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये सभी अपने बॉडी मूवमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग क्रिकेट बॉल को ऐसे पकड़ते हैं जैसे बॉल ने खुद अपॉइंटमेंट ली हो, और कुछ लोग प्लास्टिक बॉटल का ढक्कन खोलते हुए भी पूरा रेसलिंग मैच कर देते हैं। आई थिंक मैं उनमें से टॉप करती हूँ। अगर स्पोर्ट्स, डांस, फिजिकल एक्टिविटीज में आप नेचुरली अच्छे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, ये आपकी एक इंटेलिजेंस है। फिर आते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मुझे लगता है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज है और मेरी फेवरेट कैटेगरीज में से एक है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानते तो आप खुद चाहे कुछ भी जानते हो, कितनी ही इंटेलिजेंस हो आप में, लेकिन आप लोगों के अराउंड हमेशा या तो खुद परेशान रहेंगे या फिर आप समझ ही गए होंगे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी दूसरे लोगों को समझने की एबिलिटी। एग्जाम्पल है ओप्रा विनफ्रे। ऐसे लोग सामने वाले की फीलिंग्स को तुरंत समझ लेते हैं। कोई बोले मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप तुरंत बोल दें, नहीं
तुम ठीक नहीं हो, बताओ क्या हुआ? बस आप में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो सकती है। ऐसे लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं और इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ, कब, कितनी बात करनी है और क्या नहीं कहना है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि लोग इनको अपनी प्रॉब्लम्स बता के चले जाते हैं और ये बेचारे सोचते रह जाते हैं, मेरी प्रॉब्लम कौन सुनेगा। एनीवे, आगे चलते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये लोग दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी समझते हैं और इसी को कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल, मार्कस ऑरेलियस अपने इमोशंस, अपनी सोच, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को बखूबी समझना, सेल्फ अवेयरनेस के नेक्स्ट लेवल्स पे होना, खुद से पूछना कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, मैं सच में क्या चाहता हूं, मैं बार बार वही गलती क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, ये सवाल आसान नहीं होते। दूसरों को एडवाइस देना आसान है, लेकिन खुद पर वही एडवाइस लगाना, वही असली टेस्ट होता है। फिर आते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे। अब बात करते हैं नेचर लवर्स की। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की सबसे खूबसूरत एग्जांपल्स में से एक है चार्ल्स डार्विन। पेड़ पौधों, जानवरों और प्रकृति को समझने की एक खूबसूरत एबिलिटी। कुछ लोग गार्डन में जाकर बोलेंगे कितना सुंदर है और कुछ बोलेंगे इस प्लांट की लीव्स का पैटर्न देखो। अगर आपको एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स और नेचर के बीच रहना बहुत पसंद है तो कंग्रेचुलेशंस, हो सकता है आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आते हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस पे। अब बात थोड़ी फिलोसॉफिकल होती है। एग्जाम्पल हैं सोक्रेट्स, यानी जिंदगी के बड़े बड़े सवाल पूछना। मैं कौन हूं, हम यहां क्यों हैं, जिंदगी का मतलब क्या है, और सबसे डेंजरस सवाल, हम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हैं, पर्पस क्या है। ये सवाल अगर रोज रात 2 बजे आपके दिमाग में आता है तो नींद तो उड़ ही जाती होगी। लेकिन कभी कभी ये सवाल हमें अपनी जिंदगी को गहराई से समझने में मदद करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कंग्रेचुलेशंस। तो अब दोस्तों, एक छोटा सा टेस्ट, मार्क्स नहीं है इसमें, बस टेस्ट है। खुद से ही पूछिए, मुझे लिखना और बोलना पसंद है, नंबर्स और पजल्स पसंद हैं, ड्राइंग, डिजाइन और इमेजिनेशन अच्छी लगती है, म्यूजिक सुनते ही मूड बदल जाता है, स्पोर्ट्स या डांस में नेचुरली कंफर्टेबल हूँ, लोग अपनी पर्सनल बातें मुझसे शेयर करते हैं, मैं खुद को और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करता हूँ, नेचर और एनिमल्स मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और अगर जिंदगी के बड़े सवालों पर मुझे सोचना पसंद है तो मैं किस तरह का, किस कैटेगरी का इंटेलिजेंट हूं। अपने आप को कैटेगराइज जरूर करिएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हो सकता है आप सिर्फ एक कैटेगरी के नहीं हो, आपका दिमाग एक ही खिड़की वाला घर नहीं है, उसमें कई खिड़कियां हैं, पूरा हवा महल भी बन सकता है। तो दोस्तों, आज के बाद किसी बच्चे को सिर्फ मार्क्स से मत देखिए और खुद को भी अपनी मार्कशीट से मत नापिए। हो सकता है जो मैथ्स में वीक था वो म्यूजिक में कमाल कर सकता है, जो क्लासरूम में चुप था वो दुनिया का सबसे अच्छा लिसनर हो, जो एग्जाम में एवरेज था वो लोगों को समझने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, और जो हर वक्त सवाल पूछता था शायद वो परेशान नहीं, बस बहुत क्यूरियस था। इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कितना पता है, कभी कभी इंटेलिजेंस ये भी है कि आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं। अगली बार कोई पूछे कितने मार्क्स आए,
तो मुस्कुरा कर कही, मार्क्स तो एक नंबर हैं जनाब, इंटेलिजेंस की पूरी कहानी नहीं। दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की सिर्फ एसएन रेडियो और रेडियो तात्या भी 90.8 एफएम पे। नेक्स्ट कहानी तक के लिए अपने दिमाग की सारी खिड़कियां खुली रखिए। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग की सारी खिड़कियां थोड़ी खुली रखिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: इंस्पेक्टर ने पूछा, घर पर मालिक रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? चोर ने कहा, रहने दीजिए साहब, आपकी अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी खासी तनख्वाह है, अब ये चोरी मैंने कैसे की ये सीख कर आप क्या करेंगे?

आप सुन रहे हैं बातें इधर की उधर की, और आज की बात उन लोगों के लिए है जिनके घर में एक ऐसा मेंबर रहता है जो रेंट नहीं देता, घर का कोई काम नहीं करता, आपको फुल ऑन इग्नोर करता है, और फिर भी घर का सबसे ज्यादा एटीट्यूड उसी का होता है। जी हाँ, आज बात हो रही है कैट्स की। जी हाँ, कैट्स की। अगर आपके घर में कैट है तो एक सवाल, कभी आपने उसे देखा है और बस यूं ही सोचा हो, ये मुझे क्या देखती भी है, क्या इसे पता भी है कि मैं इसका पेट पेरेंट हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मेरी कैट मुझे सच में इंसान समझती है? आज का जवाब सुनकर शायद आपको अपनी कैट के साथ अपना पूरा रिश्ता 360 डिग्रीज चेंज करना पड़े और एक नया ही नजरिया निकल के आए। सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक पॉपुलर आइडिया के मुताबिक कैट के दिमाग में हमारे लिए कोई स्पेशल कैटेगरी शायद वैसे नहीं होती जैसे हम सोचते हैं। मतलब आप उसके लिए ह्यूमन हैं, लेकिन उसकी दुनिया में आप शायद बस एक बहुत बड़ा सा, थोड़ा क्लम्जी और बहुत स्लो मूविंग कैट टाइप क्रीचर ही हैं। सोचिए जरा, आप सुबह उठते हैं, उसको खाना देते हैं, पानी भरते हैं, उसको ट्रीट्स देते हैं, उसका लिटर साफ करते हैं, उसके बाल ब्रश करते हैं, उसको प्यार करते हैं, और फिर वो आपको देखती है जैसे कह रही हो, अच्छा है, मेरा बड़ा वाला कैट काम पर लगा हुआ है। और अगर कभी आपने नोटिस किया हो, कैट को लगता ही नहीं है कि आप उसके एम्प्लॉई हैं, उसे लगता है कि घर तो उसका है और आप उसके स्टाफ हैं। आप सोफा पर बैठे हैं, वो आएगी आपके लैपटॉप पर बैठ जाएगी, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो न्यूज़पेपर के ऊपर आ जाएगी, आप फोन चला रहे हैं वो फोन के सामने आ जाएगी, बिल्कुल अनअबैश्ड, अनअवेयर और सरेंडर के साथ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हैं उस मोमेंट में, आप कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कर रहे हो ना, बस उसी वक्त कैट को दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है आपके साथ, और हम सोचते हैं प्लीज बस 10 मिनट। कैट के दिमाग में ह्यूमन ने मुझे अटेंशन देना बंद किया, इमरजेंसी। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, कभी आपकी कैट कोई छोटा सा डेड एनिमल या कोई बहुत अजीब सी चीज, अतरंगी सी ही चीज घर में लाई है और आपने सोचा ये क्या ले आई, मैं इस घर में रहता हूं या किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? लेकिन इस बिहेवियर को कुछ एक्सपर्ट्स एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। हो सकता है कैट आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि बिल्ली के लिए हंटिंग एक नेचुरल बिहेवियर है, और अगर वो आपके सामने कोई गिफ्ट लेकर आती है तो उसकी नजर में शायद वो कह रही हो, देखो मैं कितनी टैलेंटेड हूं, या फिर तुम्हारी हंटिंग स्किल्स बहुत वीक हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। आपने कभी सोचा है आप कैट को प्रीमियम फूड खिलाते हो और वो रिटर्न गिफ्ट में एक छिपकली? जी हाँ, यहाँ अमेज़न का कोई रिटर्न पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन कैट के लिए ये एक बहुत नेचुरल बिहेवियर है। अब आते हैं कैट के सबसे क्यूट पार्ट पर, म्याऊ म्याउइंग। आपकी कैट आपसे बातें करती है, आप कहेंगे क्या हुआ, म्याऊ, भूख लगी, म्याऊ, बाहर जाना है, म्याऊ म्याऊ, दरवाजा खोलूं, म्याऊ, और कभी कभी आप बस गेस ही करते रहते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैट्स का म्याउइंग ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। किटन्स अपनी मदर से कम्युनिकेट करने के लिए म्याउ करते हैं, और बड़े होने के बाद अडल्ट कैट्स आपस में जनरली वैसे म्याउइंग नहीं करती,
जैसे वो किसी ह्यूमन के साथ करती हैं। इसीलिए जब कोई अडल्ट कैट आपके पास आकर बोले म्याऊ, तो हो सकता है वो बेसिकली कह रही हो हेलो, मेरी सर्विस डिपार्टमेंट, काम पे लगो। आप पूछेंगे ब्रेकफास्ट, डोर, अटेंशन, ट्रीट, और आपको पता भी नहीं होता कि कौन सी म्याऊ का क्या मतलब है। एक म्याऊ, खाने का टाइम। दूसरी, दरवाजा खोलो। तीसरी, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। और एक स्पेशल म्याऊ जो सिर्फ तब आती है जब आप अपने फोन में बिजी होते हैं। और कैट का मैसेज, फोन में कौन है जो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शायद यही रीजन है कैट और ह्यूमन के बीच का रिश्ता इतना अजीब होते हुए भी इतना प्यारा है। कैट आपको हर वक्त हग नहीं करेगी, डॉग की तरह आपको देखकर पूंछ भी नहीं हिलाएगी, हर बार आपके पास नहीं आएगी, और कभी कभी तो आप उसको बुला बुला कर थक जाएंगे और वो सामने से आपको देखेगी भी नहीं। आप करते रहेंगे स्नोई स्नोई स्नोई माय बेबी, और आपकी कैट, मैं सुन रही हूँ। आप कहेंगे तो आ क्यों नहीं रही मेरी बच्ची। और कैट, क्योंकि मैं कैट हूँ। लेकिन जब वो खुद आपके पास आती है, जब आपके पैरों से रब करती है, जब आपके पास आकर सो जाती है, जब आपके बगल में कर्ल होकर बैठ जाती है, तो वो मोमेंट नोटिस कीजिए, क्योंकि कैट्स अपनी मर्जी से ट्रस्ट नहीं देती। और अब आता है सबसे मिसअंडरस्टूड जेस्चर, कैट का बेली दिखाना। आपकी कैट पीठ के बल लेटी है, पेट ऊपर, और आप झट से सोचते हैं वाह, कड़ी करने का इनविटेशन। आप हाथ बढ़ाते हैं और अगले ही सेकेंड पकड़ लिया। आप सोच रहे हैं मैंने क्या किया। बेली दिखाना हमेशा पेट रब कराने का इनविटेशन नहीं होता, कभी कभी ये बस एक ट्रस्ट का साइन हो सकता है। मतलब जैसे आपकी कैट कह रही है कि मैं अभी वल्नरेबल हूं और मुझे कोई डर नहीं है आपके आसपास। सोचिए एक एनिमल जो नेचुरली इतना अलर्ट रहता है, आपके सामने अपना सबसे सेंसिटिव हिस्सा एक्सपोज करता है और रिलैक्स रहता है। इसका मतलब हो सकता है कि वो आपके आसपास सिक्योर फील करता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बार बेली रब करने पे आपको स्क्रैच ही मिले, इसलिए कोई एक रूल नहीं है। फिर भी एक रूल सिंपल है, बेली देखो, अप्रिसिएशन करो, हाथ लगाने से पहले कैट की परमिशन लो। जी हाँ, और यहाँ एक और बहुत खूबसूरत बात है। हम अक्सर सोचते हैं मैं अपनी कैट की पेट पेरेंट हूँ, लेकिन शायद रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट है। आप उसको घर देते हैं, खाना देते हैं, सुरक्षा देते हैं, प्यार देते हैं, और बदले में वो आपको एक अजीब तरह का कंपेनियनशिप देती है। कभी कभी वो आपके पास बिल्कुल चुपचाप बैठी रहेगी, कभी आपके बेड पर आपकी जगह ले लेगी, कभी आपको इतना इग्नोर करेगी कि आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, और कभी बिल्कुल बिना किसी वजह के आपके पास आकर बैठ जाएगी। और उस वक्त आपको समझ आएगा कि ट्रस्ट हमेशा शोर नहीं करता। कभी कभी ट्रस्ट बस आपके पास आकर सो जाता है। तो अगर आज आपके घर में कैट है, एक बार उसको ध्यान से देखिए। हो सकता है वो आपको इंसान के रूप में देखती ही नहीं है, हो सकता है वो आपको अपनी दुनिया के एक सेफ मेंबर के रूप में देखती है, एक ऐसा बड़ा, थोड़ा क्लम्जी, कभी कभी इरिटेटिंग, कभी कभी चिपकू, लेकिन यूजफुल क्रिएचर जो खाना टाइम पर देता है और बहुत सारा प्यार करता है। और अगर वो आपको कभी कोई अजीब सा गिफ्ट लाकर दे, जैसे कि कोई मरी छिपकली, तो तुरंत गुस्सा मत करिए। हो सकता है उसके हिसाब से वो आपको प्रमोशन दे रही हो, कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑफिशियली अ पार्ट ऑफ द ट्राइब। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर।
और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। आज की बात का एक छोटा सा लेसन, हर रिश्ता वर्ड से नहीं बनता, एक्सप्रेशन से नहीं बनता। कुछ रिश्ते एक म्याऊं से बनते हैं, एक पर से बनते हैं, एक पास आकर सो जाने से बनते हैं, और कभी कभी एक बेली फ्लैश से। बस बेली फ्लैश को हमेशा इनविटेशन समझने की गलती मत कीजिए। मिलते हैं अगली बातें इधर की उधर की में। तब तक अपने घर के इंसानों को थोड़ा अटेंशन दीजिए और कैट्स को उनकी मर्जी के हिसाब से रहने दीजिए। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: बताए भैया, पहले के और आज के जमाने में जो फोटोज खींची जाती है ना, उनमें फर्क क्या है? पहले घंटों तैयार हुआ करते थे, पाउडर लगाते थे, क्रीम लगाते थे, तब फोटो खिंचवाते थे, और आजकल फोटो खींचो फोन से और बस ब्राइटनेस बढ़ा दो।

आप सुन रहे हैं SN रेडियो और रेडियो तात्या भील पर आपका एक खास शो, आपका अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की। और मैं हूं आपकी तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा। अगर आपके घर में कोई डॉग या कैट आज अचानक इंसानों की तरह बोलने लगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उससे सबसे पहले क्या पूछेंगे, बेटा खाना खा लिया, या फिर एक मिनट, कल सोफा किसने तोड़ा था? और अगर जवाब आया मैंने नहीं तोड़ा, बिल्ली ने तोड़ा था, तो घर में आज से ही इन्वेस्टिगेशन की एक कमिटी बैठ जाएगी। लेकिन मजाक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज टेक्नोलॉजी के एक ऐसे मोड़ पर हम पहुंच चुके हैं जहां कुछ डिवाइसेस और स्मार्ट कॉलर्स आपके पेट्स की आवाज, हरकत और बॉडी सिग्नल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपका पेट लिटरली हिंदी या इंग्लिश में बात नहीं कर रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी उसके कुछ सिग्नल्स को समझने में इंसान की मदद कर सकती है। और बस इसी आइडिया ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा किया है, क्या हम अपने पेट्स को पहले से ज्यादा समझने वाले हैं? सोचिए, आपका डॉग क्या कहना चाहता है। हम सब ने देखा है, डॉग अचानक दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आप सोचते हैं घूम ही जाना है, बाहर जाना है। फिर वो आपको देखता है और आप पूछते हैं खाने का टाइम है, और वो पूंछ हिलाता है, और फिर आप कंफ्यूज्ड, वो भी कंफ्यूज्ड कि मुझे समझ क्यों नहीं रहे। अच्छा पानी चाहिए, वो और ज्यादा एक्साइटेड, और आपका दिमाग बोलता है भाई ऑप्शन तो बता दे। पेट्स हमसे बात करते हैं, बस उनकी भाषा हमारी भाषा से अलग होती है। कभी भौंकना, कभी म्याऊ करना, कभी पूंछ हिलाना, कभी कान खड़े करना, कभी एकदम चुप हो जाना, और कभी बस आंखों से देखते रहना, उन प्यारी आंखों से। हम इन सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं, बट टेक्नोलॉजी अब इसी काम में थोड़ी मदद करने का दावा कर रही है। कहा जा रहा है कि एक स्मार्ट कॉलर है, एक ऐसा कॉलर जो पेट की आवाज और मूवमेंट जैसे सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है। फिर टेक्नोलॉजी उन सिग्नल्स का एनालिसिस करके ये समझने की कोशिश करती है कि पेट किस तरह की स्थिति में है। जैसे वो एक्साइटेड है, परेशान है, डरा हुआ है, बोर्ड है, या शायद कुछ और। सोचिए अगर फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी किटी ठीक नहीं लग रही, तो पेट ओनर तुरंत अलर्ट हो सकता है। अब यहाँ एक बात जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन ने पेट के दिमाग को पढ़ लिया। टेक्नोलॉजी असल में सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या एक भौंकने का मतलब हमेशा एक ही होता है? बिल्कुल नहीं। एक डॉग का भौंकना एक्साइटमेंट भी हो सकता है, और वही किसी दूसरी सिचुएशन में डर या अलर्टनेस का सिग्नल भी हो सकता है। जैसे हम इंसान, अच्छा ये एक ही शब्द है, लेकिन अगर मैं बोलूं अच्छा, तो मतलब हो सकता है कि मुझे बात पसंद आई, और अगर मैं बोलूं अच्छा, तो मतलब मैं बहुत खुश हूं। तो सिर्फ आवाज नहीं, कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है। इसीलिए पेट बिहेवियर को समझना सिर्फ एक साउंड को ट्रांसलेट करना नहीं है, उसके साथ उसकी बॉडी मूवमेंट, सिचुएशन और बिहेवियर को भी देखना पड़ता है। मान लीजिए आपका पेट नॉर्मली बहुत एक्टिव होता है, लेकिन अचानक वो कोने में चुप रहने लगे, खाने में इंटरेस्ट कम हो जाए, मूवमेंट बदल जाए, आवाज अलग हो जाए। अगर टेक्नोलॉजी ऐसे बदलाव को नोटिस करने में मदद करे तो ओनर के लिए ये एक यूजफुल सिग्नल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, मशीन डॉक्टर नहीं है। अगर पेट सच में बीमार लग रहा है तो वेटनरी की सलाह जरूरी है।
टेक्नोलॉजी हमें नोटिस करने में मदद करती है, डिसीजन हमें खुद ही लेना है अपनी समझदारी से। एक मजेदार सवाल, अगर ये टेक्नोलॉजी और बेहतर हो गई तो क्या आप सच में अपने पेट की हर बात सुनना चाहेंगे? सोचिए सोचिए। आप ऑफिस से घर आए, पेट कॉलर से मैसेज आया, आज तुम 8 घंटे घर पर नहीं थे। फिर दूसरा मैसेज, और जाते वक्त तुमने मुझे बाय भी नहीं बोला। और तीसरा, कल के लिए ट्रीट पेंडिंग है। बस पेट नहीं, पूरा हिसाब किताब डिपार्टमेंट खुल जाएगा। और घर की बिल्ली, वो तो शायद सिर्फ एक ही मैसेज भेजे, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा खाना टाइम पर होना चाहिए, म्याऊं। असली बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये मजाक के पीछे की एक बहुत खूबसूरत बात है। हम पेट्स को सिर्फ जानवर नहीं मानते, वो घर का हिस्सा होते हैं। कभी हमारे दोस्त होते हैं, कभी बच्चे होते हैं, कभी थेरेपिस्ट होते हैं, और कभी घर के असली मालिक होते हैं। और उनके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ शब्दों पर नहीं टिकता। आपका डॉग आपकी आवाज पहचानता है, आपके कदमों की आहट पहचानता है, आपका मूड भी शायद आपसे पहले समझ लेता है। कभी हम परेशान होते हैं तो वो चुपचाप पास आकर बैठ जाता है। उसने कोई डिग्री नहीं ली, काउंसलिंग का कोर्स नहीं किया, बस साथ रहना सीखा है। तो क्या पेट्स बात करेंगे? शायद फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमें उनके सिग्नल समझने में और मदद करे। शायद हम जान पाएं कि उनका बिहेवियर कब बदल रहा है। शायद हम उनकी जरूरतों को थोड़ा बेहतर समझ पाएं। लेकिन एक बात शायद कभी मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती, और वो है खुद उनके साथ वक्त बिताना। कॉलर बता सकता है कि डॉग एक्साइटेड है या एंग्री, लेकिन उसकी पूंछ को देखकर खुद खुश होना वो एक अलग बात है। टेक्नोलॉजी बता सकती है कि कैट रेस्टलेस है, लेकिन उसके पास बैठकर उसका सर सहलाना वो रिश्ता है। तो अगर आपके पेट को आज सिर्फ एक सेंटेंस बोलने का मौका मिले तो आप क्या सुनना चाहेंगे? मुझे भूख लगी है, मुझे बाहर ले चलो, या फिर थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और एक सवाल, आप अपने पेट से सबसे पहले क्या पूछेंगे? ये सवाल घर में जरूर पूछेगा, शायद जवाब जुबानी ना मिले, लेकिन हो सकता है आपको उसकी आंखों में जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, कल टेक्नोलॉजी हमें पेट्स के सिग्नल समझने में शायद मदद कर सकती है, लेकिन तब तक उनकी भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका शायद वही पुराना है, द गुड ओल्ड क्लासिक। उन्हें वक्त दीजिए, उन्हें देखिए, उनकी आदतों को समझिए, और कभी कभी बस चुपचाप उनके पास बैठ जाइए। क्योंकि हर बात शब्दों में कही जाए जरूरी तो नहीं। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी तरानों की हमसफर, आपकी आरजे तनुषा, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार आपका पेट आपको देखकर कुछ कहने की कोशिश करे तो तुरंत मोबाइल मत उठाइए, पहले उसकी आंखों में देखिए, हो सकता है उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की नहीं आपकी अटेंशन की जरूरत हो। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बेटा आज देर आने का क्या बहाना बनाने वाले हो? स्टूडेंट ने कहा, नहीं मैडम, आज तो मैं इतनी तेज भागा कि बहाना क्या बनाना है सोचना ही भूल गया।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आलोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपना विशेष कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग लेकर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का रंग है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की बहुरंगी दुनिया का। आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जिनकी क्रिएटिविटी कई रंगों में झलकती है। वो एक गृहिणी है, लेकिन घर की चौखट से आगे निकलकर मंच, रेडियो और साहित्य की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। शाहजहांपुर की सांस्कृतिक धरती से आई श्रीमती सोनिका कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने अंधा युग जैसे गंभीर नाटक में कृष्ण की भूमिका निभाकर अपने अभिनय की गहराई दिखाई, और अयोध्या पीड़ा घन जैसी पुस्तक के माध्यम से उन स्त्रियों का मौन दुख को शब्दों में पिरोया जो अयोध्या में रहकर राम के वनवास की पीड़ा झेलती रही। सोनिका जी एक लेखिका, अभिनेत्री, एंकर, संचालक और कवित्री सब कुछ है। तो आइए जानते हैं उनके इस बहुरंगी जीवन के कुछ प्रेरक अध्याय आज के शो में। सोनिका जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सुखद आमंत्रण के लिए।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिका जी, सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा लग रहा है यहाँ आकर रेडियो के इस अनुभव के साथ जुड़ना?
1: रेडियो का अनुभव से जुड़ाव तो मेरा बहुत पुराना है। श्रोता के तौर पे कहूँ तो बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं विविध भारती, और आर्टिस्ट के तौर पे कहूँ तो मुझे आज का दिन सन 92 का वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग याद दिला रहा है जब मैं पहली बार अपनी शॉर्ट स्टोरी लेके उदयपुर रेडियो स्टेशन गई थी, और वहां पे मेरी ब्रॉडकास्ट हुई थी मेरी ही आवाज में, और फिर उसके बाद एक गीतों भरी कहानी भी मैंने वहां पे ब्रॉडकास्ट की थी। तो आज का दिन मुझे सालों पहले ले गया, और वही स्टूडियो रिकॉर्डिंग मुझे याद आ रहा है जो अनुभव पहले दिन मेरा वहां रहा। उसके बाद 2017 में फिर मैं एक रेडियो चैनल से जुड़ी जहां पे मैं अपनी रचनाएं ब्रॉडकास्ट करती थी। तो इस तरह से मेरा जुड़ाव कहीं ना कहीं आज तक भी रेडियो से जुड़ा हुआ है।
0: वाह, इसका मतलब है कि रेडियो के साथ आपकी जितनी भी यादें हैं वो सब रिवाइव हो गई और जी, एक और नया उसमें अध्याय जुड़ गया। बहुत शाहजहांपुर साहित्यिक और ऐतिहासिक नगरी है, क्या इस नगरी का आपको अपने हुनर में कोई कंट्रीब्यूशन या योगदान महसूस होता है?
1: जी, योगदान तो पूरा पूरा है। वो कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। तो ये शाहजहांपुर शहीदों की ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक रंगमंच की नगरी है। यहाँ से बहुत से कलाकार भी रंगमंच पे आए हैं। तो इस नगरी में अगर इस आबो हवा में आप रह रहे हैं और आपके अंदर कोई कला का छोटा सा भी बीज है तो वो निश्चय ही अंकुरित होगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे गुड़ी जनों के सराउंडिंग्स में रही, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मेरे हुनर में इस शाहजहांपुर की धरती का पूरा पूरा योगदान है।
0: बहुत खूब, तो शाहजहांपुर शहीदों की भी नगरी है और स्वतंत्रता सेनानियों की भी नगरी है, ये जान के बड़ा अच्छा लगा। अब एक बात बताइए, एक गृहिणी से मंच कलाकार और लेखिका बनने का ये सफर कब शुरू?

0: हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और ये जो पहले स्पार्क या चिंगारी जली, ये कैसे जली?
1: जी लेखिका का तो मैं पहले स्कूल टाइम में भी लिखा करती थी, जैसे बताया मैंने रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ और स्कूल मैगजीन्स में मेरी रचना निकलती थी। उस समय इतना इजीली अवेलेबल नहीं था मीडिया, पर मंच कलाकार के तौर पे मैं सबसे पहली बार तब उतरी जब हमारी यूनिट हेड उस समय थी श्रीमती सुमन चोपड़ा जी, उन्होंने ये निश्चय किया कि इस बार रामलीला महिलाएं करेंगी, यानी पुरुषों का किरदार भी महिलाएं ही निभाएंगी। तो उस दौरान हमारा भी चुनाव हुआ, क्योंकि हमें अभिनय आता नहीं था, पर उनके कहने पे, उनके प्रोत्साहन मिलने पे फिर मैंने भी नाम लिखाया और आज मैं आपके सामने हूँ।
0: तो चलिए फिर उसी बात को दोबारा याद किया, तो आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कौन सी थी, ये रामलीला वाली? तो उस दिन कैसा, जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गई थी तो कैसा अनुभव था, कैसा रहा?
1: स्टेज परफॉर्मेंस मेरा पहला वही था रामलीला का, मंचन जब हुआ था उसमें मुझे भरत की भूमिका दी गई थी, और चूंकि महिला रामलीला ये पहला अनुभव था हम सभी महिलाओं के लिए, तो हम सब 30 दिन की जो प्रैक्टिस चली है हम लोगों की, हम सब उस पूरे प्रैक्टिस के दौरान इतने असमंजस में थे कि पता नहीं हम कैसे लगेंगे कॉस्ट्यूम में, कहीं हास्यास्पद ना लगे, पता नहीं मेकअप कैसा होगा, तो हम सब असमंजस में थे फाइनल डे तक। पर जिस दिन जो फाइनल डे हमारा कॉस्ट्यूम और मेकअप हुआ, उसमें जब हमने अपने आप को आईने में देखा तो हमारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब शो अच्छा होगा, और जो हमारी एंट्री की गई थी वो दर्शक दीर्घा के बीच में से हमारी एंट्री कराई गई थी, दर्शक दीर्घा के बीच में से हमें होके मंच पे जाना था। तो जिस वक्त हम दर्शक दीर्घा के बीच में से निकल रहे थे तो सारे दर्शकों ने खड़े होके जो तालियां बजाई हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस चरम पे था, और फिर हम सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई और निश्चय ही अच्छी होनी थी जब इतनी तारीफें पहले ही चरण में हमें मिल गई, तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा स्टेज परफॉर्मेंस का।
0: वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा, आपकी दर्शक दीर्घा से एंट्री हुई स्टेज पे, ये तो एक अपने आप में यूनिक सी बात है,
1: और सभी कलाकारों की पूरी टीम,
0: मजा आ गया होगा आपको। चलिए, और परिवार और समाज दोनों भूमिकाओं को निभाते हुए कला के समय और प्रेरणा कैसे ले पाती है? आपको इतना समय मिल जाता है ये दोनों काम करने के लिए, कैसे मैनेज करती है इसको?
1: जी देखिए, प्रेरणा तो हम खुद ही होते हैं, जैसे कोई स्त्री है, आम स्त्री है, हम लोग आम महिला है, चाहे वर्किंग है चाहे गृहिणी है, अगर हमें अपने शौक को जीना है तो उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, और गृहिणियों के साथ ये प्लस पॉइंट है कि हम इधर उधर से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वर्किंग लेडीज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर हाँ, अगर हमारे रामलीला में बहुत सारी वर्किंग लेडीज भी थी जिन्होंने काम किया पर उन्होंने टाइम मैनेज किया, तो प्रेरणा हम खुद ही हैं अपने कला को आगे बढ़ाने के लिए।
0: चलिए, महिलाओं की इस जीवनी शक्ति और इस सामंजस्य के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं यहाँ।
1: बिल्कुल।

0: सोनिका जी, आपने धर्मवीर भारती के अंधा युग में कृष्ण की भूमिका निभाई, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार है। इस भूमिका को निभाने का अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: वो भूमिका वाकई मेरे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि वो एक ईश्वरी रूप, ईश्वर की एक्टिंग मुझे करनी थी। अब जब आप ईश्वर की अभिनय कर रहे हैं तो उसमें संवेदनाएं आपको नहीं दिखानी है। ईश्वर एकदम तटस्थ होता है, एकदम एक कहें कूल होता है, कूल होते हैं कि मतलब उन्हें संवेदनाएं नहीं दिखानी है। पर ये जो धर्मवीर भारती जी का जो प्ले है अंधा युग, इसमें गांधारी का विलाप जब होता है उस समय मुझे लगता है कि कैसे ईश्वर ने अपने आप को रोका होगा। इतना करुण विलाप था कि मतलब आंखों से आंसू आ जाते थे उसको, मतलब उनको सुनते समय। तो कैसे हम गांधारी माँ को वो करेंगे, ढांढस बंधाएंगे, तो इसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा।
0: नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इमोशंस नहीं दिखाने, अपनी भावनाएं नहीं दिखानी, तटस्थता के साथ अपने डायलॉग बोलना, वो भी ऐसे चुनौतीपूर्ण नाटक में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
1: एक एक शब्द में इतना वजन है भारती जी के कि उसे आप जब भी आप बोलेंगे, उसका अभिनय करेंगे, तो एकदम आपके अंदर ना शक्ति संचार का अनुभव होता है। बहुत ही अलौकिक अनुभव था वो कृष्ण, श्री कृष्ण की भूमिका अदा करने का।
0: निश्चित रूप से उन दिनों तो आपकी कुछ जीवनचर्या भी बदल गई होगी, क्योंकि आप उसी किरदार को जीती होंगी, कृष्ण के किरदार को जीती होंगी। तो इस नाटक में कृष्ण को आपने किस नजरिए से देखा, एक देवता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो युद्ध और विनाश के बीच में खड़ा हुआ है?
1: जी, मेरे को, मेरे नजरिए में तो मैंने दोनों को देखा कृष्ण में। जब वो सभासदों को समझाने जाते हैं तो मुझे उनका वो मानवीय रूप दिखता है कि वो कहते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरह आप करिए। और प्ले का जो पहला सीन है जिसमें विश्वव्यापी रूप दिखाया है वो ईश्वरीय रूप है, और प्ले का आखिरी जो गांधारी विलाप का जो सीन है उसमें ईश्वरीय रूप है, क्योंकि कोई ईश्वर ही हो सकता है, वो नहीं पिघल पाएगा। किस तरह गांधारी का करुण क्रंदन था उस सीन में, और उसके बाद भी श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, परेशान मत हो, तुमने पुत्रों को खोया। तो वो ईश्वरी रूप वाकई में, ईश्वर होना अपने आप में बहुत मुश्किल है। उस किरदार को निभा के मेरे को सिर्फ यही लाइन आई।
0: सही बात है, सही बात है। दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, एक ईश्वर ही तटस्थ नजरिए से उसको ठीक ठाक कर रहा है, बहुत बहुत मुश्किल है। अगर हम आप आज वैसे भी सोचें कि ईश्वर होना कितना मुश्किल है, अच्छा इंसान होना ही मुश्किल है, तो ईश्वर होना तो कितना मुश्किल होगा।
1: असंभव है।
0: सही बात है, सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। महिला रामलीला में भरत और मंदोदरी जैसे चरित्र निभाना भी अलग अनुभव रहा होगा, क्या महिला कलाकारों के लिए ऐसे मंचों पर खुद को अभिव्यक्त करना आसान होता है, कैसा लगता है आपको?
1: नहीं, महिलाओं के लिए नहीं आसान है, क्योंकि महिलाओं की दोहरी जिम्मेवारी होती है, उन्हें घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और जब आप प्ले करते हो तो उसमें तीन तीन चार चार घंटे हमें वर्कशॉप में देना पड़ता है। घर आके भी हम लोग ईयरफोन लगा के अपना काम करते हैं और साथ में वो डायलॉग याद करते हैं, क्योंकि लिप सिंक होता है वहां स्टेज पे। लिप सिंक में क्या है कि अगर एक सेकंड का पॉज है तो आपको वहां रुकना है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी करना है। तो हम लोग तीन चार घंटे वहां वर्कशॉप में सीखते थे, और फिर घर आके भी पूरा प्रैक्टिस हमारा चलता ही रहता था। तो बहुत मुश्किल है, और इसमें परिवार का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी महिलाएं हैं उनके परिवार ने साथ दिया तभी वो आज मंच पे दिखी, अदरवाइज नहीं दिख सकती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है चार से पांच घंटा दैनिक दिनचर्या में से निकालना।
0: नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इस महिलाओं के टाइम मैनेजमेंट और ये सब के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं यहाँ।
1: बिल्कुल।

0: सोनिका जी, आपकी पुस्तकों जैसे अयोध्या पीड़ा घन, परिवर्तन, मातृत्व और दीपोत्सव में गहरे भाव हैं। इन रचनाओं के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या रही होगी, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: मेरी कोई भी रचना हो, बुक हो, उनकी प्रेरणा मुख्यतः स्त्री और मौन ही होता है। मुझे लगता है स्त्री और मौन एक दूसरे के पर्याय हैं। मौन विषम परिस्थितियों में जूझने का या अपनी बात को कहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इस मौन में कहने को शब्द नहीं होते, पर अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें अथाह शब्द ही शब्द हैं। क्योंकि जब वेदना एकदम चरम पे होती है तो वो अपना अपने शब्द खो देती है। तो इस मौन में से ही शब्द निकालना और उन्हें लिखने की मैं कोशिश करती हूँ, बस यही मेरी प्रेरणा है मौन।
0: भाई, ये बात सुन के तो आपकी बहुत मजा आया मुझे। मौन, मौन भी एक एक तरह की भाषा है, लेकिन नारी मौन रह के भी बहुत बात कह जाती है, और नारियां कैसी भी विषम परिस्थितियां हो उसमें मौन धारण कर लेती हैं। आदमी तो फिर भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन नारी जो है हमेशा मौन रहती है कितनी भी विषम परिस्थितियां। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के।
1: बहुत ही शालीन व्यवहार और प्रभावी भाषा है मौन।
0: बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए, अयोध्या पीड़ा घन में आपने उन महिलाओं के मन की बात कही है जो राम के वनवास के बाद अयोध्या में रह गईं। क्या यह दृष्टिकोण एक लेखिका के रूप में आपके भीतर से आया या एक स्त्री के अनुभव से आया, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: नहीं, ये विषय मेरे मन में काफी बरसों से था और लेखिका के रूप में ही आया, पर इस विषय को मैंने लिखा और स्त्री होने का फायदा मैंने बहुत उठाया, क्योंकि इन पात्रों को मैंने बहुत करीबी से जिया और फिर उनकी अनुभूति को मैंने लिखा, तो ये स्त्री होने का फायदा मैंने लिया इस विषय पे।
0: अब कैकई, कौशल्या, उर्मिला, इन पात्रों में से किसके दर्द या मौन ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, कुछ कभी सोचा है इस विषय में, आपने बताइए।
1: कैकई, कौशल्या और उर्मिला जी, इन तीनों की पीड़ा को हम किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कैकई माता की पीड़ा बिल्कुल अलग थी। दो लाइन से मैं बताऊंगी कि जब भरत को पता चलता है ननिहाल से आके कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता ने ऐसे ऐसे वरदान मांगा है, तो वो बहुत भला बुरा कहते हैं माता को। तो उस वक्त कैकई सोचती है, पुत्र तीक्ष्ण स्वर बाणों से कैकई हुई कण कण, पुत्र तीक्ष्ण स्वर बाणों से कैकई हुई कण कण, खुद को खोजे या पुत्र को, खुद को खोजे या पुत्र को, सोच रही क्षण क्षण। देखिए कितनी पीड़ादायक बात है कि एक माँ ये सोच रही, क्या ये मेरा ही बेटा है जिसके लिए मैंने राजपाट मांगा है, और ये तो इतना संन्यासी है, मैंने अपना जन्मा बेटा नहीं समझा, उसे मैं जान ही नहीं पाई, ये अलग पीड़ा है। कौशल्या माँ जिनके महल में इतना गहमा गहमी रौनक थी, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और कैकई माता के वरदान मांगने पे एकदम सुनसान हो गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम लक्ष्मण सीता चले गए, उनपे क्या बीती होगी कि जब सारा महल ऐसे वीरान हो गया तो वो क्या सोचती होंगी। तो चार लाइन मैं बताती हूँ इस किताब के शुरुआत में, मैंने ये कौशल्या अश्रुघन एक कविता लिखी थी सबसे पहले इस विषय पे, तो उसकी चार लाइनें हैं कौशल्या जी पे। सब धूमिल दिख रहा है, कौन सी ये धुंध है, विरह वेदना के जाप से मुस्कान हुई कुंद है, मलिन उदासी ढा गई चौखट द्वारों पर कहर, अश्रु जल से व्रत तोड़ती रानियां हर प्रहर। तो ये कौशल्या माँ की पीड़ा थी कि उनकी नव व्याताएं बहुएं किस तरह से अश्रु जल से व्रत तोड़ रही थी, यानी आंसुओं से भीगे हुए थे, तो बहुत मुश्किल समय था उन स्त्रियों के लिए भी।
0: बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया, और ये जो आपने कविता के रूप में जो कुछ पंक्तियां सुनाई, इनको सुन के तो बहुत ही एक दूसरा सा भाव पैदा हो गए मन में। बहुत सुंदर कैकई, कौशल्या और मिला, इन पात्रों ने जो कुछ सहा होगा हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात, आपने इन पात्रों पर पुस्तक लिखी।

0: और इन पात्रों की संवेदनाओं को लिखने का आपका मतलब ध्येय क्या था? कैसे कैसे आपने सोचा कि मैं इन पे पुस्तक लिखूं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे पात्र हैं जो हमेशा से जनमानस के जहन में रहे हैं, उन पे कुछ लिखना भी एक बड़ी हिम्मत का काम।
1: जी, जैसे मैंने आपको बताया, पहले सबसे पहले मैंने इस विषय पे कौशल्या अश्रुघ्न कविता लिखी थी, जिसकी अभी मैंने लाइन सुनाई। उसके बाद
0: अच्छा
1: मुझे संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद मुझे लगा इस पे मैं और लिख सकती हूँ। तो फिर कुछ महीने मैंने इस पे थोड़ा सा स्टडी भी किया, थोड़ा सोचा विचारी की, और फिर उसके बाद मैंने पिछले साल ये पूरक पुस्तक लिखी। और इन पात्रों को समाज में लाने का ध्येय ही मेरा ये है कि आज के समाज में ये सारे जो गुण हैं, जो इन मांडवी उर्मिला जी में जो सहनशीलता का गुण देखने को मिलता है, भाई भाई के प्रेम का जो गुण देखने को मिलता है, सास बहू जो कौशल्या माता और मांडवी मांडवी ने किस तरह से अपने हक को कौशल्या माँ को समझाया और उनसे विनती की कि भाई आप मेरे को ये करना है भरत जी के लिए, तो किस
0: जी
1: तरह से, तो ये मेरा ध्येय था कि इन सारे किरदारों को समाज के सामने लाऊं। और जिस तरह से हम रामायण के और पात्रों की बात करते हैं, तो ये भी हमारे बातचीत का हिस्सा बने, क्योंकि इन्होंने भी वनवास सहा था। तो बहुत ही कम हम इन लोगों के बारे में जानते हैं और इन पात्रों के बारे में बात ही बहुत कम होती। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, केकई माता को तो बड़े ही हे दृष्टि से हम देखते हैं, भाई उन्होंने काम ऐसे किया पर विधान ने उनको ये कार्य सौंपा था। पर जब मंथरा का माया जाल हटा होगा, तब केकई माता के ऊपर क्या बीती होगी, किसी ने ये नहीं जाना होगा। ये सब इस पुस्तक में आपको मिलेगा कि तब उन्हें कितनी ग्लानि का वो एहसास हुआ होगा कि ये मैंने क्या कर डाला। तो मेरा सिर्फ ध्येय ये था कि इन पात्रों को मैं समाज के सामने लाऊं।
0: बहुत सुंदर। तो हम यहाँ एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाने का आनंद लेते हैं।
1: जी बिल्कुल।

0: अब सोनिका जी आगे चलते हैं। आपने
1: जी
0: रेडियो पर नवरात्रि की नौ देवियों का सुंदर व्याख्यान किया। रेडियो को एक माध्यम के रूप से आप कैसे देखती है? रिपीट कर रहा
1: रेडियो
0: हूं।
1: को मैं आज के समय में एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में देखती हूँ और बहुत ही अच्छा माध्यम है ये कि हम चाहे राइटिंग कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो और खास तौर पे ड्राइविंग, ड्राइविंग में तो बहुत ही आनंद आता है जब हमारे ये FM चल रहा होता है तो उसमें नटखट बातें, चटपटी बातें और गाने जब सुनते हैं RJs के तो वाकई में मजा आ जाता है। तो बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है रेडियो।
0: बिल्कुल सही कह रही है आप। मैं जब बॉम्बे में पोस्टेड था तो वहां मुझे पता लगा था रेडियो की ये क्या यूटिलिटी है, क्योंकि
1: जी
0: बॉम्बे में बड़े लंबे ट्रैफिक जैम्स भी होते थे और बड़ा लंबा सफर भी होता था, दो दो ढाई ढाई घंटे सड़क पे चलना
1: बिल्कुल
0: पड़ता था। तो वहां पता लगा कि रेडियो और ये जो FM चैनल्स हैं ये कितनी इनकी यूटिलिटी है, कितना ये आपका साथ देते हैं। बिल्कुल सही
1: बिल्कुल
0: कह रही है।
1: मेट्रोज में तो
0: ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में आपकी भागीदारी और संचालन दोनों रहे। कविता का आपके जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है, कुछ इसके बारे में बताएंगी?
1: सरलता से विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी समझती हूं मैं कविता को। उसका रूप कोई भी हो, शायरी भी हो सकता है, छंद भी हो सकता है, कम शब्दों में अधिक अर्थ बताती है। और जब अगर हम प्रतिभागी हों किसी कार्यक्रम में या संचालक हों तो प्रस्तुति को बहुत ही प्रभावी बना देती है, एकदम अलंकृत कर देती है। जिस तरह से हम अपना ज्वेलरी से और मेकअप से खुद को आकर्षक बनाते हैं, उसी तरह से अपनी प्रस्तुति को हम कविता छंद से प्रभावी बना देते हैं। तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मेरे लिए।
0: ये बात आपकी मुझे बड़ी बड़ी बड़ी प्रभावी लगी कि
1: जी
0: जिस तरह से हम अपने आप को ज्वेलरी से या जेवरातों से अलंकृत करते हैं, उसकी बजाय अगर कोई कविता बोल दे तो उसका स्थान या उसकी महत्ता एकदम बढ़ जाती है। वाह, क्या बात कही आपने,
1: धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया बात कही है। मतलब महिलाएं, एक कोई महिला अगर एक कविता की लाइन सुना दे, उससे
1: जी
0: लोग बाग ज्यादा उसकी तरफ उसको देखेंगे, उसकी पहचान को पहचानेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ
1: बिल्कुल
0: अट्रैक्ट
1: आपका
0: होंगे।
1: प्रभाव, हाँ साहित्य का सबसे बड़ा प्रभाव ही ये होता है। जहाँ साहित्य की दो, एक अच्छे साहित्य की दो तीन लाइनें भी आपने पढ़ दी तो वो आप लोगों के मन पे कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाते हो लंबे समय तक।
0: मैं देखा ना गोष्ठियों में या इवन पार्टियों में जो कोई गाना गा देता है या शेर शायरी सुना
1: जी
0: देता है या कविता अच्छी सुना देता है, उसकी एक अलग जगह बन जाती है। और
1: बिल्कुल
0: बाकी
1: बिल्कुल
0: लोग
1: सही
0: तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन के आते ही
1: जी
0: है। ये बिल्कुल सही बात है, मजा आ गया आपकी इस बात में मेरे को। बहुत बढ़िया बात, बड़ी ओरिजिनल सी बात है राधा।
1: जी
0: चलिए, आपके लेख समाज और मनोविज्ञान पर केंद्रित होते हैं। आज के समय में संवेदना और समाज को जोड़ने की आवश्यकता आप क्यों महसूस करती हैं और कैसे महसूस करती हैं, बताएंगे इसके बारे में?
1: देखिए, संवेदना समाज की कुरीतियों से लड़ने और एक दूसरे की समस्या को समझने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर मेरे में इमोशन नहीं है तो मैं सामने वाले की समस्या नहीं समझूंगी, और जब मैं सामने वाले की समस्या नहीं समझूंगी तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और आजकल यही हो रहा है, आजकल युवाओं में ना तो समय है, समय की कमी है, भाग दौड़ की जिंदगी है, इसीलिए संवेदनाओं की कमी हो रही है ना। और आदर्शों और मूल्यों के प्रति व्यक्ति को संवेदना ही संवेदनशील बनाती है, और इसका सबसे अच्छा माध्यम साहित्य है जिससे हम समाज को संवेदनशील बना सकते हैं। और मेरी हर कोशिश ये रहती है कि अपने लेखों में जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखूं मैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रख के अगर हम कुछ लेख या कोई भी रचना करते हैं तो वो निश्चय ही मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है। और जैसा कि आपको मालूम है, तलवार से भी ज्यादा प्रभावी कलम है, बड़े बड़े आंदोलनों में बहुत सहायक रही है कलम। तो हम सबको इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह का समाज को संवेदनशील बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं इमोशंस और इस पे लिखती हूँ।
0: बहुत सुंदर। तो इसी इमोशन और संवेदनाओं के नाम पर हम यहाँ एक गाने का आनंद लेते हैं।

0: स्वानिका जी, कोई ऐसे नाम जिनकी वजह से आपकी कला को ये नए डायमेंशंस या नए आयाम मिले, आपको शेयर करना चाहेंगे? ऐसे लोग जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, कुछ उनके बारे में बताएंगी?
1: जी हाँ, अभिनय के क्षेत्र में तो मैं एक नाम बता ही चुकी हूँ, जो हमारे एमडी हैं मिसेज सुमन चोपड़ा मैम, उनकी वजह से तो मैं अभिनय में आई ही। पर प्रमोद प्रमिल जी, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और शॉर्ट फिल्में भी यहाँ डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर

0: के भाव, भंगिमा, चलना फिरना, हाथ उठाना, किस तरह से आपको सौम्यता भी लानी है और एक तटस्थता भी लानी है, ये सब उन्होंने सिखाया था। तो ये तीन नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया।
1: चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि छोटे शहरों में भी अब महिलाएं मंच पर, उनको अवसर पहले की तुलना में अधिक मिलने लग गए, मंच तक आने के लिए अच्छे मिल रहे हैं आपको, आ सकती हैं, बिल्कुल लगता है आपको ऐसा?
0: हाँ बिल्कुल, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना भी है और वैसे भी आजकल महिलाओं को काफी मंच मिल रहे हैं। अगर आप अपने हुनर को दिन प्रतिदिन तराशते रहें तो निश्चय ही आपको अच्छे मंच मिलते हैं।
1: सही बात है। तो यहाँ फिर हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक
0: जी
1: गाने का आनंद लेते हैं।

0: सोनिका जी, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, मुंशी प्रेमचंद्र काव्य सम्मान और एबीकेएस अचीवर्स अवार्ड 2025 जैसी उपलब्धियां, इनमें से कौन सा सम्मान आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है? और अगर करीब है तो क्यों? ऐसी क्या खास बात उस सम्मान में है?
1: देखिए, वैसे तो हर माँ को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, पर अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे लगता है एबीकेएस अचीवर्स अवार्ड मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा खास होगा, क्योंकि जब आपके अपने आपकी कला को पब्लिकली अवार्ड देते हैं, पब्लिकली उसको पहचान दिलाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपकी कम्युनिटी ने आपको सराहा है, और ये सराहना बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए। तो मेरे लिए ये अवार्ड थोड़ा

0: सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: तो इन सम्मानों के बाद आपकी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं कैसे बदली? क्या कुछ परिवर्तन आता जाता है जब बहुत ज्यादा सम्मान मिलते जाते हैं अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति? ऐसा कुछ होता है क्या?
0: जब अवार्ड मिलते हैं तो बस आपकी आपके लिए जिम्मेवारी ये बढ़ती है कि पहले से आपको बहुत ज्यादा बेहतर होना है और पहले से ज्यादा आपको समाज को भी कुछ देना है, क्योंकि समाज ने ही आपको दिया है। तो मेरे लिए ये एक चुनौती भी है कि मैं अपने ज्ञान को, अपने हुनर को और आगे ले जाऊं।
1: हाँ, और उसमें आगे बढ़ाए उस काम को, बिल्कुल सही बात।
0: हाँ
1: तो अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ चुके हैं इस इंटरव्यू की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे कुछ आखिर में सवाल करूं, एक हम
0: जी
1: गाने के लिए छोटा सा पॉज ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।

0: सोनिका जी एक गृहिणी, कलाकार और लेखिका, इन तीनों भूमिकाओं को निभाते हुए आज आप अपने जीवन में किस एक शब्द में परिभाषित करेंगी?
1: संतुष्टि। इन तीनों भूमिकाओं को मैंने बहुत निभा रही हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि होती है हर भूमिका में।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। आजकल बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इस शब्द का यूज करते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या मैं संतुष्ट हूँ। तो आपने तीनों जो अपनी भूमिकाएं हैं इनके लिए एक ही शब्द बताते हुए बहुत ही बढ़िया और प्रभावी जवाब दिया है इस बात का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे श्रोताओं में जो महिलाएं कला, लेखन या मंच से जुड़ना चाहती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वो क्या करें, किस तरह से अपने में बदलाव लाएं या किस तरह से इस सारे चीजों से जुड़े?
1: देखिए, अगर किसी महिला में आप में कोई हुनर है तो आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा आपका अस्त्र है। मैं कहूंगी कि आप उसे, सोशल मीडिया पे कई मंच हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी जुड़ेंगे तो मेरा इन सब, मेरा महिलाओं से यही कहना है, आप में जो भी हुनर है आप हमेशा अपने हुनर को दिखाएं दूसरों को, और अपने साथ आलोचक जरूर रखें। वो कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जब तक आपके पास आलोचक नहीं रहेंगे, आपके दो तीन दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको असली रिव्यू दें आपके कला, चाहे आप लिखती हैं, चाहे डांस करती हैं, अभिनय करती हैं, कुछ भी करती हूँ, पर दो तीन दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जो रियल रिव्यू देते। आप अपने हुनर को तराश सकते हो, और अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं इसमें थोड़ा ऐसा और होना चाहिए, कभी भी उसको नेगेटिवली मत लो, हमेशा हमेशा उसको पॉजिटिवली लो। तो आलोचना ही सफलता का सबसे अच्छा साधन है, माध्यम है। तार्किक आलोचना को हमेशा आप अपने हुनर में जगह दें, जिससे आपका हुनर हमेशा आगे बढ़ेगा।
0: बहुत सुंदर, ये बात आपने बड़ी जोरदार कह दी कि सोशल मीडिया के आने के बाद से आपको बहुत सारे मंच मिल गए, या कुकिंग से लेकर कविता, शेर व शायरी, गायन और कराओके तो आजकल बहुत फेमस हो ही गया है, सब लोग गा ही रहे हैं आजकल। तो
1: लेखन उसमें अपने तराश सकते हैं अपने हुनर को, फिर आप ऑफलाइन मंचों पे अपना प्रस्तुति दे सकते हैं।
0: बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल तो ब्लॉग्स लिखने लग गए लोग, बाग लिख भी सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और ये सब घर की एक घर के एनवायरनमेंट से आप बैठे बैठे सारा कुछ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा,
0: अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा, और मोबाइल हाथ में लिया और जब भी समय मिला और कुछ ना कुछ आपने लिखा, और पढ़ने के लिए भी आपके पास बहुत है, दूसरों के ब्लॉग्स हैं, दूसरों की कविताएं हैं,
1: बहुत कुछ है आपके पास, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: महिलाओं के लिए तो एक पूरा दुनिया खुल गई है, अगर ये कहना चाहूँ तो मैं।
1: बिल्कुल, अब आज गृहिणी ये नहीं है कि सिर्फ घर का ही काम कर रही है, पर हाँ अपने शौक को जीने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में आप उसका यूज करें, फिर देखें आप कहाँ पहुँचते हैं।
0: आप ये देखिए ना, कुकिंग के ही कितने सारे चैनल चल रहे हैं, वो उसी पे लोग बहुत बढ़िया यूट्यूब पे डाल के कितना सफल हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, कुकिंग है आपका, साहित्य है, पेंटिंग है, डांस है, किसी में भी आप जा सकते।
0: तो सोनिका जी, आने वाले समय में आपकी कोई नई प्रोजेक्ट या नई परियोजना या किताब जिस पर आप काम कर रही हैं, तो कुछ बताएं हमें उसके बारे में।
1: हाँ, जिस तरह से मेरी इस अयोध्या पीड़ा खंड को बहुत ही प्यार दिया पाठकों ने, तो अब मैं इस पे ही ड्रामा, इसको मैं एक ड्रामा में कन्वर्ट कर रही हूँ, और आने वाले दिनों में रंगमंच पे उतारने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा लंबा काम है, देखिए कब हो पाता है। ऑलमोस्ट लिख चुका है ड्रामा, पर बस उसकी बाकी तैयारियां चालू हैं अभी।
0: चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इसके लिए आपकी, और
1: धन्यवाद।
0: अब हम बिल्कुल पायदान पे, आखिरी पे आ गए हैं। तो श्रोताओं, आपने सुनी सोनिका कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरक यात्रा, जहां एक गृहिणी ने अपने जीवन को केवल दिनचर्या तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कला, साहित्य और मंच के जरिए समाज में संवेदना की नई धारा बहाई। अंधा युग के कृष्ण से लेकर अयोध्या पीड़ा घन की स्त्रियों तक, उन्हें हर किरदार में जीवन की गहराई और स्त्री की आत्मा की आवाज को शब्द दिए हैं। सोनिका जी, हमारी श्रोताओं की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही शब्दों, भावनाओं, अभिनय से नई रोशनी फैलाती रहें। आप यहाँ आई, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस माध्यम से जोड़ने का और श्रोताओं से जोड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और दोस्तों, अगर आपको आज का ये संवाद पसंद आया हो तो जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभकामनाएं, और शब्दों की इस यात्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी में छिपा है एक नया आलोक। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे भावना और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम आप सभी के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं। तो चलिए सुनते हैं हम उनका जीवन परिचय।
5: मैं एक गहरा कुआं हूँ इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए कि उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी, जैनुल आबदीन और आशी अम्मा के बेटे की कहानी, उस लड़के की कहानी जो अखबारें बेचकर अपने भाई की मदद करता था, उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश शिव सुब्रमण्य आयर और अय्या दुराई सोलोमन ने की, उस विद्यार्थी की कहानी जिसे पंडले मास्टर ने तालीम दी, MG के मैनन और प्रोफेसर सारा भाई ने इंजीनियर की पहचान दी, जो नाकामियों और मुश्किलों में पलकर साइंसदान बना, और उस रहनुमा की कहानी जिसके साथ चलने वाले बेशुमार काबिल और हुनरमंद लोगों की टीम थी। मेरी कहानी मेरे साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनियावी मानों में मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। मैंने कुछ हासिल नहीं किया, जमा नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं और कोई नहीं, न बेटा न बेटी न परिवार। मैं दूसरों के लिए मिसाल नहीं बनना चाहता, लेकिन शायद कुछ पढ़ने वालों को प्रेरणा मिले कि अंतिम सुख रूह और आत्मा की तस्कीन है। खुदा की रहमत उनकी वरासत है। मेरे परदादा अव्वल, मेरे दादा पकीर और मेरे वालिद जैनुल आबदीन का खानदानी सिलसिला अब्दुल कलाम पर खत्म हो जाएगा, लेकिन खुदा की रहमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो अमर है, लाफानी है।
6: मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ। मेरे अब्बा जैनुल आबदीन के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था, और मेरी माँ जैसी मददगार थी आशी अम्मा। उनकी कई औलादों में एक मैं भी था, बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का। अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम, जो कभी 19वीं सदी में बना था। काफी वसी और पक्का मकान था, रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में। मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे, मगर जरूरियात की तमाम चीजें मुयस्सर थीं। सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था, मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी, मटीरियली एंड इमोशनली। रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी, फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इत्तेफाक से पड़ोस में रहते थे। हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी, जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। रामेश्वर मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे। मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे। मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे। एक बार मुझसे कहा था, जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है, एक महान शक्ति है, जो हमें मुसीबत, मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुँचाती है। मैं करीब 6 बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया, जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी का दौरा करा सकें, ले जाएं और वापस ले आएं। वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे। एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन, बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ। अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे 15 साल बड़े थे, फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी। हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे। मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था, जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री। जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से, लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था। जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे, साइंस की इजाद, मेडिसिन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे। एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया, वो मेरा कजन था, मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ सामाजिक और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी। उसी तरह उसकी तरबियत होती है। मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली। लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा, उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर जंग खत्म हो गई और हिंदुस्तान की आजादी बिल्कुल यकीनी हो गई। मैंने अब्बा से रामेश्वरम छोड़ने की इजाजत चाही। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स रामनाथपुरम जाकर पढ़ना चाहता था। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन मेरे साथ रामनाथपुरम तक गए मुझे शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल कराने के लिए। जाने क्यों वो नया माहौल मुझे रास नहीं आया। रामनाथपुरम बड़ा मसरूफ शहर था और करीब 50,000 की आबादी थी, लेकिन रामेश्वरम का सुकून और इत्मीनान कहीं नहीं था। घर बहुत याद आता था और घर लौटने का कोई मौका मैं छोड़ता नहीं था। शॉर्ट्स हाई स्कूल में दाखिल होने के बाद एक 15 साल लड़के के तमाम शौक जो हो सकते थे मेरे अंदर जाग उठे। मेरे टीचर अय्या दुराई सोलोमन बेहतरीन रहबर थे, गाइड उस नौजवान जहन के लिए जिसके सामने जिंदगी की बेशुमार मुमकिनात खुलने वाली थी। रामनाथपुरम के उस अरसे कयाम में उनसे मेरा रिश्ता उस्ताद शागिर्द या गुरु शिष्य से भी आगे निकल गया। अय्या दुराई कहा करते थे, जिंदगी कामयाब होने और नतीजे हासिल करने के लिए 3 ताकतों पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। अय्या दुराई सोलोमन जो बाद में रेवरेंट हो गए कहा करते थे, इससे पहले कि मैं चाहूं कुछ हो जाए, ये जरूरी है कि मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वो होगा। मैं अपनी जिंदगी से अगर मिसाल दूं तो मुझे बचपन से ही आसमान के इसरार और परिंदों की परवाज हमेशा हैरान करती थी, फैसिनेट करती थी। समंदर में कुंजों और बगलों को ऊंची उड़ाने लगाते देखता था तो उड़ने को जी करता था। मैं एक सादा लोग गांव ही का लड़का तो था,
5: लेकिन मुझे यकीन था कि एक दिन मैं जरूर उन कुंजों की तरह बुलंद उड़ाने लगाऊंगा, बुलंदी पर प्रवास करूंगा। और हकीकत यह है कि रामेश्वरम से उड़ने वाला मैं पहला लड़का था। श्वार्ट्ज स्कूल में तालीम खत्म करते करते मेरे अंदर खुद एतमादी बस चुकी थी और मुझे यकीन था कि मैं जरूर कामयाबी हासिल करूंगा। मैं तालीम आगे जारी रखूंगा, उसमें कोई दूसरा ख्याल नहीं था। सन 1950 में मैं इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची में दाखिल हो गया। जब बीएससी डिग्री के लिए मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया तो हायर एजुकेशन के माने सिर्फ इतने ही जानता था। ये नहीं जानता था कि हायर एजुकेशन के लिए कुछ और भी हो सकता है, न ये जानता था कि साइंस पढ़ के फ्यूचर के लिए और क्या मौके हासिल हो सकते हैं। बीएससी पास करने के बाद ही जान पाया कि फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों कुछ लोगों का ऐसा ख्याल है कि साइंस आदमी को खुदा से मुनकर कर देती है, लेकिन मेरे लिए तो साइंस एतमाद, विश्वास और रूहानी तस्कीन की वजह रही है। किसी तरह मैं MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ गया, लेकिन उसका दाखला बहुत महंगा था। कम से कम 1,000 रुपए की जरूरत थी और मेरे अम्मा के पास इतने रुपए नहीं थे। उस वक्त मेरी अक्का मेरी आपा जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर मेरी फीस का इंतजाम किया। मुझ पर उसकी उम्मीद और यकीन देखकर मैं बसीज गया। MIT में सबसे ज्यादा मजा आया। वहां 2 हवाई जहाज रखे देखकर जो उड़ान से बरी कर दिए गए थे, मुझे उनकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। और जब सब लड़के हॉस्टल लौट जाते थे, मैं कई कई घंटे उनके पास बैठा रहता था। फर्स्ट ईयर मुकम्मल करने के बाद जब मुझे अपने ज्यादा खुसूसी मजमून चुनना था, यानी अपनी स्पेशल ब्रांच का चुनाव करना था, तो मैंने फॉरेन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव कर लिया। MIT की तालीम के दौरान मुझे 3 टीचर्स ने बहुत मुतासर किया। प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडले, प्रोफेसर नरसिंह राव। प्रोफेसर स्पॉन्डर टेक्निकल एरोडायनामिक्स सिखाते थे। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिले से पहले मैंने उनसे सलाह ली थी। उन्होंने समझाया था कि मुझे मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, मेरे एप्टीट्यूड्स और एस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। मैं खुद भी होने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि जब वो अपना स्पेशलाइजेशन का चुनाव करें तो ये देखें कि उनमें कितना शौक है, कितना उत्साह है और लगन है उस शोबे में जाने के लिए। प्रोफेसर KAV पंडले ने मुझे एरोस्ट्रक्चर डिजाइन सिखाया और उसका तज्जिया भी, विश्लेषण, एनालिसिस भी। वो बड़े खुशदिल और दोस्त टीचर थे और हर साल कोई ना कोई नया तरीका, नया नजरिया लेकर आते थे कोर्स में। प्रोफेसर नरसिंह राव मैथमेटिशियन थे, वो एरोडायनेमिक्स की थ्योरी सिखाया करते थे। उनकी क्लास में दाखिल होकर मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स बाकी तमाम सब्जेक्ट्स से ज्यादा अच्छा लगने लगा। MIT से मैं बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में बतौर ट्रेनी दाखिल हो गया। HAL से जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनकर निकला तो जिंदगी ने 2 मौके मेरे सामने खड़े कर दिए और दोनों मेरी परवाज के देरीना ख्वाब पूरे कर सकते थे। एक मौका था एयरफोर्स का, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। मैंने दोनों में अर्जी भेज दी और बयक वक्त दोनों से इंटरव्यू का बुलावा आ गया। एयरफोर्स के लिए मुझे देहरादून बुलाया गया था और डिफेंस के लिए दिल्ली। मेरे दोनों मुकाम 2000 किलोमीटर के फासले पर थे। ये पहला मौका था मेरा अपने वसी और विराट वतन को देखने का। खिड़की पर बैठा मैं इस देश की सरजमीन को पांव तले से बहता हुआ देख रहा था। हैरान था कि उत्तर की तरफ सफर करते हुए एक ही मुल्क का लैंडस्केप कैसे बदलता चला जाता है। मैं 1 हफ्ता दिल्ली में ठहरा, डिफेंस मिनिस्ट्री का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा हुआ था। वहां से मैं देहरादून गया एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के लिए। 25 उम्मीदवारों में मैं 9वें नंबर पर आया। मेरा दिल बैठ गया, बहुत मायूस हुआ और कई दिन तक अफसोस रहा कि एयरफोर्स में जाने का मौका मेरे हाथ से निकल गया। मैं ऋषिकेश चला गया दिल पर यह बोझ लेकर कि आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे। गंगा में स्नान किया और फिर चलता हुआ पास की पहाड़ी पर शिवानंद आश्रम तक पहुंच गया। स्वामी शिवानंद से भेंट हुई। देखने में बिल्कुल गौतम बुद्ध लगते थे, सफेद दूधिया धोती और पांव में लकड़ी की खड़ाऊ। उनकी बच्चों सी मासूम मुस्कान और सादा दिली देखकर बहुत प्रभावित हुआ मैं। मैंने बताया उन्हें कैसे मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने से रह गया और मेरी कितनी शदीद ख्वाहिश थी आसमानों में उड़ने की, परवास करने की। वो मुस्कुरा दिए और बोले, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो, तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, एक बरकी मकनातीसी ताकत होती है। दिमाग जब सोता है तो वो एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह कायनात ब्रह्मांड से सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटकर दिमाग में लौट आती है। इसलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है, वो तखलीक होगा। तुम विश्वास करो इस अजली बंधन पर, इस वचन पर कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। मैं दिल्ली लौट आया, डिफेंस से अपना इंटरव्यू का नतीजा दरियाफ्त किया। जवाब में मुझे अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया और अगले दिन से सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिया गया 250 रुपए की महाना तनख्वाह पर। 3 साल गुजर गए। उन्हीं दिनों बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE का एक नया महकमा खुला और मुझे वहां पोस्ट कर दिया गया। बेंगलोर कानपुर से बिल्कुल मुख्तलिफ शहर था। मैं अपने डायरेक्टरेट की पोस्टिंग का पहला साल वहां गुजार चुका था। दरअसल हमारे देश में ये एक अजीब तरीका है, एक अजीब सा ढंग है अपने लोगों को हद दर्जा तक निचोड़ लेने का, जो हमारे लोगों को इंतहा पसंद बना देता है। शायद इसलिए कि सदियों इस देश ने गैर मुल्की तहजीबों के जख्म भी खाए हैं और उन्हें अपने दामन में जगह भी दी है। अलग अलग हुक्मरानों से वफा करते करते हम अपनी हैसियत, अपनी यकताई खो बैठे हैं, बल्कि हमने एक और ही किस्म की खूबी पैदा कर ली है कि एक ही वक्त में रहम दिल भी हैं और बेरहम भी, हसास भी हैं और बेहिस भी। जितने गहरे हैं उतने ही सतही। ऊपर से देखो तो हम बड़े खुश रंग और खूबरू नजर आते हैं, लेकिन कोई गौर से देखे तो अपने हुक्मरानों की एक बेढब नकल से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कानपुर में कल्ले में दबाए हुए पान वाले नवाब वाजिद अली शाह के नकलची बहुत देखे और बेंगलोर में फिरंगियों के अंदाज में कुत्ते की जंजीर थामे टहलते हुए साहिबों की कमी नहीं थी। बेंगलोर में रहकर मैं रामेश्वरम के सुकून और गहरे शांत वातावरण के लिए तरसता था। पहले साल तो ADE में कोई ज्यादा काम नहीं था। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई थी कि 3 सालों में एक स्वदेशी हावरक्राफ्ट तैयार करें और वो वक्त से पहले तैयार हो गया। नंदी उसका नाम रखा गया, शिव की सवारी के आधार पर। उसका डिजाइन हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ जब आपसी कंट्रोवर्सीज की बिना पर सारा प्रोजेक्ट बालाए ताक रख दिया गया, बंद कर दिया गया। प्रोफेसर MGK मेनन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर, एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला, मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकोस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर MGK मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के उंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में ये मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तदा थी, हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इम्प्रेशन अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूँ, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है, जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की, जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हतक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाकई हुआ, 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपाची। नाइकी अपाची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू, अपने ख्वाब का इजहार किया, एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान

है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और मैं, हम दोनों उस पैनल के मेंबर थे। उस वक्त तक भविष्य की आने वाली SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाक नक्शा भी तैयार हो चुका था। प्रोफेसर साराभाई अपने देरीना ख्वाब को ताबीर देने के लिए कुछ और साथियों का चुनाव कर चुके थे। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे उस प्रोजेक्ट का लीडर चुना गया। उस पर प्रोफेसर साराभाई ने मुझे एक और जिम्मेदारी भी सौंपी कि लॉन्च की चौथी स्टेज मैं ही डिजाइन करूं। ये मामूल था, मेरा आदत थी कि हर मिसाइल पैनल की मीटिंग के बाद मैं जाकर प्रोफेसर साराभाई को पूरी तफसील, पूरी रिपोर्ट देता था। दिल्ली में ऐसी ही एक मीटिंग के बाद 23 दिसंबर 1971 को मैं त्रिवेंद्रम लौट रहा था और उस दिन प्रोफेसर साराभाई थुम्बा में SLV का मुआयना करने गए हुए थे। दिल्ली एयरपोर्ट के लाउंज से मैंने उन्हें फोन किया, पैनल मीटिंग की तफसील बताई। प्रोफेसर साराभाई ने मुझे कहा कि मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उनका इंतजार करूं। मैं जब त्रिवेंद्रम पहुंचा तो फिजा में एक मातम बिछा हुआ था। मुझे खबर दी गई कि प्रोफेसर साराभाई नहीं रहे। चंद घंटे पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। मैं थर्रा के रह गया। चंद घंटे पहले ही तो मैंने उनसे बात की थी, मेरे लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। प्रोफेसर साराभाई मेरी नजर में इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता हैं, जैसे राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी हैं। उन्होंने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए और खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल साबित हुए। कुछ अरसा प्रोफेसर MG मेनन ने स्पेस रिसर्च का काम संभाला। बिलाखिर प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO की जिम्मेदारी सौंप दी गई। थुम्बा का पूरा कॉम्प्लेक्स एक बड़े पैमाने पर स्पेस सेंटर बना दिया गया और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC का नाम दिया गया। जिसने वो सेंटर कायम किया था उसी के नाम से उस जगह की श्रद्धांजलि पेश की गई। मशहूर मेटलर्जिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पहले डायरेक्टर मुकर्रर हुए। कोई भी शख्स अपनी जिम्मेवारी में तभी कामयाब हो सकता है अगर वो बारसूख हो, मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी मोतबर हो और अपने फैसलों के लिए उसे सही हद तक आजादी हो। शायद निजी जिंदगी में भी तसल्ली का यही एक रास्ता है, आजादी और जिम्मेवारी एक साथ हो, तभी वो तस्कीन और खुशी का बायस हो सकती है। और जाती आजादी हासिल करने के लिए मैं दो रास्ते तजवीज कर सकता था जो मैंने इख्तियार किए। पहला तो ये कि अपनी तालीम और तरबियत को बढ़ावा दो। इल्म, नॉलेज बड़ा कारामद हथियार है, बहुत काम आता है। इल्म जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आजादी के हकदार हो गए। इल्म वो पूंजी है जो कोई छीन नहीं सकता। टीम की रहनुमाई तभी मुमकिन है अगर आपकी जानकारी मुकम्मल हो, अप टू डेट हो। कामयाब रहनुमा बनने के लिए जरूरी है कि दिन का काम जब खत्म हो आप पिछले काम का जायजा लें, अगले दिन के काम की तैयारी करें। दूसरा तरीका यह है कि अपने काम को अपना फख्र समझें, गर्व समझें। और जरूरी है कि अपने अंदर की शक्ति की सही जानकारी हो। जो करो उस पर यकीन रखो या जिस पर यकीन हो वही करो, वरना दूसरों के ईमान का शिकार बनते रहोगे। SLV प्रोजेक्ट के पहले 3 सालों में साइंस के बहुत से नए नए इसरार खुले और आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी का फर्क समझ आने लगा। रिसर्च और अमल, डेवलपमेंट का फासला पता चलने लगा। किसी भी इजाद में गलतियां होना लाजमी है, लेकिन हर गलती कामयाबी की तरफ एक और कदम उठाती है, एक और सीढ़ी बन जाती है। किसी भी तखलीक की तरह SLV-3 की तखलीक भी कई दर्दनाक लम्हों से गुजरी। एक रोज जब मैं और मेरे तमाम साथी अपने कामों में पूरी तरह डूबे हुए थे, मेरे घर से एक मौत की इत्तला पहुंची। मेरे दोस्त और हमदर्द मेरे बहनोई जलालुद्दीन का इंतकाल हो गया था। कुछ देर के लिए तो मैं सुन्न होकर रह गया, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद

बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाने से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्ला खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फखर था। जो पौधा वो लगा कर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। पहली जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री आर वेंकट रमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा बदर्जा मिसाइल तैयार करने के, हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टैक्टिकल कोर वहीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना खाव रेक्स को, यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को, मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था। वो बड़े ताज्जुब से हमारी तरफ देख रहे थे कि हम क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे। हम एक मीटिंग में बैठे हुए अपने मकसद को पूरा करने के लिए 1984 की निशानदेही कर रहे थे, जब डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश की मौत की खबर आई। मेरे लिए वो एक और सदमा था। पहली SLV की नाकामी के वक्त जिस तरह उन्होंने ढारस दी थी मुझे, वो याद करके मैं और ज्यादा गमगीन हो गया। प्रोफेसर सारा भाई अगर VSSC के निर्माता थे, बनाने वाले थे, तो डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उसके आमिल थे, एग्जीक्यूटर थे। उनकी विनम्रता ने मुझे बड़ी हद तक नरम कर दिया और मैंने अपनी तुंद मिजाजी पर काफी काबू कर लिया। उनकी हलीमी सिर्फ अपनी खूबियों तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि अपने से छोटों को इज्जत देना भी उनकी आदत में शामिल था। उनके बर्ताव और सुलूक में ये बात नजर आ जाती थी कि कोई शख्स भी खामियों से खाली नहीं है, यहां तक कि अफसर भी, लीडर भी, रहनुमा भी। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे। एक कमजोर से शरीर के अंदर उनमें बच्चों की सी मासूमियत थी। मुझे वो हमेशा साइंसदानों में संत नजर आते थे। पृथ्वी का काम अपनी तकमील को पहुंच रहा था जब हम 1988 में दाखिल हुए। 25 फरवरी 1988 सुबह 11:23 पर पृथ्वी की पहली परवाज वाकई हुई। हमारे मुल्क में वो एक ऐतिहासिक मौका था।
पृथ्वी सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल ही नहीं बल्कि आइंदा आने वाली तमाम किस्म की मिसाइल का बुनियादी नक्शा भी था, फ्यूचर का मॉड्यूल था वो। पृथ्वी ने हमारे आस पड़ोस के मुल्कों को दहला दिया। मगरबी यानी वेस्टर्न मुल्कों को पहले तो हैरत हुई, फिर गुस्से का इजहार किया और पाबंदी लगा दी इंडिया के लिए कि वो ऐसी कोई चीज बाहर के मुल्कों से ना खरीद सकें जो उनके मिसाइल प्रोग्राम में

0: اسے مثال مت سمجھو، یہ قوم کے ماتھے پر چمکتا ہوا آگ کا سنہری تلک ہے۔ انیس سو نوے کے ریپبلک ڈے پر دیش نے میسائل پروگرام کی کامیابی کا جشن منایا۔ مجھے پدم وبھوشن سے نوازا گیا اور ڈاکٹر اروناچلم کو بھی۔ دس سال پہلے پدم بھوشن کی یادیں ایک بار پھر ہری ہو گئیں۔ رہن سہن میرا اب بھی ویسا ہی تھا جیسا تب تھا۔ 10x12 کا ایک کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا اور کچھ ضرورت کا فرنیچر جو کرائے پر لیا تھا۔ فرق اتنا ہی تھا کہ تب یہ کمرہ ترویندرم میں تھا، اب حیدرآباد میں۔ ویٹر میرا ناشتہ لے کر آیا، اڈلی اور چھاچ، اور آنکھوں میں ایک خاموش مسکراہٹ مبارکباد کی۔ میں اپنے ہم وطنوں کی اس نوازش سے چھلک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے سائنسدان اور انجینئر موقع ملتے ہی وطن چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں زیادہ روپیہ کمانے کے لیے، زیادہ آمدنی کے لیے۔ لیکن یہ آدر، محبت اور عزت کیا کما سکتے ہیں جو انہیں اپنے وطن سے ملتی ہے؟ 15 اکتوبر 1991 میں 60 سال کا ہو گیا۔ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا۔ چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں۔ یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں۔ ایک طرح سے اپنی سوانح عمری لکھوں، اپنی جیونی۔ میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے۔ تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسئلے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں۔ جیسا کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا۔ زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی۔ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا۔ مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو، یہ پڑھے اور اسے چین ملے، یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے۔ ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے، اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے۔ انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے۔ کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پر لگ جائیں اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے۔
1: دوستوں، آج ہم نے جانا ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا جیون پریچے۔ ایسے ہی جانکاری پراپت کرنے کے لیے سنتے رہیے ریڈیو ٹینٹاویل 90.8 ایف ایم چھابو کی آواز، آر جے بھاونا کے ساتھ۔ بیماریوں پر کم کریں گے خرچہ، ہم کریں گے صحت اور سواستھ پر چرچا۔
2: نمسکار شروتاؤں، آپ سن رہے ہیں جھابوا کی آواز پر ریڈیو ٹنٹیابھیل 90.8 ایف ایم، آپ ہی کے ریڈیو ساتھی آر جے راکیش کے ساتھ۔ تو دوستوں، آج کے اس خاص کاریکرم میں ہم بات کریں گے فائلیریا روگ کے بارے میں۔ فائلیریا ایک گمبھیر بیماری ہے، اسے ہاتھی پاؤں بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں فائلیریا بیماری کے بارے میں وشیش اور مہتوپورن جانکاری۔
1: بیماریوں پر کم کریں گے خرچہ، ہم کریں گے صحت اور سواستھ پر چرچا۔ ہمارے آج کے کاریکرم کا وشے ہے فائلیریا۔ فائلیریا ایک ایسا روگ ہے جس کے سنکرمن ہونے کے بعد اس کے لکشنوں کا پتہ
3: कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
4: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
3: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
4: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
3: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
4: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
3: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
4: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
3: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
4: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
3: जी बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
4: जी, ये दो वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
5: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
3: जी बताइए।
4: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
3: जी डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
4: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभावों से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
3: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
4: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वहाँ पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
3: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं
4: जी।
3: और डॉक्टर साहब, एक
6: क्या फाइलेरिया की दवाई एक बार खा लेने से साल में पूरे साल इससे बचा जा सकता है?
3: बताइए
4: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
3: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर, और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है, इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
4: जब अभियान चलता है, हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें, और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें। इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें
3: जी। और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए, कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
4: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो कीटाणु है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
3: अच्छा। जी रात के 10 बजे से 2 बजे तक दबा ज्यादा
4: वह सबसे ज्यादा दिखते हैं जी।
6: तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फिलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
3: जी बताइए।
4: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए
3: जी।
2: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
7: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
8: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टंट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टंट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
9: किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार, जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे सारे किसानों ने है, हमारे किसानों का रुख है जो कहीं ना कहीं जैविक खाद्यान्नों पर और जैविक खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और सभी आज के अधिकतर जो हमारे उपभोक्ता हैं वह जैविक विधि से उपजाए हुए उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में ले रहे हैं। तो किसान साथियों, आज के इस जैविक बाजार संभावनाएं अपार कार्यक्रम में हम जानेंगे कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
10: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो हैं अब किसानों को इसमें नजर आ रही हैं। किस तरीके से संभावनाएं यहां पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
11: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि। अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिकतम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है। जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है। इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता, साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्व पूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है, इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम, विविधता में अवशेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबा कर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर

0: विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा, वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथा कथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार है हमारे किसानों के सामने। अगर वो इस बाजार का रुख करते हैं तो उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो सकता है, और यही जानकारी जो है अब लगातार किसानों को दी भी जा रही है। हम भी उसी जानकारी को आज यहां पर उसके पहलू जो है तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे, और इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान जो है वो स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी, निदेशक है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद कृषि मंत्रालय की ओर से। इसके साथ साथ यहां आज हम डॉक्टर चंद्रा से जानेंगे तमाम उन योजनाओं के बारे में जो हमारे किसानों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं, खासतौर से जैविक खेती पर केंद्रित हैं, और उसके बाद किस तरीके से एक बाजार जो है किसानों को जैविक का वो मिलना चाहिए, इसकी तमाम जानकारी इनसे हम लेंगे। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मनु चौधरी जी जो जैविक उद्यमी हैं, और किसानों की एक समस्या रहती थी कि कैसे उनको बाजार का जो रुख है वो करना होगा, कैसे उनका जो उत्पाद है बाजार तक पहुंचेगा। सरकार ने भी इस समस्या पर गौर किया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्था जो है वो खोल दी गई है। वहीं से मनु चौधरी जी भी हैं पश्चिम बंगाल, और उसके साथ साथ पूरे देश में किस तरीके से जैविक उत्पादों का बाजारीकरण हो रहा है, कैसे किसानों को फायदा पहुंच सकता है, इसकी तमाम जानकारी इनको हर वही जानकारी आज किसानों के लिए हम यहां उनके साथ साझा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हरेंद्र राणा जी जो कि एक सफल उन्नत किसान है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हरेंद्र राणा जी उससे पहले भारतीय वायुसेना में इंजीनियर पद पर कार्यरत रहे हैं, उसके बाद भी इन्होंने जो पढ़ाई की एक बात कही जाती है जो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की और 3 डिग्री इन्होंने MBA में यहाँ पर हासिल की हैं, उसके बाद एक नई नौकरी, उसके बाद आखिर की जब बात की जाती है क्योंकि एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं हरेंद्र राणा जी, और वहीं ये पहुंचे यानी अब सफलतापूर्वक खेती किसानी कर रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। इनसे भी इनका आज अनुभव आपके साथ हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जैविक बाजार में अपार संभावनाएं बाकी किसानों को भी नजर आ सकती हैं। सबसे पहले डॉक्टर कृष्ण चंद्रा आपसे हम यहाँ जानना चाहेंगे, अगर जैविक की बात कही जाती है, धीरे धीरे एक हम कह सकते हैं योजनाएं अब आ चुकी हैं किसानों के लिए, और अब एक अच्छी खासी जो संख्या है किसानों की वो हो चली है जैविक खेती की ओर।
2: जी बिल्कुल, ये सच है कि इधर 2 सालों में जो जैविक के ऊपर काम किया गया है और भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई है बहुत ही सफल योजना है, और हम कहेंगे पूर्ण योजना है, संपूर्ण योजना है जो कि टोटल किसान के लिए डिवोटेड है, और उसका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है। जब 2 साल पहले ये योजना चालू की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम पे, उस समय कोई भी किसान हमारे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं था। आज की डेट में हमारे पास करीब 10 लाख किसान ऑल ओवर इंडिया जुड़ चुके हैं, और एक आपको मालूम है कि हमारा PGS इंडिया पिछले साल लॉन्च किया गया था, pgsindia-ncuf.gov.in, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि कितने किसान जुड़े हुए हैं। आज की डेट में 1 लाख से ऊपर किसान 6 महीने में जुड़ गए हैं
1: जी,
2: तो और उन सभी किसानों का डिटेल आप उसमें देख सकते हैं। तो ये शो करता है कि जो स्कीम हमारी चल रही है, जो सरकार ने स्कीम चलाई थी, वो किसानों के लिए कितनी बेनिफिट है और किसान कितने आगे आके इसमें जुड़ रहे हैं। तो एक ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल चल रही है जिसमें कि आपका बाजारीकरण से लेके आपका उनका ब्रांडिंग तक दिया गया है। दूसरी स्कीम हमारी एक नॉर्थ ईस्ट के लिए चल रही है, वैल्यू चेन स्कीम, उसका भी फायदा आना अभी बाकी है, लेकिन किसान उसके साथ भी जुड़ना शुरू हो गए। और इनडायरेक्ट में बहुत सारी स्कीमें चालू की गई हैं, जैसे जैविक स्कूल को सपोर्ट करना वो चालू किया गया है, और ये देखा यह जा रहा है कि किसान कुछ तो हमारी स्कीम से आ रहे हैं, अब कुछ अपने आप इससे जुड़ने लगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में भी सरकार बहुत फायदा दे रही है। जैसे हम लोगों ने प्रमाणीकरण की सुविधा मुफ्त में दी है, तो उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जो किसान को हमारी स्कीम में जुड़ा है नहीं जुड़ा है उसके बाद भी उसको प्रमाणीकरण मिल जाता है, मुफ्त में प्रमाणीकरण मिल रहा है, तो उससे और किसान इसमें आ रहे हैं। फिर बाजारीकरण के लिए भी जो किसान अपना प्रोडक्ट लाता है तो उसको बेचने के लिए हम लोग मदद करते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज की गई जो आज तक नहीं हुआ है कि किसानों के, पहली बार किसानों को सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
1: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया
2: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं।
1: बिल्कुल एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने हमें बताया काफी संख्या में जो किसान है वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
3: इसमें मुकुल जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए, उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
1: जी।
3: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
1: जी।
3: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
1: जी,
3: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
1: जी।
3: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
1: जी।
3: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है,
1: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है
3: जी।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनोज जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचाएं?
4: 1.5 साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और किशन चंद्रा सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं
1: जी।
4: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिजनेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडल मैन को हमें रखना पड़ता था और जिसके थ्रू हम किसानों से चीजों को खरीदते थे
1: जी बिल्कुल।
4: लेकिन जब यह सरकार का यह नया स्कीम निकला पीकेवीवाई, परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि यह स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफी भलाई हो सकता है
1: जी।
4: तो क्लस्टर बनाना, किसान का क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना
1: जी,
4: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना, जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहा है बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना, तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे
1: जी,
4: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है
1: जी,
4: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं,
1: बिल्कुल एक माध्यम बनकर,
4: माध्यम बनकर हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं
1: जी।
4: और इससे किसानों को काफी फायदा है, पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में 3 तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है
1: जी,
4: 3 तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है
1: जी,
4: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदभोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस
1: जी,
4: और कालोनिया। अब इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं, जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब उसको इसकी बेनिफिट समझ में आई
1: जी,
4: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया,
1: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल रहा है,
4: मांग भी देखने को मिल रहा है
1: जी। बिल्कुल, बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आप भी इस बात से सहमत होंगे अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
2: देखिए, हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में, जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ दो साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
1: बिल्कुल
2: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइड तक तो 10,000 किसान है, 1,00,000 किसान हमारे पास इनडायरेक्ट जुड़ चुके हैं
1: जी।
2: और सबसे बड़ी मतलब प्राउड की बात यह है कि जितने भी हमारे ये रीजनल काउंसिल खोले गए हैं और भारत सरकार ने जितने लोगों को अपॉइंट किया है
1: जी,
2: इसके लिए सबसे बड़ी मतलब हमारा जो विजन है हमारे कृषि मंत्री जी का है, श्री राधामोहन साहब ने, जो फर्स्ट डे से उन्होंने कहा था कि किसान को मेन बेनिफिट मिलना चाहिए,
1: बिल्कुल
2: जो कि हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले कहा था। और उनका यह व्यू था कि आप कुछ भी करें लेकिन किसान के पास में बेनिफिट जाए। आज की डेट में हम बता सकते हैं जो भी इस स्कीम के साथ जुड़ा है, स्कीम ना होने के बाद भी जैसा मैंने बताया कि लोगों को प्रमाणीकरण मिल रहा है, जो भी किसान जुड़ रहे हैं अगर वो ऑर्गेनिक में है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो उनको 10% मिनिमम मार्केट रेट से अधिक मिलता है
1: जी।
2: और अगर उनका जैविक पूरा उत्पाद है तो 30% तक उनको अकाउंट में पैसा जा रहा है।
1: बिल्कुल, जैविक उत्पाद की आपने यहाँ बात कही और हम अक्सर देखते हैं बाजार का जब रुख करते हैं तो जैविक उत्पाद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहचान कैसे की जाए, क्योंकि उपभोक्ता तक जब तक असली एक जैविक उत्पाद नहीं पहुंचेगा शायद मांग जो है उतनी ज्यादा निकलकर नहीं आएगी, कैसे पहचान हो सकती है?
2: देखिए, प्रमाणीकरण बताया आपको, प्रमाणीकरण जैसे आपके मनु जी बैठे हुए हैं, ये प्रमाणीकरण भी कर रहे हैं
1: जी,
2: ये प्रमाणीकरण के साथ साथ बाजारी भी कर रहे हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए ये लोग किसानों को जोड़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब उनका प्रोडक्ट, एक सबसे बड़ी चीज है ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में दे रहे हैं कि किसान कैसे क्या उगाए, जैसे इन्होंने बताया कि पूरा क्लस्टर में कर रहे हैं, तो क्या है कि जब जैविक आपके मंच से कई प्रोग्राम हुए, बहुत सारे किसानों ने पूछा कि भाई हम अकेले कर रहे हैं और हमको बाजार नहीं मिल रही, यही देखा गया कि अकेले अगर आप कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती तो बाजार नहीं मिलता, तो वो उस समस्या को खत्म करने के लिए क्लस्टर में बेस में काम किया गया, तो किसानों को जोड़ा जाता है, जुड़ने के बाद जब वो किसान आता है इसमें तो उनको तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी सर्विसेज जीरो दे रहे हैं,
1: सारी जानकारी नहीं मान सकते किसान को दी,
2: उस पर एक लोगो दिया गया जो भारत सरकार की तरफ से है, पीजीएस इंडिया, पीजीएस ग्रीन, अगर आप पहले साल दूसरे साल कर रहे हैं तो पीजीएस ग्रीन लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो इंडिकेट करता है कि ये ऑर्गेनिक है, और उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उसको यूआईडी नंबर हम लोग बोलते हैं, तो उस यूआईडी नंबर से कोई कंज्यूमर अगर देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कहां से आया है, किस किसान ने बेचा है, तो वो अपना पोर्टल पर जाके उसको चेक कर सकता है, तो ये सुविधा दी गई। इससे बड़ी चीज कहती है, जब ये लोग प्रोडक्ट अपना पैकिंग करते हैं, कर्ज करने के बाद मार्केट में भेज रहे हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच का ये लोग उसका रिजल्ट टेस्टिंग करते हैं,
1: तमाम जो मानक है उनको देखा जाता है। मनु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान है, उनके यही जहन में बार बार आता है कि चलिए उत्पाद तैयार हो गया लेकिन मानकों पर वो खरा उतरे तभी आगे जाएगा, तो किस तरीके जो मानक हैं वो अभी तक तय किए गए हैं कि किसानों को ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उनका जो उत्पाद है उसका भी अच्छा दाम उनको मिल सके?
4: देखिए, जब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए PKBY स्कीम में, PGS का जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किए, तो शुरुआती दौर पर किसान बोले कि आप तो जैविक उत्पाद को ही खरीदेंगे
1: जी।
4: तो जब हमने उनको समझाया कि भारत सरकार जो ये योजना जो शुरू की है, कृषि मंत्रालय द्वारा जो ये योजना है, ये योजना ऐसा नहीं है कि पहले साल की खेती को हम लोग नहीं खरीदेंगे
1: जी।
4: नॉर्मली अभी तक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चल रहा था, पहले जो जैविक सर्टिफिकेशन की जो क्रिया थी,
1: बिल्कुल
4: उसमें क्या था कि 3 साल आपको जैविक पूरे खेती करनी होगी, तभी जाके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जैविक कर रहे हैं
1: जी।
4: तो पहले 2 साल की खेती का क्या हो, तो किसानों को पहले 2 साल उन्होंने मेहनत करा, जैविक
1: डर रहता था, शायद उपज ना आ पाए,
4: जिसके वजह से वो डर से जैविक की तरफ अपने आप को ले उस तरफ झुकाव उनका नहीं होता था
1: जी।
4: लेकिन जब ये स्कीम आया, PKBY का स्कीम आया, जिसमें पीजीएस ग्रीन जो सर अभी बोले हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये स्कीम के तहत में ऐसा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहला साल जो उपज होगा किसानों का
1: जी,
4: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा, जहां रेसिडुअल टेस्टिंग होगी
1: जी।
4: और क्योंकि पहले साल खेती होता है, जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदत है, आदि है
1: जी,
4: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते, उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है
1: जी,
4: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ झुकाव की तरफ ले जाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो, और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का, पहले साल का जो उत्पाद है वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले दो साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले। तो नॉर्मली अभी आ जाता है हम लोग कितने दाम उस पर देंगे, जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान
1: जी,
4: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है मिनिमम उससे हम लोग 10-15%।
1: बिल्कुल मनु जी, लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
4: सर, इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस।
1: जी,
4: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा। तो उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में।
1: जी,
4: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद, अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ झुकाव किए हैं, अभी 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं
1: जी,
4: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आगे जुड़ेगी। तो जितना ये किसान इसमें जुड़ेंगे और जितना ज्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल, दाम कम होगा जैसा आपने कहा, और 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद हैं। राणा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की उसके किस तरीके परिणाम जो है अभी तक आपको मिले हैं?
3: मुकुल जी, हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा
1: जी,
3: तो वहां से हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था
1: जी,
3: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी,
3: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइजर डालते हो
1: जी,
3: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीजों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो
1: जी।
3: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला
1: जी,
3: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी,
3: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज, जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्यूर चाहिए
1: जी,
3: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना डीएपी पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्यूर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहां उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
5: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनू रेडियो, आपड़ी बातें।
6: किसान साथियों, चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ, झाबुआ की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारे जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है, अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: नहीं, अब काफी हद तक इसमें डर कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है
2: जी। तो
4: कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी हैं, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है, तो ये सब उनके में जागरूकता है। अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है
2: बिल्कुल। लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसे आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक हैं जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी।
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए
2: जी।
4: अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में, और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा
2: बिल्कुल।
4: तो इससे क्या है कि कंज्यूमर में अवेयरनेस आई, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो जुड़ना शुरू हो गया है। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि आप साइंटिफिक मेथड है, जैसे राणा जी ने बताया कि डिकम्पोजर यूज करिए, तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपके जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए। जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम करवाए और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं। तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर 11 क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपकी जो इनकम है वो करीब 4 लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर करें उससे केमिकल से तो करीब 4 गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इस इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं
2: जी।
4: तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती है,
2: प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है
4: और प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि कैसे कर रहे हैं। हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वहां पर सिखाते हैं कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चल रहे और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को बढ़ा
4: रहे हैं। दायरा बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फॉर्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें। तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जाए, जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा,
4: इसके लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में उनसे अनुरोध किया गया
2: जी।
4: वो भी उन्होंने कंसर्न किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: बिल्कुल एक नई शुरुआत जो है, नई पहल ऐसे की जा सकती है।
4: मिड डे मील है, अब आपको मालूम है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसके साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खोली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब ये पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और उसी उत्पाद को आगे फैलाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है, जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही 70 के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने 3 सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही 3 डिमांड है, इसी 3 डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो ज्यादा डे टू डे में ज्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: तो अब इसकी लॉन्जिबिलिटी कितने
2: फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मान सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसल लेनी है कैसे हम निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस

0: स्वीट जैगरी है, कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
1: जी,
0: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
1: जी।
0: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे तो सुबह शाम एक दो बार इसको घुमा सकता है
1: जी।
0: और 7 दिन में, गर्मी के दिनों में ये तैयार हो जाता है, और विंटर सीजन में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि बैक्टीरिया है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में समय लेता है
1: जी।
0: इसके मात्र यूज से आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाती है
1: जी।
0: कई बार आपने देखा होगा किसान को बोला जाता है जिप्सम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट W2H2 उसमें डाल दीजिए
1: जी।
0: तो जब आपकी जमीन वेस्ट डिकम्पोजर से सॉफ्ट हो रही है तो उस चीज की जो आपकी परचेज है वो घट जाती है
1: जी।
0: दूसरी चीज, आपकी पोरोसिटी ऑफ द लैंड
1: जी
0: वो बढ़ जाती है, केंचुआ बहुत जल्दी आता है इसके यूज करने से, और केंचुआ जब एक बार आ जाता है खेती के अंदर तो आप देखिए कि उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन क्वालिटी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है
1: जी।
0: जमीन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक अंडर वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का रूप ले लेता है, और आपकी फसल को सूखे से लड़ने की क्षमता इस प्रोडक्ट से आ जाती है।
1: यानी ये तमाम फायदे पहुंच सकते हैं ना सिर्फ किसान, बल्कि देखिए जो हमारी मृदा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें मुनाफा हमें मिले, तो ये तमाम फायदे हो सकते हैं। कृष्णचंद्रा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर डीकम्पोजर की फिलहाल हम यहाँ बात करें तो किसान जो है भारी संख्या में पहुंचते भी होंगे ना सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, लेकिन इस तरह के जो उत्पाद का क्या एक जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है?
2: तो एक प्रमोशन के लिए किया गया था एक्चुअली। इसकी भी एक स्टोरी थी कि पहले हम लोग डास्टी जैविक खेती के अंदर इसमें इन्वॉल्व था, 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये हम लोग बैक्टीरिया या फंगस बनाते थे ये खाली इंडस्ट्री के लिए थे
1: जी।
2: तो ये नई सरकार आने के बाद बोला गया कि भाई आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, तब इसको डेवलप किया गया, डेवलप पहले से था लेकिन और उसको मॉडिफाई किया गया। ये ध्यान रखा गया कि इसको जो है किसान अपने आप मल्टीप्लाई करे, तो यही एक टारगेट था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मैन्योर नहीं है, जानवर इतने हैं नहीं, जो वेस्ट है उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए ये बनाया गया। तो देखा गया कि 30 दिन के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट के, राणा जी जैसे बता रहे हैं तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, और मतलब इन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना काम इन्होंने गांव गांव जाके किया है
1: जी,
2: वो मतलब एक बहुत ही मतलब नोटिसेबल है
1: जी।
2: और इसके साथ जो हमारी आज की डेट में हमें करीब 30,000 बोतल किसानों को दी है, एक ही बोतल हम एक गांव में देते हैं ताकि उससे आप किसान आसपास ले लें। खूबी इसमें यह है कि 20 रुपए रखा गया है, एक बोतल लेने के बाद आप सालों साल इसको यूज कीजिए, जैसे बरसाना में है गौशाला है वहां पर उन्होंने दिया, तो उन्होंने 1,000 टन इससे एक बोतल से बना दिया, तो कॉस्ट आपकी अगर पर केजी देखें तो 0.001 पैसा आती है, तो कॉस्ट कुछ नहीं है। और इससे कॉस्ट आपका किसान जो तेलंगाना में है इसको स्प्रे करता है
1: जी,
2: तो वो कॉटन पे स्प्रे कर रहा है, सब हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर लेकिन वो स्प्रे कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया इसमें मतलब सारा इसमें जुड़े हुए हैं
1: जी,
2: और हर एक किसान को आज तक अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि इससे काम नहीं कर रहा है, और किसान जुड़ते चले जा रहे हैं, और हम लोग खाली एजुकेट करते हैं कि आप इसको अपने आप बनाएं अपने आप कर दो, यही एक हमारा मोटो रहा है कि आप इसको जितना से अधिक से यूज करें, तो उसके फायदे अनेक हैं, और एक बार जो किसान यूज करेगा वो अपने आप इसको छोड़ेगा नहीं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपड़ी बातें
1: की जब बात आती है तो यहाँ पर मनु जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान है वो खेती करते हैं, जैसा आपने बताया था पीजीए सिस्टम के जरिए भी 1 से 3 साल का जो समय है उसके बाद एक अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो उनका उत्पाद है वो बाजार में जाए उसके बाद ही, क्योंकि उनको जब तक कुछ आय नहीं मिलेगी वो नया कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है? जैसा आपने कहा कि शुरुआत से हम कोशिश करते हैं जो उनका उत्पाद है उसको हम लेते हैं फिर बाजार में पहुंचाते हैं।
4: पीजीए सिस्टम के अंदर में पहले तो किसानों का किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करें
1: जी,
4: हम उस चर्चा पे थोड़ा आए। सबसे पहले हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इनपुट कैसे ऑन फार्म इनपुट पे कम से कम कॉस्ट में उनके खर्चे, किसान जब वो खेती कर रहे हैं तो उनका कैसे कम से कम लागत में खेती ज्यादा से ज्यादा हो
1: जी,
4: तो वहां उनका थोड़ा सा बचत
1: जी।
4: दूसरा, जब हम लोग बाजार तक मंडी तक उनके फलन को लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्लस्टर जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये क्लस्टर के अंदर ही पैकेजिंग का प्रावधान कर रहे हैं
1: जी,
4: तो पैकेजिंग जब हम उनसे करवाते हैं तो हम उस पैकेजिंग का लेबर कॉस्ट भी हम किसानों को देते हैं
1: जी,
4: वो भी उनका एक एडिशनल इनकम
1: आप वो भी एक आय का जरिया मान सकते हैं।
4: जी, अब जो किसान

0: है उनके घर में और भी परिवार सदस्य हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो हमारे तरफ से पैकेजिंग चला जाता है, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति, तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए, स्टिकर लगाए, तो वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला।
1: जी।
0: तो बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा, लागत,
1: जी लागत कम हो जाती,
0: लागत कम लगा, उससे उनकी बचत हुई। दूसरा, उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ।
1: बिल्कुल।
0: तीसरा, जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से, नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज,
1: जी,
0: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल्स है, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है।
1: जी।
0: चौथा, जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए, तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
1: आय का जरिया, आय का जरिया बन सकता है
0: का आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया,
1: जी,
0: जहाँ पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में,
1: जी,
0: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक की गाड़ी चली गई और हम लोग लेके। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा,
1: जी,
0: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सके और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें, ट्रेन में या रोड में? तो अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी,
1: जी,
0: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचे
1: उत्पाद है वो खराब नहीं होगा,
0: खराब नहीं।
1: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनु जी, कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने है अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
0: देखिए, उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं,
1: जी,
0: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहे हैं जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो,
1: जी,
0: क्योंकि उन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते आए हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वही वो कर पाए जो वो करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉपिंग पैटर्न पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और हमें बाजार में वही प्रोडक्ट को भेजना है जो वो खेती कर रहे हैं, बस उसमें बेहतर इनपुट दे, जैविक इनपुट,
1: कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मूल्य संवर्धन जो है उसमें किया जा सके। कृष्णचंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ मनु जी ने हमें बताया और हम ये भी मान सकते हैं कि वो किसान जो मतलब ग्रामीण हम कह सकते हैं उनको, जिनके पास शायद भूमि नहीं है कृषि के लिए, वो भी अगर इस तरह की इकाइयां लगती हैं, प्रसंस्करण की इकाई है, इसके जरिए उनको भी आय का जरिया मिल सकता है?
2: बिल्कुल मिल रहा है। और जैसा इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल, इस तरह से आपके साउथ में जाए, केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर जो स्पाइसेस वगैरह हो रहा है वहां का जो प्रोडक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने इंटरलिंक कर दिया है।
1: जी।
2: तो ये जितने हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं एक दूसरे से जुड़ गए, तो जो इनके पास डिमांड है इनके पास से दूसरे के भेजते हैं, दूसरे का इनके पास आता है, तो एक इस तरह से आदान प्रदान चालू हुआ है। तो अभी तक क्या है कि उत्पाद नहीं था, अब ये इस साल से अभी नवंबर से इन्होंने चालू किया, तो आप देखेंगे अक्रॉस द इंडिया हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्पाइसेस वहां हो रहा है तो वहां से यहां आएगा, तो आपको वहां केरला का भी मटेरियल दिखाई देगा, तमिलनाडु भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट का भी दिखाई देगा, तो सारे के सारे एक साथ आपको हर शॉप पे दिखाई देंगे।
1: बिल्कुल।
2: ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो बहुत जल्दी आपको मार्केट में इसके उपलब्धि
1: उपलब्धता हो सकेगी। साथ ही साथ यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, उत्पाद आपने बताया, डिकम्पोजर की भी आपने बात की, इससे क्या फायदे हुए? लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में, अगर एक किसान की हम बात करते हैं, किस तरह का बदलाव वो चाहता है कि जैविक खेती जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव कैसा है जिससे और आसानी उसको हो सके और ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें और उसके बाद अपने उत्पाद को बेच सकें?
3: आज की तारीख में मुकुल जी, किसान के सामने एक समस्या रहती है कि उसको आमदनी का जरिया उसका घटता जा रहा है,
1: जी,
3: और उसके खर्चे खेती पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जो हमको खेती से संबंधित जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है और दूसरे सॉइल हेल्थ रिवाइवल, और डॉक्टर साहब से आप बीच में पूछ भी सकते हैं कि और भी इस पर ये काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो हमारी खेती में जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का और दूसरे चीजों का खर्चा है ये ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है।
1: जी।
3: तो ये हमारी एक बचत हो जाती है।
1: बिल्कुल।
3: दूसरी चीज किसान सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जब हम खेती कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रोडक्शन घटता नहीं है।
1: जी,
3: कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं घटता है, और बल्कि, और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कहने के लिए, कई गुना प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है।
1: जी, ये आपका निजी अनुभव है? यानी
3: मेरा अपना अनुभव है। दूसरे, जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है, और समाज को भी चाहिए, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको कंज्यूमर के रूप में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाता है, किसान को उसका अच्छा दाम मिल जाएगा, तो इससे अच्छा, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम चल रहा है।
1: जी,
3: इसमें आजकल आप देखते हो कि पराली को जलाना बहुत एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है।
1: जी,
3: तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है,
1: जी,
3: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है।
1: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
3: है। जी हाँ, उसको कन्वर्ट कर देता है।
1: जी,
3: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है। जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है।
1: जी,
3: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो, या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है, उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे, आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए।
1: जी,
3: तीसरे, आपका जो काव डंग्स है, दूसरा वेस्ट है, उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है।
1: जी,
3: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो, 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
1: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं, और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, और उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
2: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक ऊपर शुरू कर दिया है।
1: जी,
2: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने इस पे ऊपर काम चालू हो गया। और जहाँ तक ये राणा जी बता रहे हैं, तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है।
1: जी,
2: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं।
1: जी,
2: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले,
1: जी,
2: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी, जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया। तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है, अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहे, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे।
1: जी,
2: आपके
1: योगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता है,
2: दिखाएंगे या है।
1: जी,
2: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी है कि ये सब चीजें आप एक बोतल लेंगे, फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए, आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000, 1,00,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास हमारे पास आने जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्शन कीजिए। तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाए कि किसान अपने आप बनाए, तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा। और ये कहना मतलब हम अतिशयोक्ति नहीं समझते हैं कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली है, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3 गुने 4 गुने हम लोग जैविक के जरिए कर सकते हैं।
1: जी,
2: और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है स्ट्रेस में है, आपकी रेनफेड एरिया है। तो रेनफेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहां की उत्पादन आपका 30% कम है। अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है, तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
1: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी सार्थकता
2: और क्वालिटी, आप जो लेते हैं इतनी बड़ी थाली ले रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे छोटी थाली लेंगे, लेकिन उसमें हर चीज आपके है, कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट सब कुछ आपको प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए सही है। और ये भी तय है कि अगर आप जैविक उत्पाद को खाली प्योर उत्पाद खाएं, 6 महीने बाद आप अपने बॉडी में चेंज देखेंगे
1: जी।
2: जो आपको शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी हाई है, लो है, आपका जो तरह तरह की बीमारियां हो रही है, ये सब इससे निवारण है।
1: बिल्कुल डॉक्टर चंद्रा, जो किसान है वो तो आपने बताया कैसे जुड़ेंगे, लेकिन उपभोक्ता भी है,
2: उपभोक्ता के लिए भी, मतलब
1: किसानों
2: के लिए भी है, उपभोक्ता के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपनी जमीन को बचाना है तो आपको जैविक के ही तरफ जाना है। अगर आगे फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, हर चीज के लिए सोल्यूशन आपका जैविक है। और इसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहेंगे, जैसे मनु जी वगैरह भूल गए, इसमें थोड़ा सा एक काम ये लोग और भी कर रहे हैं कि किसानों के, इन्होंने दे रहा है कि जो भी किसान काम कर रहे हैं उनको आपका जो सीड है, सीड भी वो लोग वहां पर उत्पाद कर रहे हैं, आपस में सीड बांट रहे हैं, तो सीड उत्पादन भी वहां पर,
1: यानी बीज उत्पादन भी,
2: बीज उत्पादन मुनाफा शुरू हो रहा है। और जिसके पास जानवर नहीं है, तो जानवर जिसके पास नहीं तो उसको भी डिकम्पोज करके वो अपना मटेरियल आसपास में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सब धीरे धीरे धीरे धीरे उद्योगीकरण की तरफ आपका अग्रसर हो रहा है, कृषि जो है आपकी पूरी साइड जा रही है,
1: बिल्कुल एक पूरी कड़ी है। लेकिन जो किसान इसमें जुड़ना चाहते हैं, यानी जो जानना चाहते हैं कि अगर वो बाजार में आना चाहें तो कैसे वो इस बाजार तक पहुंच पाएंगे?
2: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया, देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट को बना रखा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स से लेने में फायदा यह है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है, और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है, पोर्टल पर जाइए आपका pgsindia.gov.in, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
1: इस पर सारी जानकारी जो है,
2: सारी जानकारी है, और उसको उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
1: बिल्कुल तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें। साथ ही बाजार की जब बात कही जाती है तो ये जरूरी हो जाता है किसान उस बाजार को समझे, साथ ही साथ उस बाजार के पीछे जो अर्थशास्त्र है, यानी कैसे उनको मुनाफा मिल सकता है, उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं, और आज भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने इस बात को और बेहतर ढंग से जाना होगा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं उससे उत्पाद जो आपका तैयार होता है कैसे आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे। और यही जानकारी जो हमारे आज विशेषज्ञ स्टूडियो में आए मेहमान हमारे आप तीनों ने दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां जब बात कही जाती है कि जैविक बाजार और संभावनाएं अपार, यानी एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मुनाफा है, लाभ है सिर्फ किसानों को, और वही जानकारी आज आपने यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए उस जानकारी को जाना। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और कदम जो है एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा, जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी, यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
4: तो जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं, बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंटिया भील 90.8 FM के साथ।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार, आदाब और जय श्री राधे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और दोस्तों आज का रंग है संगीत की दुनिया का सरगमी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त सालोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जिंदगी केवल सुरों का संगम नहीं है, बल्कि भावनाओं की वह भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। कभी यही संगीत हमारी खुशियों का उत्सव बन जाता है, और कभी कठिन समय में सहारा बनकर हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही संगीत साधक जिनके लिए गायन केवल एक शौक नहीं बल्कि जीने का माध्यम है। बचपन से ही संगीत के संस्कार उन्हें अपने परिवार से मिले। उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं उनके पूज्य पिताजी, जो 87 वर्ष की आयु में भी संगीत के प्रति उसी उत्साह और समर्पण के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राधा गोविंद की कृपा और अपने पिता के मार्गदर्शन से इन्होंने जयपुर, दिल्ली और मुंबई में अनेक मंचों पर अपनी मधुर प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन जीता है। चैनल 5 के प्रतिष्ठित सुपर सिंगर्स में जयपुर के टॉप 20 प्रतिभागियों में चयन होना भी इनके संगीत के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। ये वीणा माँ म्यूजिक के सह निदेशक है, जो अपनी माताजी की स्मृति और प्रेरणा को समर्पित एक संगीत परिवार है, और साथ ही स्वर साधना परिवार के सक्रिय सदस्य के रूप में निरंतर सीखने, अपनी कला को निखारने में लगे हुए हैं। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसे विनम्र, संवेदनशील और समर्पित गायक से, जिनकी आवाज में सुरों की मिठास है, व्यक्तित्व में संगीत की सादगी। हम सबकी ओर से हार्दिक स्वागत है श्री राजीव श्रीवास्तव जी का। राजीव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी जय श्री राधे। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का, जिन्होंने मुझको आपके रूबरू होने का मौका दिया। आगे मैं चाहूंगा आप लोगों के अच्छे से अच्छे सवालों का जवाब मैं दे पाऊं, साथ ही अपने हुनर की कुछ झलकियां आप लोगों के समक्ष पेश कर सकूं।
1: तो चलिए राजीव जी, आपके तो आवाज सुन के ही मजा आ गया। तो राजीव जी, ऐसा है, चलिए शुरुआत से शुरुआत कर लेते हैं, और शुरुआत आपके कुछ बचपन से कर लेते हैं, कुछ अपने परिवार के बारे में, बचपन के बारे में। बचपन में आप कैसे विद्यार्थी थे, कुछ उसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: परिवार में हम चार भाई हैं, और पापा अब SBI से रिटायर हैं। आफ्टर 41 इयर्स की सर्विस के बाद वो रिटायर हुए, और अभी 87 इयर्स के हैं। मम्मा की अब यादें हैं हम लोगों के साथ। मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करा, उसके बाद फाइनेंस में डिप्लोमा करने के बाद कंप्यूटर एजुकेशन के संग 95 से फाइनेंस और अकाउंट फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। बचपन में शुरुआत से काफी शौक था पापा को देखते हुए संगीत का, तो बचपन संगीत में माहौल में गुजरा है, और अब अपनी पैशन को पूरा कर रहा हूँ।
1: चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो अब अगर कुछ थोड़ा सा मैं बचपन में और वापस ले चलूं, तो बताइए कोई ऐसा पल था या ऐसा लम्हा था जब आपको संगीत से प्रेम हुआ और बचपन से ही गुनगुनाने का शौक था, या कोई ऐसी घटना हुई जिससे एकदम लगा कि ये संगीत ही मेरा एक जीवन का रास्ता बन सकता है।
2: बस संगीत से पहला परिचय तो कह सकते हैं जब से होश संभाला है। पापा को घर पर हारमोनियम पर रियाज करते, महफिलों में गाते, स्टेज परफॉर्मेंस देते देखते देखते कब मैं भी हारमोनियम लेकर बैठने लगा, साथ ही मेरी उंगलियां भी हारमोनियम पे चलने लगी और साथ साथ गाना शुरू कर दिया। कब से तो ये इस तरह से चालू हुआ, और साथ ही सब लोगों ने जब सराहना शुरू किया तब लगा कि हाँ मैं गा सकता हूँ। फिर धीरे धीरे उसको मैंने आगे बढ़ाया, पापा के साथ साथ रियाज किया। वो भी स्कूल से मैं भी आने के बाद पापा ही बैंक से आते थे, तो थोड़ा बहुत उनके संग बैठ के गाते थे, वो अप्रिशिएट करते थे, सुनते थे। तो बस इस तरह से धीरे धीरे अपने आप ही वो जुड़ता चला गया।
1: वास्तव में आप बहुत लकी है, भाग्यशाली है कि आपको ऐसे पिता मिले हैं जो खुद संगीत प्रेमी है, वही आपके एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। तो कुछ उन्होंने शुरू में आपको गाइड किया?
2: जी बिल्कुल, ये फैक्ट है, उनका संगीत प्रेम मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब वो हर जगह जैसे एज ब्रांच मैनेजर रहते हुए भी वो कल्चरल प्रोग्राम रेगुलर करवाते थे अपने बैंक की तरफ से, और खुद जिसमें खुद भी परफॉर्म करते थे, साथ ही एक पूरी टीम वो साथ में लेके चलते थे, जो हर जगह प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे पापा। तो जयपुर में भी उस समय रविंद्र मंच पर रेगुलर उनकी परफॉर्मेंस होती थी, देते रहते थे, और आज भी उनका मार्गदर्शन ही है कि वो 87 इयर्स की एज में आज भी हमें सुनते हैं, और जहाँ करेक्शन होता है वो बताते हैं। तो मतलब संगीत का एक तरह से शौक उन्हीं के जरिए आया, कुछ शायद भगवान ने गले में वरदान दिया था कि मैं भी गाता रहा, उनको अच्छा लगता था तो थोड़ा सा और आगे अपने आप करने का मौका मिल गया। पापा अभी भी करते हैं करेक्शन काफी जगह।
1: ये बड़ी बात है क्योंकि आपके पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं और बैंक का जो जॉब है वो काफी टफ है, इतना इजी नहीं है, उसके बावजूद वो संगीत के प्रति उनका प्रेम बना रहा हो और आपको भी गाइड करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
2: जी बिल्कुल।
1: तो मैं सोचता हूँ राजीव जी, ऐसा करते हैं कि पिताजी ने जो आपको इतना प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया है, तो कुछ उनकी एक तरह से उनको हम यहाँ अपने कार्यक्रम में आपके सुरों के माध्यम से शामिल कर लेते हैं। कोई अच्छा सा गीत आप पिताजी के लिए सुनाए हमें, जो भी उनको पसंद हो वो सुनाए, एनीथिंग।
2: हाँ बिल्कुल, मैं उनकी पसंद का है गीत मना डे साहब को, वो बहुत पसंद करते थे, और तो उसी उन्हीं का एक गाया हुआ गीत मैं दो लाइन आप लोगों को सुनाता हूँ।

जैसे एक जुग बीता जुग बीते मोहिनी ना।

सुंदर राजू जी, मजा आ गया। आपने तो जैसे संगीत सरिता बहादी हो, जो कि क्लासिकल संगीत से किसी चीज की अगर शुरुआत हो जाती है तो वो बहुत ही मजा आ जाता है। बहुत सुंदर। और आपके पिताजी को भी प्रणाम करते हैं कि उन्होंने आपको इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, इतनी अच्छी शिक्षा दी, जिससे आप इतना बढ़िया पेशकश आपने दी, हमारे को मजा आ गया। राजू जी, चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके संगीत के सफर में। अब मुझे बताइए।

0: ये मेरी खुश नसीबी है कि मैंने जो कुछ सीखा घर पर ही रेगुलर रियाज और पापा से सीखा है। सबसे बड़ी सीख की बात करें तो एक ही बात है कि जो कि मैं संगीत प्रेमियों से भी कहना चाहूंगा कि गायकी के लिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली जरूरत होती है पेशेंस यानी धैर्य। वो ऐसे कि आप जो कुछ भी गाना चाह रहे हैं उसको धैर्य से 2-3 बार सुने, गाने का फील और उसके वेरिएशंस को ध्यान में रखते हुए रियाज करें, और हो सके तो अपने गाने को रियाज के टाइम रिकॉर्ड करें और रिकॉर्डिंग के ध्यान से सुनते हुए आप उसको समझें और गाएं। तो ये पापा ने शुरू से सिखाया कि पहले आप उसको अच्छे से सुनो, गाने को अच्छे से सुनो, उसको उसकी जो मूड है उसका वेरिएशन फील है उसका गाने का वो आप समझो। तो ये सीख है जो आगे लेके चल रहे हैं, और मेरा अभी भी ये रहता है कि पहले मैं उसको सुनता हूँ और अपने रियाज के टाइम पे उसको एक बार रिकॉर्ड जरूर करता हूँ और उसको ध्यान से सुनता हूँ।
1: हाँ, बताइए बताइए, कुछ कह रहे थे आप।
0: हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी कुछ सीखा है पापा से ही सीखा है और आज भी उन्हीं से सीखते आ रहे हैं, क्योंकि ये एंडलेस है, अभी भी उनसे ही मतलब सीखने को मिल रहा है।
1: अच्छा, तो फिर जब आपने रियाज की चर्चा कर ली है, तो आपका रियाज का रूटीन किस तरह से रहता है? कब आप रियाज करते हैं, क्योंकि आप जॉब में भी जाते हैं? कैसे आपने अपना रूटीन सेट किया हुआ है रियाज के लिए?
0: सर, 1 या 2 सॉन्ग मैं जरूर गाता हूँ डेली, उसका रियाज जरूर करता हूँ शाम को ऑफिस से घर आकर। अच्छा, टाइम शाम को ही मिलता है, मॉर्निंग में तो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो शाम को ऑफिस से घर आकर जो रूटीन का काम है जैसे पूजा वगैरह करना वो सब करने के बाद शाम को 7:30-8 बजे करीब पापा के साथ बैठते हैं, जहाँ पर बेटिया होती है, मैं होता हूँ, पापा होते हैं, और उसमें फिर हम लोग सिंगिंग पापा के सामने गाते हैं। रेगुलर जो भी है रियाज होता है साथ में मिलकर करते हैं, पापा सुनते हैं, एडवाइस देते हैं, बस 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस भी हो जाती है और थोड़ा टाइम पास भी होता है और गाना भी हो जाते हैं रिकॉर्ड।
1: मजा आ गया यार आपका ये रूटीन सुन के, और आप पापा के सानिध्य में उनके आशीर्वाद कैसे बढ़ाते हैं। आपकी बेटी भी गाना गाती है, इसका मतलब?
0: हाँ जी, बिटिया बिटिया ही गाती है वो, तो उसने तो प्रॉपरली सीखा है, उसको हमने शुरुआत से सिखाया है यहाँ पर और अच्छे स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह दे रही है वो। अक्षा
1: क्या नाम है आपकी बेटी का? अक्षा
0: श्रीवास्तव।
1: शुक्र, बहुत बढ़िया। तो चलिए थोड़ा सा ये बताइए कि जब पहली बार आपने मंच पर गाया था, उस टाइम कैसी फीलिंग थी? कोई क्या सेंसेशन था? कुछ घबराहट थी, एंग्जाइटी थी? क्या था जब फर्स्ट टाइम आपने मंच पर गाया?
0: सर, मेरी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस वहां जो मुझे याद है, जब मैं शायद 2nd या 3rd में था,
1: ओहो,
0: तब मैंने एक स्कूल के फंक्शन में, क्योंकि स्कूल में हम लोग बहुत शुरू से गाते थे और प्रेयर तो रेगुलर हम लोग ही कराते हैं, मुझे मेरे अभी भी ध्यान है, मैंने जब तक स्कूलिंग की है मेरी प्रेयर हम स्टेज पे गाते थे और सामने सारे जो बच्चे होते थे, तो स्कूल के फंक्शन में ही मैंने पहली बार हारमोनियम प्ले करते हुए, मुझे सॉन्ग भी जाना है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, गाया था खुद ही, हारमोनियम प्ले किया था खुद ही माइक पे उस समय। तो घबराहट का तो पता नहीं सर, बट उत्साह तो आज भी जब वो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देख वो पिक देखता हूँ मेरे पास जो है तो बहुत अच्छा लगता है, और ताज्जुब भी होता है कि कितने छोटे छोटे थे और हारमोनियम लेकर सॉन्ग गा रहे हैं, सब लोग देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है, वो उत्साह अभी भी वैसा वैसा ही है।
1: ये तो बहुत ही है। इसका मतलब आप स्कूल में भी बड़े पॉपुलर रहे होंगे, क्योंकि प्रेयर में जो बच्चे गाते हैं उनको कभी सभी जानते हैं स्कूल के अंदर। तो चलिए, पुराने दिनों की इसी याद पे कोई एक अच्छा सा पुराना गाना, या जो भी गीत आपको पसंद हो, सुनाइए, फिर आगे इस बातचीत को जारी रखते हैं।
0: मैं मोहम्मद रफी साहब का दीवाना कह के आज मुझे
1: जी,
0: इसको
1: स्वागत
0: सुनाता हूँ,
1: स्वागत।
0: और मैं शुरुआत करता हूँ इसकी अंतरे से ही।

सवारी है किसी गरीब की किस्मत सवारी है।

0: बहुत सुंदर, कागज की कश्ती, बारिश का पानी, बहुत बढ़िया लग। तो राजीव जी फिर बात करते हैं ये वीणा माँ म्यूजिक के बारे में। इसके आप सह निर्देशक हैं, आपकी माताजी के नाम पे बना हुआ संस्था शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताइए, क्या सोच थी इसके पीछे और इसमें आपने कोई कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें।
1: वीणा माँ म्यूजिक ग्रुप की शुरुआत हमने विधिवत 26 जनवरी 2025 को की थी।
0: अच्छा।
1: जिसमें मेरे साथ मेरे छोटे ब्रदर रितेश श्रीवास्तव और उनकी वाइफ प्रशंसा श्रीवास्तव भी फाउंडर और डायरेक्टर हैं।
0: अच्छा।
1: तो ग्रुप की शुरुआत करने के पीछे जो सबसे पहले एक ही एम था, लव और पैशन म्यूजिक के लिए, जो कि हम लोगों का सबसे पहला, साथ ही हमारे संग म्यूजिक से जुड़े लोग

0: एक मंच प्रोवाइड करना जहाँ वो अपना पैशन परफॉर्मेंस के जरिए लोगों के सामने ला सकें और अपनी दिनचर्या के साथ एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट का मजा ले सकें। तो ये सोच के हम लोगों ने ग्रुप की शुरुआत की थी 26 जनवरी 2025 को, और उसमें फिर अभी तक हम लोग 3 सफल आयोजन उसमें कर चुके हैं। एक शाम माँ के नाम, जो कि हम लोग मदर्स डे को ही डेडिकेट करते हुए, क्योंकि मम्मी के नाम से बनाया था ग्रुप की है, जिसमें हर प्रोग्राम में लगभग 35 सिंगर्स ने अपना गायकी के जलवे बिखेरे और खूब ऑडियंस की तालियां बटोरी। कोई यादगार आयोजन, सारे यादगार थे। मेरे अकॉर्डिंग मेरी जो परफॉर्मेंस थी मेरी बिटिया के साथ, जिसमें स्पेशली हमने पापा की एक फेवरेट मूवी है नदिया के पार, उसका सॉन्ग उनके सामने परफॉर्म किया था। तो उस समय जो फीलिंग थी हम लोगों को परफॉर्म करते समय मेरा और बिटिया को, वो बहुत अलग थी। वो सामने बैठे हुए हमें सुन रहे थे और खुश हो रहे थे। वो पल बहुत अच्छा था, क्योंकि परफॉर्मेंस तो बहुत सारी देते ही रहता, बट सुनने वालों में उस समय पापा थे जो अपने बेटे और पोती को उनका पसंदीदा सॉन्ग गाते हुए देखकर खुश हो रहे थे। तो वो एक बहुत अलग एक एक्सपीरियंस था। तो हम लोग 3 हम लोगों ने सफल अपने इसमें प्रोग्राम किए हैं, तीनों मदर डे जो हमने डेडिकेट करा था। एक 26 जनवरी को तो हम लोगों ने लॉन्चिंग की थी, 10 मई 2025 को पहला प्रोग्राम करा, उसके बाद 2 नवंबर को हमने दूसरा प्रोग्राम करा 25 मई, और अभी रिसेंटली मई 26 में एक प्रोग्राम अभी दूसरा किया। काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला,
1: बहुत ही सुंदर। मतलब ये तो एक अद्भुत, आप अपनी बेटी के साथ परफॉर्म कर रहे

0: बहुत सुंदर। तो आपने तो एक नया फ्लेवर भी आज के इस प्रोग्राम में ऐड कर दिया। इस तरह के गीत बहुत कम सुनने को मिलते हैं। नदिया के पार तो फिल्म भी कितनी शानदार थी, तो बहुत मजा आ गया। तो चलिए राजीव जी, अब ये बताइए कि म्यूजिक उत्साह भी बढ़ाता है, कभी जीवन में ऐसा कभी फेज आया है कि आप थोड़ा सा निराश हों और महसूस कर रहे हों, हताशा महसूस कर रहे हों, तो संगीत ने आपको किस तरह से संबल दिया है? कभी एज ए थेरेपी भी काम किया है म्यूजिक ने आपके लिए?
1: सर ऐसा हताशा और निराशा तो लाइफ का एक पार्ट है
0: जी,
1: बट अपार्ट फ्रॉम दिस संगीत अलग एहसास है।

0: तौर से थोड़ी बहुत असहमति पति पत्नी में, बच्चों में कभी कभी हो ही जाती है। कभी जब आप गुस्सा होते हैं तो बच्चे याद ही दिलाते, पत्नी याद ही दिलाती थी, अरे अरे वो गाना सुनाओ ना, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करते लोग।
1: मैं खुद ही गाने चलाता हूँ और बाकी बिटिया तो खैर सपोर्ट करती है पूरा,
0: सही है।
1: तो बल्कि वो तो खुद आके साथ में कि चलो डैडी ये ड्यूट करते हैं,
0: अरे
1: तो
0: वाह, आप बहुत
1: फिर
0: लकी है, लकी है, मजा आ जाता। तो आप ऐसा करते हैं कि कुछ जयपुर के म्यूजिकल सीन के बारे में बात करते हैं, आप तो काफी जुड़े हुए हैं। जयपुर में जो इतने सारे कराओके के मंच बन गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, सोशल मीडिया भी आ गया है, विभिन्न मंचों पर प्रोग्राम भी होते रहते हैं, तो अब क्या लग रहा है कि जो नए प्रतिभाएं उभर के आ रही है उनको अवसर मिल रहे हैं, या इनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है? कभी भी मुझे ये भी लगता है, आप क्या सोचते हो, आप क्योंकि अंदर हो उसके, हम बाहर से देखते हैं सब कुछ।
1: हाँ जी बिल्कुल, कंपटीशन तो ऑब्वियसली बढ़ा है क्योंकि सोशल मीडिया ने काफी लोगों को सामने आने का मौका दिया है, और युवा गायक तो हमेशा से प्रेरणा स्रोत हैं, हम भी सीखते हैं सर उनसे। इनफैक्ट आप छोटे बच्चों को सुने, क्या तैयारी के साथ आते हैं, सीखने का जुनून है, और पेरेंट्स भी उनको मोटिवेट करते हैं। निश्चित रूप से हमें बेहतरीन गायकी युवाओं से सुनने को ही मिलती है और आगे ही मिलती रहेगी। तो ये अच्छी बात है कि आज सोशल मीडिया ने और कई म्यूजिक से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, सभी को जो भी पैशनेट सिंगर्स हैं मौका दिया है बाहर आकर अपनी प्रतिभा दिखाने का। तो ऑब्वियसली प्रतिभा को अवसर मिला है, साथ ही कंपटीशन बढ़ा है क्योंकि एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और सीखे हुए आते हैं, जो कि अपने रेगुलर गुरुजनों से सीख रहे हैं। और हाँ, कैरियोके सिंगिंग थोड़ा सा एक उसमें हर तरह के सिंगर्स आते हैं क्योंकि वो अपना शौक ही पूरा कर रहे हैं सर, ये घर पे कैरियोके में गाया और ग्रुप के अंदर जुड़ के अपना एक शौक पूरा कर लिया आगे, तो वो तो अगर अलग चीज हो गई सर, लेकिन जो तैयारी के संग आता है सीखा हुआ उनको सुनने का आनंद अलग ही। ये आप भी महसूस करते होंगे जैसे प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं
0: नहीं,
1: तो
0: सही सही।
1: अलग ही।
0: मेरा तो खैर थोड़ा सा असेसमेंट ये है कि कुछ तो खैर ऑब्वियसली एवरेज सिंगर होते हैं जो ग्रुप से जुड़े होते हैं, उनको चांस देना होता है, लेकिन कुछ प्रतिभाएं तो बिल्कुल अद्भुत आती है, जिनका सुनने से ही पता लग जाता है कि ट्रेनिंग भी है, रियाज भी है और मेहनत भी है। तो कुछ प्रतिभाएं तो बहुत ही बढ़िया होती हैं, और वो कैसा भी गाना गाएं लेकिन मजा आ जाता है उनका सुनने में, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक इतना बड़ा मंच मिल गया है लोगों को, और मैं तो कई बार ये भी कहता हूं कि और किसी शौक की बजाय तो ये शौक सबसे अच्छा है,
1: जी,
0: और किसी तरह का कोई भी आप गलत शौक करो उसकी बजाय संगीत का शौक कर लो, तो बस आपका जीवन कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना सुरीला हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात। तो राजीव जी, अगर ये बताइए, आप इतने महान संगीतकार हैं, गायक सबको आप फॉलो भी करते हैं, उनको मानते भी हैं, अगर आप आज मंच साझा करने के लिए आपको कहा जाए कि किसी एक को चुनिए, तो किसको चुनेंगे आप?
1: सर वैसे तो मेरी पहली चॉइस होती जगजीत सिंह साहब, लेकिन अब वो क्योंकि नहीं है तो आज के भी सिंगर्स में मैं भी साझा करना चाहूंगा मंच, तो मुझे मोहम्मद अजीज साहब की सिंगिंग भी बहुत पसंद है। हाँ,
0: अच्छा,
1: वो उनकी गायकी का जो एक लेवल है, उनका जो पिच है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। उनके सॉन्ग कम गए हैं बट उन्होंने बहुत ही सुंदर, तो वो मुझे बहुत पसंद है, कभी उनके संग मौका मिला तो वो करना चाहूंगा।
0: तो चलिए, अब एक और हमें कोई अच्छा सा जिनका भी आपको पसंद हो उनका कोई एक गीत सुना दीजिए, फिर हम रैप अप करते हैं।
1: तो मैं मोहम्मद अजीज साहब की एक सॉन्ग की दो लाइनें सुनाता हूँ
0: जी
1: आपको।
0: जी जरूर।
1: उम्र भर साथ हम निभाएंगे,

0: हाँ सर अजीत जी, बहुत अच्छा लगा। तो अब बस मैं एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ या अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई युवा जो शौकिया गायक हो, उनके लिए आप कोई संदेश ब्रीफ में देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहिए।
1: सर एक ही बात कहना चाहूंगा कि संगीत पूजा है, और आप जैसे नाम जप या पूजा कैसे करते हैं, आपका पूरा डिवोशन उसमें होना चाहिए, और पूजा करते समय वो होता भी है। ऐसे ही जब आप संगीत में जाएं तो उसको पूरे डिवोशन से सुने, समझें और फिर परफॉर्म करें, क्योंकि ये एक मजाक नहीं है। यदि आप इसको एक वो आराधना मानते हैं, जैसे कहते हैं संगीत आराधना है, तो उसको भाव उसका आना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और सुने श्रोताओं को उसमें आनंद आएगा। तो बस करें, पूरी तैयारी के संग करें, उसको मजाक में लेके नहीं करें, एक डिवोशन से करें।
0: बहुत बढ़िया। तो राजीव जी, आपने अपने अनुभवों, संघर्षों, प्रेरणाओं और मधुर संगीत यात्रा को जिस आत्मीयता से हम सबके साथ साझा किया है, उसका आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमें विश्वास है आपकी बातें, आपके गीत हमारे श्रोताओं को संगीत से और भी गहराई से जुड़ने के लिए प्रेरणा देंगे। इसी शुभकामना के साथ हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने समय निकाला, इतनी अच्छी बातें की और इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए हमें, एक हमारा दिन आज संगीतमय बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद। जय श्री राधे।
0: जय श्री राधे। और दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो SN, क्योंकि जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर किसी प्रेरणादायी शख्सियत के साथ मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं आलोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं अपना विशेष कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग लेकर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का रंग है रचनात्मकता या क्रिएटिविटी की बहुरंगी दुनिया का। आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जिनकी क्रिएटिविटी कई रंगों में झलकती है। वो एक गृहिणी है, लेकिन घर की चौखट से आगे निकलकर मंच, रेडियो और साहित्य की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुकी है। शाहजहांपुर की सांस्कृतिक धरती से आई श्रीमती सोनिका कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने अंधा युग जैसे गंभीर नाटक में कृष्ण की भूमिका निभाकर अपने अभिनय की गहराई दिखाई और अयोध्या पीड़ा घन जैसी पुस्तक के माध्यम से उन स्त्रियों का मौन दुख को शब्दों में पिरोया जो अयोध्या में रहकर राम के वनवास की पीड़ा झेलती रही। सोनिका जी एक लेखिका, अभिनेत्री, एंकर, संचालक और कवित्री सब कुछ है। तो आइए जानते हैं उनके इस बहुरंगी जीवन के कुछ प्रेरक अध्याय आज के शो में। सोनिका जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सुखद आमंत्रण के लिए।
0: तो चलिए शुरू करते हैं। सोनिका जी, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ आकर रेडियो के इस अनुभव के साथ जुड़ना।
1: रेडियो का अनुभव से जुड़ाव तो मेरा बहुत पुराना है। श्रोता के तौर पे कहूँ तो बचपन से सुनती आ रही हूँ मैं विविध भारती, और आर्टिस्ट के तौर पे कहूँ तो मुझे आज का दिन सन 92 का वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग याद दिला रहा है जब मैं पहली बार अपनी शॉर्ट स्टोरी लेके उदयपुर रेडियो स्टेशन गई थी और वहां पे मेरी ब्रॉडकास्ट हुई थी मेरी ही आवाज में, और फिर उसके बाद एक गीतों भरी कहानी भी मैंने वहां पे ब्रॉडकास्ट की थी। तो आज का दिन मुझे सालों पहले ले गया और वही स्टूडियो रिकॉर्डिंग मुझे याद आ रहा है जो अनुभव पहले दिन मेरा वहां रहा। उसके बाद 2017 में फिर मैं एक रेडियो चैनल से जुड़ी जहां पे मैं अपनी रचनाएं ब्रॉडकास्ट करती थी। तो इस तरह से मेरा जुड़ाव कहीं ना कहीं आज तक भी रेडियो से जुड़ा हुआ है।
0: वाह, इसका मतलब है कि रेडियो के साथ आपकी जितनी भी यादें हैं वो सब रिवाइव हो गई और जी, एक और नया उसमें अध्याय जुड़ गया। बहुत बिल्कुल। शाहजहांपुर साहित्यिक और ऐतिहासिक नगरी है, क्या इस नगरी का आपको अपने हुनर में कोई कंट्रीब्यूशन या योगदान महसूस होता है?
1: जी, योगदान तो पूरा पूरा है। वो कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन। तो ये शाहजहांपुर शहीदों की ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक रंगमंच की नगरी है। यहाँ से बहुत से कलाकार भी रंगमंच पे आए हैं। तो इस नगरी में अगर इस आबो हवा में आप रह रहे हैं और आपके अंदर कोई कला का छोटा सा भी बीज है तो वो निश्चय ही अंकुरित होगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे गुड़ी जनों के सराउंडिंग्स में रही, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मेरे हुनर में इस शाहजहांपुर की धरती का पूरा पूरा योगदान है।
0: बहुत खूब। तो शाहजहांपुर शहीदों की भी नगरी है और स्वतंत्रता सेनानियों की भी नगरी है, ये जान के बड़ा अच्छा लगा। आपको एक बात बताइए, एक गृहिणी से मंच कलाकार और लेखिका बनने का ये सफर कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, और ये जो पहली स्पार्क या चिंगारी जली, ये कैसे जली?
1: जी, लेखिका का तो मैं पहले स्कूल टाइम में भी लिखा करती थी, जैसे बताया मैंने रेडियो पे ब्रॉडकास्ट हुआ और स्कूल मैगजीन्स में मेरी रचना निकलती थी। उस समय इतना इजीली अवेलेबल नहीं था मीडिया, पर मंच कलाकार के तौर पे मैं सबसे पहली बार तब उतरी जब हमारी यूनिट हेड उस समय थी श्रीमती सुमन चोपड़ा जी, उन्होंने ये निश्चय किया कि इस बार रामलीला महिलाएं करेंगी, यानी पुरुषों का किरदार भी महिलाएं ही निभाएंगी। तो उस दौरान हमारा भी चुनाव हुआ, क्योंकि हमें अभिनय आता नहीं था, पर उनके कहने पे, उनके प्रोत्साहन मिलने पे फिर मैंने भी नाम लिखाया और आज मैं आपके सामने हूँ।
0: तो चलिए फिर उसी बात को दोबारा याद किया। तो आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कौन सी थी, ये रामलीला वाली? तो उस दिन कैसा, जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गई थी तो कैसा अनुभव था, कैसा रहा?
1: स्टेज परफॉर्मेंस मेरा पहला वही था, रामलीला का मंचन जब हुआ था उसमें मुझे भरत की भूमिका दी गई थी, और चूंकि महिला रामलीला ये पहला अनुभव था हम सभी महिलाओं के लिए, तो हम सब 30 दिन की जो प्रैक्टिस चली है हम लोगों की, हम सब उस पूरे प्रैक्टिस के दौरान इतने असमंजस में थे कि पता नहीं हम कैसे लगेंगे कॉस्ट्यूम में, कहीं हास्यास्पद ना लगे, पता नहीं मेकअप कैसा होगा, तो हम सब असमंजस में थे फाइनल डे तक। पर जिस दिन जो फाइनल डे हमारा कॉस्ट्यूम और मेकअप हुआ, उसमें जब हमने अपने आप को आईने में देखा तो हमारा कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे था। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि

0: निकल रहे थे तो सारे दर्शकों ने खड़े होके जो तालियां बजाई हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस चरम पे था। और फिर हम सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई और निश्चय ही अच्छी होनी थी जब इतनी तारीफें पहले ही चरण में हमें मिल गई। तो मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा स्टेज परफॉर्मेंस का।
1: वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा। आपकी दर्शक दीर्घा से एंट्री हुई स्टेज पे, ये तो एक अपने आप में यूनिक सी बात है
0: जी, सभी
1: और
0: कलाकारों की उनकी पूरी टीम थी।
1: मजा आ गया होगा आपको। चलिए,
0: जी
1: और परिवार और समाज दोनों भूमिकाओं को निभाते हुए कला के समय और प्रेरणा कैसे ले पाती है? आपको इतना समय मिल जाता है ये दोनों काम करने के लिए, कैसे मैनेज करती है इसको?
0: जी देखिए, प्रेरणा तो हम खुद ही होते हैं। जैसे कोई स्त्री है, आम स्त्री है, हम लोग आम महिला है, चाहे वर्किंग है चाहे गृहिणी है, अगर हमें अपने शौक को जीना है तो उसके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। और गृहिणियों के साथ ये प्लस पॉइंट है कि हम इधर उधर से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। वर्किंग लेडीज के साथ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर हाँ, अगर हमारे रामलीला में बहुत सारी वर्किंग लेडीज भी थी जिन्होंने काम किया पर उन्होंने टाइम मैनेज किया, तो प्रेरणा हम खुद ही हैं अपने कला को आगे बढ़ाने के लिए।
1: चलिए, महिलाओं की इस जीवनी शक्ति और इस सामंजस्य के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं यहाँ।
0: बिल्कुल।

0: सोनिका जी, आपने धर्मवीर भारती के अंधा युग में कृष्ण की भूमिका निभाई, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण किरदार है। इस भूमिका को निभाने का अनुभव कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: वो भूमिका वाकई मेरे लिए बहुत अहम थी, क्योंकि वो एक ईश्वरी रूप, ईश्वर की एक्टिंग मुझे करनी थी। अब जब आप ईश्वर की अभिनय कर रहे हैं,

0: है तो उसमें संवेदनाएं आपको नहीं दिखानी है। ईश्वर एकदम तटस्थ होता है, एकदम एक कहें कूल होता है, कूल होते हैं कि मतलब उन्हें संवेदनाएं नहीं दिखानी है। पर ये जो धर्मवीर भारती जी का जो प्ले है अंधा युग, इसमें गांधारी का विलाप जब होता है उस समय मुझे लगता है कि कैसे ईश्वर ने अपने आप को रोका होगा। इतना करुण विलाप था कि मतलब आंखों से आंसू आ जाते थे उसको, मतलब उनको सुनते समय। तो कैसे हम गांधारी माँ को वो करेंगे, ढांढस बंधाएंगे? तो इसका अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा।
1: नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इमोशंस नहीं दिखाने, अपनी भावनाएं नहीं दिखानी, तटस्थता के साथ अपने डायलॉग बोलना, वो
0: जी
1: भी ऐसे चुनौतीपूर्ण नाटक में बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: एक एक शब्द में इतना वजन है भारती जी के, उसे आप जब भी आप बोलेंगे उसका अभिनय करेंगे तो एकदम आपके अंदर ना शक्ति संचार का अनुभव होता है। बहुत ही अलौकिक अनुभव था वो कृष्ण, श्री कृष्ण की भूमिका अदा करने का।
1: निश्चित रूप से उन दिनों तो आपकी कुछ जीवनचर्या भी बदल गई होगी, क्योंकि आप उसी किरदार को जीती होंगी, कृष्ण के
0: जी
1: किरदार को जीती
0: बिल्कुल,
1: होंगी। तो इस नाटक में कृष्ण को आपने किस नजरिए से देखा? एक देवता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो युद्ध और विनाश के बीच में खड़ा हुआ है।
0: जी मेरे को, मेरे नजरिए में तो मैंने दोनों को देखा कृष्ण में। जब वो सभासदों को समझाने जाते हैं तो मुझे उनका वो मानवीय रूप दिखता है कि वो कहते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए, इस तरह आप करिए। और प्ले का जो पहला सीन है जिसमें विश्वव्यापी रूप दिखाया है वो ईश्वरीय रूप है, और प्ले का आखिरी जो गांधारी विलाप का जो सीन है उसमें ईश्वरीय रूप है, क्योंकि कोई ईश्वर ही हो सकता है, वो नहीं पिघल पाएगा। किस तरह गांधारी का करुण क्रंदन था उस सीन में, और उसके बाद भी श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे थे कि माता मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, परेशान मत हो, तुमने पुत्रों को खोया। तो वो ईश्वरीय रूप वाकई में, ईश्वर होना अपने आप में बहुत मुश्किल है। उस किरदार को निभा के मेरे को सिर्फ यही लाइन आई।
1: सही बात है, सही बात है। दुनिया में जितना कुछ हो रहा है, एक ईश्वर ही तटस्थ नजरिए से उसको ठीक ठाक कर रहा है। बहुत बहुत मुश्किल है। अगर हम आप आज वैसे भी सोचें कि
0: जी
1: ईश्वर होना कितना मुश्किल है, अच्छा
0: बहुत
1: इंसान
0: मुश्किल,
1: होना ही मुश्किल है, तो ईश्वर होना तो कितना मुश्किल होगा।
0: असंभव
1: सही बात है, सही बात है। चलिए आगे चलते हैं। महिला रामलीला में भरत और मंदोदरी जैसे चरित्र निभाना भी अलग अनुभव रहा होगा। क्या महिला कलाकारों के लिए ऐसे मंचों पर खुद को अभिव्यक्त करना आसान होता है? कैसा लगता है आपको?
0: है। नहीं, महिलाओं के लिए नहीं आसान है, क्योंकि महिलाओं की दोहरी जिम्मेवारी होती है, उन्हें घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। और जब आप प्ले करते हो तो उसमें तीन तीन चार चार घंटे हमें वर्कशॉप में देना पड़ता है। घर आके भी हम लोग ईयरफोन लगा के अपना काम करते हैं, और साथ में वो डायलॉग याद करते हैं, क्योंकि लिप सिंक होता है वहां स्टेज पे। लिप
1: ओहो,
0: सिंक में
1: अच्छा।
0: क्या है कि अगर 1 सेकंड का पॉज है तो आपको वहां रुकना है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी करना है। तो हम लोग 3 4 घंटे वहां वर्कशॉप में सीखते थे, और फिर घर आके भी पूरा प्रैक्टिस हमारा चलता ही रहता था। तो बहुत मुश्किल है, और इसमें परिवार का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है। जितनी महिलाएं हैं उनके परिवार ने साथ दिया तभी वो आज मंच पे दिखी, अदरवाइज नहीं दिख सकती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 4 से 5 घंटा दैनिक दिनचर्या में से निकालना।
1: नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इस महिलाओं के टाइम मैनेजमेंट और ये सब के नाम पे हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक गाना सुनते हैं यहाँ।
0: बिल्कुल।

0: सोनिका जी, आपकी पुस्तकों जैसे अयोध्या पीड़ा घन, परिवर्तन, मातृत्व और दीपोत्सव में गहरे भाव हैं। इन रचनाओं के पीछे मुख्य प्रेरणा क्या रही होगी, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: मेरी कोई भी रचना हो, बुक हो, उनकी प्रेरणा मुख्यतया स्त्री और मौन ही होता है। मुझे लगता है स्त्री और मौन एक दूसरे के पर्याय हैं। मौन विषम परिस्थितियों में जूझने का या अपनी बात को कहने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और इस मौन में कहने को शब्द नहीं होते, पर अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें अथाह शब्द ही शब्द हैं। क्योंकि जब वेदना एकदम चरम पे होती है तो वो अपना अपने शब्द खो देती है। तो इस मौन में से ही शब्द निकालना और उन्हें लिखने की मैं कोशिश करती हूँ, बस यही मेरी प्रेरणा है मौन।
0: भाई ये बात सुन के तो आपकी बहुत मजा आया मुझे। मौन, मौन भी एक एक तरह की भाषा है, लेकिन नारी मौन रह के भी बहुत बात कह जाती है। और नारियां कैसी भी विषम परिस्थितियां हो उसमें मौन धारण कर लेती हैं। आदमी तो फिर भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन नारी जो है हमेशा मौन रहती है कितनी भी विषम परिस्थितियों। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के।
1: बहुत ही शालीन व्यवहार और प्रभावी भाषा है मौन।
0: बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए, अयोध्या पीड़ा घन में आपने उन महिलाओं के मन की बात कही है जो राम के वनवास के बाद अयोध्या में रह गई। क्या यह दृष्टिकोण एक लेखिका के रूप में आपके भीतर से आया या एक स्त्री के अनुभव से आया, कुछ इसके बारे में बताइए।
1: नहीं, ये विषय मेरे मन में काफी बरसों से था और लेखिका के रूप में ही आया, पर इस विषय को मैंने लिखा और स्त्री होने का

0: फायदा मैंने बहुत उठाया क्योंकि इन पात्रों को मैंने बहुत करीबी से जिया और फिर उनकी अनुभूति को मैंने लिखा, तो ये स्त्री होने का फायदा मैंने लिया इस विषय पे।
1: अब कैकई, कौशल्या, उर्मिला, इन पात्रों में से किसके दर्द या मौन ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? कुछ कभी सोचा है इस विषय में आपने? बताइए।
0: केकई, कौशल्या और उर्मिला जी, इन तीनों की पीड़ा को हम किसी से किसी की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि केकई माता की पीड़ा बिल्कुल अलग थी। दो लाइन से मैं बताऊंगी कि जब भरत को पता चलता है ननिहाल से आके कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता ने ऐसे ऐसे वरदान मांगा है, तो वो बहुत भला बुरा कहते हैं माता को। तो उस वक्त केकई सोचती है, पुत्र तीक्ष्ण स्वर बाणों से केकई हुई कण कण, पुत्र तीक्ष्ण स्वर बाणों से केकई हुई कण कण, खुद को खोजे या पुत्र को, खुद को खोजे या पुत्र को, सोच रही क्षण क्षण। देखिए कितनी पीड़ादायक बात है कि एक माँ ये सोच रही, क्या ये मेरा ही बेटा है जिसके लिए मैंने राजपाट मांगा है, और ये तो इतना संन्यासी है, मैंने अपना जन्मा बेटा नहीं समझा, उसे मैं जान ही नहीं पाई, ये अलग पीड़ा है। कौशल्या माँ जिनके महल में इतना गहमा गहमी रौनक थी, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी और केकई माता के वरदान मांगने पे एकदम सुनसान हो गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, राम लक्ष्मण सीता चले गए, उनपे क्या बीती होगी कि जब सारा महल ऐसे वीरान हो गया तो वो क्या सोचती होंगी। तो चार लाइन में मैं बताती हूँ, इस किताब के शुरुआत में मैंने ये कौशल्या अश्रुघन एक कविता लिखी थी सबसे पहले इस विषय पे, तो उसकी चार लाइनें हैं कौशल्या जी पे। सब धूमिल दिख रहा है, कौन सी ये धुंध है, विरह वेदना के जाप से मुस्कान हुई कुंद है, मलिन उदासी ढा गई चौखट द्वारों पर कहर, अश्रु जल से व्रत तोड़ती रानियां हर प्रहर। ये कौशल्या माँ की पीड़ा थी कि उनकी नव व्याताएं बहुएं किस तरह से अश्रु जल से व्रत तोड़ रही थी, यानी आंसुओं से भीगे हुए थे, तो बहुत मुश्किल समय था उन स्त्रियों के लिए भी।
1: बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया, और ये जो आपने कविता के रूप में जो कुछ पंक्तियां सुनाई, इनको सुन के तो बहुत ही एक दूसरा सा भाव पैदा हो गए मन में। बहुत सुंदर कैकई, कौशल्या और मिला, इन पात्रों ने जो कुछ सहा होगा हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने इन पात्रों पर पुस्तक लिखी और इन पात्रों की संवेदनाओं को लिखने का आपका मतलब ध्येय क्या था? कैसे आपने सोचा कि मैं इन पे पुस्तक लिखूं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे पात्र हैं जो हमेशा से जनमानस के जहन में रहे हैं, उन पे कुछ लिखना भी एक बड़ी हिम्मत का काम।
0: जी, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने इस विषय पे कौशल्या अश्रुघन कविता लिखी थी जिसकी अभी मैंने लाइन सुनाई, उसके बाद मुझे संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद मुझे लगा इस पे मैं और लिख सकती हूँ, तो फिर कुछ महीने मैंने इस पे थोड़ा सा स्टडी भी किया, थोड़ा सोचा विचारी की, और फिर उसके बाद मैंने पिछले साल ये पूरक पुस्तक लिखी, और इन पात्रों को समाज में लाने का ध्येय ही मेरा ये है कि आज के समाज में ये सारे जो गुण हैं, जो इन मांडवी उर्मिला जी में जो सहनशीलता का गुण देखने को मिलता है, भाई भाई के प्रेम का जो गुण देखने को मिलता है, सास बहू जो कौशल्या माता और मांडवी ने किस तरह से अपने हक को कौशल्या माँ को समझाया और उनसे विनती की कि भाई आप मेरे को ये करना है भरत जी के लिए, तो किस तरह से, तो ये मेरा ध्येय था कि इन सारे किरदारों को समाज के सामने लाऊं, और जिस तरह से हम रामायण के और पात्रों की बात करते हैं तो ये भी हमारे बातचीत का हिस्सा बने, क्योंकि इन्होंने भी वनवास सहा था, तो बहुत ही कम हम इन लोगों के बारे में जानते हैं और इन पात्रों के बारे में बात ही बहुत कम होती। कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, केकई माता को तो बड़े ही हे दृष्टि से हम देखते हैं, भाई उन्होंने काम ऐसे किया पर विधान ने उनको ये कार्य सौंपा था, पर जब मंथरा का माया जाल हटा होगा तब केकई माता के ऊपर क्या बीती होगी, किसी ने ये नहीं जाना होगा, ये सब इस पुस्तक में आपको मिलेगा कि तब उन्हें कितनी ग्लानी का वो एहसास हुआ होगा कि ये मैंने क्या कर डाला। तो मेरा सिर्फ ध्येय ये था कि इन पात्रों को मैं समाज के सामने लाऊं।
1: बहुत सुंदर, तो हम यहाँ एक गाने के लिए रुक जाते हैं, गाने का आनंद लेते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: आप सोनिका जी आगे चलते हैं। आपने रेडियो पर नवरात्रि की 9 देवियों का सुंदर व्याख्यान किया। रेडियो को एक माध्यम के रूप से आप कैसे देखती है?
1: रेडियो को मैं आज के समय में एक स्ट्रेस बस्टर के रूप में देखती हूँ और बहुत ही अच्छा माध्यम है ये कि हम चाहे राइटिंग कर रहे हो, किचन में काम कर रहे हो और खास तौर पे ड्राइविंग, ड्राइविंग में तो बहुत ही आनंद आता है जब हमारे ये FM चल रहा होता है तो उसमें नटखट बातें, चटपटी बातें और गाने जब सुनते हैं RJs के तो वाकई में मजा आ जाता है। तो बहुत अच्छा स्ट्रेस बस्टर है रेडियो।
0: बिल्कुल सही कह रही है आप। मैं जब बॉम्बे में पोस्टेड था तो वहां मुझे पता लगा था रेडियो की ये क्या यूटिलिटी है
1: जी,
0: क्योंकि बॉम्बे में बड़े लंबे ट्रैफिक जैम्स भी होते थे और बड़ा लंबा सफर भी होता था, दो दो ढाई ढाई घंटे सड़क पे चलना पड़ता था। तो वहां पता लगा कि रेडियो और ये जो FM चैनल्स हैं ये कितनी इनकी यूटिलिटी है, कितना ये आपका साथ देते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में आपकी भागीदारी और संचालन दोनों रहे, कविता का आपके जीवन में क्या स्थान है, क्या महत्व है, कुछ इसके बारे में बताएंगी?
1: सरलता से विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी समझती हूँ मैं कविता को। उसका रूप कोई भी हो, शायरी भी हो सकता है, छंद भी हो सकता है, कम शब्दों में अधिक अर्थ बताती है। और जब अगर हम प्रतिभागी हों किसी कार्यक्रम में या संचालक हों तो प्रस्तुति को बहुत ही प्रभावी बना देती है, एकदम अलंकृत कर देती है। जिस तरह से हम अपना ज्वेलरी से और मेकअप से खुद को आकर्षक बनाते हैं, उसी तरह से अपनी प्रस्तुति को हम कविता छंद से प्रभावी बना देते हैं। तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मेरे लिए।
0: ये बात आपकी मुझे बड़ी बड़ी बड़ी प्रभावी लगी कि जिस तरह से हम अपने आप को ज्वेलरी से या जेवरातों से अलंकृत करते हैं, उसकी बजाय अगर कोई कविता बोल दे तो उसका स्थान या उसकी महत्ता एकदम बढ़ जाती है। वाह क्या बात कही है आपने।
1: धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया बात कही है। मतलब महिलाएं, एक कोई महिला अगर एक कविता की लाइन सुना दे उससे लोग बाग ज्यादा उसकी तरफ उसको देखेंगे, उसकी पहचान को पहचानेंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ अट्रैक्ट होंगे।
1: साहित्य का सबसे बड़ा प्रभाव ही ये होता है, जहाँ साहित्य की दो, एक अच्छे साहित्य की दो तीन लाइनें भी आपने पढ़ दी तो वो आप लोगों के मन पे कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाते हो लंबे समय तक।
0: मैं देखा ना गोष्ठियों में या इवन पार्टियों में जो कोई गाना गा देता है या शेर व शायरी सुना देता है या कविता अच्छी सुना देता है उसकी एक अलग जगह बन जाती है। और बाकी लोग तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहन के आते ही है। ये बिल्कुल सही बात है, मजा आ गया आपकी इस बात में मेरे को। बहुत बढ़िया बात, बड़ी ओरिजिनल सी बात है राधा। चलिए, आपके लेख समाज और मनोविज्ञान पर केंद्रित होते हैं, आज के समय में संवेदना और समाज को जोड़ने की आवश्यकता आप क्यों महसूस करती है और कैसे महसूस करती है, बताएंगे इसके बारे में?
1: देखिए, संवेदना समाज की कुरीतियों से लड़ने और एक दूसरे की समस्या को समझने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर मेरे में इमोशन नहीं है तो मैं सामने वाले की समस्या नहीं समझूंगी, और जब मैं सामने वाले की समस्या नहीं समझूंगी तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। और आजकल यही हो रहा है, आजकल युवाओं में ना तो समय है, समय की कमी है, भाग दौड़ की जिंदगी है, इसीलिए संवेदनाओं की कमी हो रही है ना। और आदर्शों और मूल्यों के प्रति व्यक्ति को संवेदना ही संवेदनशील बनाती है, और इसका सबसे अच्छा माध्यम साहित्य है जिससे हम समाज को संवेदनशील बना सकते हैं। और मेरी हर कोशिश ये रहती है कि अपने लेखों में जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखूं, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच रख के अगर हम कुछ लेख या कोई भी रचना करते हैं तो वो निश्चय ही मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती है। और जैसा कि आपको मालूम है, तलवार से भी ज्यादा प्रभावी कलम है, बड़े बड़े आंदोलनों में बहुत सहायक रही है कलम। तो हम सबको इस दिशा में हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह का समाज को संवेदनशील बनाए रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं इमोशंस और इस पे लिखती हूँ।
0: बहुत सुंदर। तो इसी इमोशन और संवेदनाओं के नाम पर हम यहाँ एक गाने का आनंद लेते हैं।

0: स्वनिका जी, कोई ऐसे नाम जिनकी वजह से आपकी कला को ये नए डायमेंशंस या नए आयाम मिले, आपको शेयर करना चाहेंगे? ऐसे लोग जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, कुछ उनके बारे में बताएंगी?
1: जी हाँ, अभिनय के क्षेत्र में तो मैं एक नाम बता ही चुकी हूँ, जो हमारे एमडी हैं मिसेस सुमन चोपड़ा मैम, उनकी वजह से तो मैं अभिनय में आई ही। पर प्रमोद प्रमिल जी, जो वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और शॉर्ट फिल्में भी यहाँ डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। सबसे पहले रामलीला उन्होंने ही डायरेक्ट की थी महिलाओं की, और उन्होंने मुझे ये किरदार दिया था, और उन्होंने ही सबसे ज्यादा मेहनत की थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जीरो थी अभिनय में, और जो उनका प्रोत्साहन रहा उसी वजह से मैंने किया। फिर अगले साल से फिर मैं अपने हर साल में इम्प्रूव करती रही। और दूसरा हमारे आलोक सक्सेना जी हैं, वो भी बहुत एक्सपीरियंस सर हैं हमारे। उन्होंने अंधा युग डायरेक्ट किया था, उन्होंने बहुत बारीकी से मुझे कृष्ण जी की भाव भंगिमा, चलना फिरना, हाथ उठाना, किस तरह से आपको सौम्यता भी लानी है और एक तटस्थता भी लानी है, ये सब उन्होंने सिखाया था। तो ये तीन नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया।
0: चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि छोटे शहरों में भी अब महिलाएं मंच पर, उनको अवसर पहले की तुलना में अधिक मिलने लगे हैं, मंच तक आने के लिए अच्छे मिल रहे हैं आपको, आ सकती हैं? बिल्कुल, लगता है आपको ऐसा?
1: हाँ बिल्कुल, अब आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना भी है, और वैसे भी आजकल महिलाओं को काफी मंच मिल रहे हैं। अगर आप अपने हुनर को दिन प्रतिदिन तराशते रहें तो निश्चय ही आपको अच्छे मंच मिलते हैं।
0: सही बात है। तो या फिर हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं और एक
1: जी
0: गाने का आनंद लेते हैं।

0: सोनिका जी, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, मुंशी प्रेमचंद्र काव्य सम्मान और एबीकेएस अचीवर्स अवार्ड 2025 जैसी उपलब्धियां, इनमें से कौन सा सम्मान आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है? और अगर करीब है तो क्यों? ऐसी क्या खास बात उस सम्मान में है?
1: देखिए, वैसे तो हर माँ को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, पर अगर मैं ऐसे सोचूं तो मुझे लगता है एबीकेएस अचीवर्स अवार्ड मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा खास होगा, क्योंकि जब आपके अपने आपकी कला को पब्लिकली अवार्ड देते हैं, पब्लिकली उसको पहचान दिलाते हैं, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आपकी कम्युनिटी ने आपको सराहा है, और ये सराहना बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे लिए। तो मेरे लिए ये अवार्ड थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
0: तो इन सम्मानों के बाद आपकी जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं कैसे बदली? क्या कुछ परिवर्तन आता जाता है जब बहुत ज्यादा सम्मान मिलते जाते हैं अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति? ऐसा कुछ होता है क्या?
1: जब अवार्ड मिलते हैं तो बस आपकी आपके लिए जिम्मेवारी ये बढ़ती है कि पहले से आपको बहुत ज्यादा बेहतर होना है, और पहले से ज्यादा आपको समाज को भी कुछ देना है, क्योंकि समाज ने ही आपको दिया है। तो मेरे लिए ये एक चुनौती भी है कि मैं अपने ज्ञान को, अपने हुनर को और आगे ले जाऊं।
0: हाँ, और उसमें आगे बढ़ाए उस काम को, बिल्कुल सही बात। हाँ। तो अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ चुके हैं इस इंटरव्यू की, लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे

0: सोनिका जी एक गृहिणी, कलाकार और लेखिका, इन तीनों भूमिकाओं को निभाते हुए आज आप अपने जीवन में किस एक शब्द में परिभाषित करेंगी?
1: संतुष्टि। इन तीनों भूमिकाओं को मैंने बहुत निभा रही हूँ और मुझे बहुत संतुष्टि होती है हर भूमिका में।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात कह दी आपने। आजकल बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इस शब्द का यूज करते हैं कि मैं सेटिस्फाइड हूं या मैं संतुष्ट हूं। तो आपने तीनों जो अपनी भूमिकाएं हैं इनके लिए एक ही शब्द बताते हुए बहुत ही बढ़िया और प्रभावी जवाब दिया है इस बात का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे श्रोताओं में जो महिलाएं कला, लेखन या मंच से जुड़ना चाहती हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? वो क्या करें, किस तरह से अपने में बदलाव लाएं या किस तरह से इस सारे चीजों से जुड़े?
1: ठीक है, अगर किसी महिला में आप में कोई हुनर है तो आजकल सोशल मीडिया सबसे बड़ा आपका अस्त्र है। मैं कहूंगी कि आप उसे, सोशल मीडिया पे कई मंच हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप ऑफलाइन भी जुड़ेंगे तो मेरा इन सब, मेरा महिलाओं से यही कहना है, आप में जो भी हुनर है आप हमेशा अपने हुनर को दिखाएं दूसरों को, और अपने साथ आलोचक जरूर रखें। वो कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए।
0: हाँ।
1: तो जब तक आपके पास आलोचक नहीं रहेंगे, आपके दो तीन दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको असली रिव्यू दें आपके कला, चाहे आप लिखती हैं, चाहे डांस करती हैं, अभिनय करती हैं, कुछ भी करती हूँ, पर दो तीन दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जो रियल रिव्यू देते। आप अपने हुनर को तराश सकते हो, और अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं इसमें थोड़ा ऐसा और होना चाहिए, कभी भी उसको नेगेटिवली मत लो, हमेशा हमेशा उसको पॉजिटिवली लो। तो आलोचना ही सफलता का सबसे

0: साधन है, माध्यम है। तार्किक आलोचना को हमेशा आप अपने हुनर में जगह दें, जिससे आपका हुनर हमेशा आगे बढ़ेगा।
1: बहुत सुंदर, ये बात आपने बड़ी जोरदार कह दी कि सोशल मीडिया के आने के बाद से आपको बहुत सारे मंच मिल गए, या कुकिंग से लेकर कविता, शेर व शायरी, गायन, और
0: हाँ,
1: कराओके तो आजकल बहुत फेमस हो ही गया है, सब लोग गा ही रहे हैं आजकल, तो
0: आप आराम से
1: लेखन
0: उसमें हाँ अपने तराश
1: तराश।
0: सकते हैं अपने हुनर को, फिर आप ऑफलाइन मंचों पे अपना प्रस्तुति दे सकते हैं।
1: बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल तो ब्लॉग्स लिखने लग गए लोग, बाग लिख भी सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, कहानी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और ये सब घर की एक घर के एनवायरनमेंट से आप बैठे बैठे सारा कुछ कर सकते
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई
1: हैं,
0: आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा।
1: अलग से टाइम नहीं देना भाई, और मोबाइल हाथ में लिया और जब भी समय मिला और कुछ ना कुछ आपने लिखा, और पढ़ने के लिए भी आपके पास बहुत है, दूसरों के ब्लॉग्स हैं, दूसरों की कविताएं
0: बहुत
1: हैं
0: कुछ है
1: जो
0: आपके पास,
1: पढ़
0: अगर आप
1: सकती हैं,
0: चाहें तो बहुत कुछ कर सकते।
1: महिलाओं के लिए तो एक पूरा दुनिया खुल गई है, अगर ये कहना चाहूं तो मैं,
0: बिल्कुल, अब
1: इस
0: आज
1: सोशल मीडिया।
0: गृहिणी ये नहीं है कि सिर्फ घर का ही काम कर रही है, पर हाँ अपने शौक को जीने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में आप उसका यूज करें, फिर देखें आप कहाँ पहुंचते हैं।
1: आप ये देखिए ना, कुकिंग के ही कितने सारे चैनल चल रहे हैं,
0: हाँ
1: वो उसी पे लोग बहुत बढ़िया यूट्यूब पे डाल डाल के कितना सफल हो रहे हैं, बहुत
0: बिल्कुल,
1: सही बात।
0: कुकिंग है आपका, साहित्य है, पेंटिंग है, डांस है, किसी में भी आप जा सकते।
1: तो सोनिका जी, आने वाले समय में आपकी कोई नई प्रोजेक्ट या नई परियोजना या किताब जिस पर आप काम कर रही हैं, तो कुछ बताएं हमें उसके बारे में।
0: हाँ, जिस तरह से मेरी इस अयोध्या पीड़ाखंड को बहुत ही प्यार दिया पाठकों ने, तो अब मैं इस पे ही ड्रामा, इसको मैं एक ड्रामा में कन्वर्ट कर रही हूँ और आने वाले दिनों में रंगमंच पे उतारने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा लंबा काम है, देखिए कब हो पाता है। ऑलमोस्ट
1: चलिए,
0: लिख चुका है ड्रामा, पर बस उसकी बाकी तैयारियां चालू हैं अभी।
1: तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी इसके लिए आपकी, और
0: धन्यवाद।
1: अब हम बिल्कुल पायदान पे, आखिरी पे आ गए हैं। तो श्रोताओं, आपने सुनी सोनिका कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरक यात्रा, जहां एक गृहिणी ने अपने जीवन को केवल दिनचर्या तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कला, साहित्य और मंच के जरिए समाज में संवेदना की नई धारा बहाई। अंधा युग के कृष्ण से लेकर अयोध्या पीड़ा घन की स्त्रियों तक, उन्हें हर किरदार में जीवन की गहराई और स्त्री की आत्मा की आवाज को शब्द दिए हैं। सोनिका जी, हमारी श्रोताओं की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप यूं ही शब्दों, भावनाओं, अभिनय से नई रोशनी फैलाती रहें, आप यहाँ आई, अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस माध्यम से जोड़ने का और श्रोताओं से जोड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: और दोस्तों, अगर आपको आज का यह संवाद पसंद आया हो तो जुड़िए हमारे अगले एपिसोड में किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, शुभकामनाएं, और शब्दों की इस यात्रा से जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी में छिपा है एक नया आलोक। नमस्कार।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

0: मन भावन। दोस्तों ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज से। सुनते रहिए 90.8 FM रेडियो टांटिया भील। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जमानी। अरे पता नहीं स्वच्छिका कहाँ चली गई, इतना लेट तो वो कभी नहीं होती थी। लगता है आज मुझे अकेले ही कार्यक्रम करना पड़ेगा।
1: अरे रुको रुको सुजल, आ गई मैं।
0: अच्छा अरे आ गई तुम, मुझे लगा कहीं पानी भरने तो नहीं चली गई।
1: पानी भरने? नहीं नहीं सुजल, कुएं हैंडपंप पर जाना हुआ बीता हुआ कल, अब तो ये है हमारे घरों में नल से जल।
0: अरे वाह सही कह रही हो, पहले और अब में बहुत फर्क आ गया है ना।
1: हाँ मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे गांव में महिलाएं बच्चियां और लोग सुबह से पानी के इंतजाम में लगे रहते थे कि जिससे बाकी सारे काम समय पर पूरे हो सकें।
0: सही कह रहे हो, कितनी बार तो उन्हें दिन में दो दो चक्कर लगाने पड़ते थे ताकि पानी कम ना पड़ जाए।
1: और पता बच्चियों की पढ़ाई भी छूट जाती थी, यही नहीं गंदे पानी के सेवन से बीमार होना तो आम बात हो गई थी।
0: पानी रे पानी तेरा रंग कैसा,
1: सोचूं मैं सोचूं तेरा ढंग कैसा।
0: वाह सचुका ये तो नया गाना बन गया।
1: सुजल महाशय गाने का समय हुआ खत्म, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए।
0: अरे हाँ हाँ हाँ, सो आप सभी को सुजल का
1: और स्वच्छिका का नमस्कार।
0: पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम प्रस्तुत है
1: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। सुजल, जल जीवन मिशन ने समय बदल दिया है। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, इसके तहत हर घर जल कार्यक्रम ने देश के करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाना शुरू कर दिया है।
0: हाँ अब महिलाओं बुजुर्गों और बच्चियों को पानी ढोने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता।
1: लेकिन ये सब आसान नहीं था भाई, कई लोग सोचते हैं कि जल जीवन मिशन बस पाइप बिछाने का काम है, जबकि सच्चाई यह है कि यह हर परिवार के लिए रोज साफ सुरक्षित और पर्याप्त पानी पहुंचाने का संकल्प है।
0: जो पानी आज नल में दिख रहा है वो अपने आप नहीं आया, इसके पीछे पूरे देश की मेहनत और लोगों की भागीदारी है। अब जल जीवन मिशन 2.0 के तहत इसे 2028 तक बढ़ाया गया है, जिससे हर घर तक पानी पहुंचे और हर गांव में जल योजनाओं का बेहतर संचालन, रख रखाव और सतत सेवा सुनिश्चित की जा सके। राहें खुद ब खुद बनेंगी, तुम बस कदम बढ़ाते चलो, होगा हर काम आसान, तुम मन में अलख जगाते चलो।
1: सही कहा, होगा आसान हर वो काम जो अब तक तुमको भारी था, जीत उसी की होती है जिसकी पूरी तैयारी थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश ने हर मुश्किल में काम किया, कहीं रेगिस्तान की गर्मी में कहीं पहाड़ों में, आज हर घर और हर बस्ती तक नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है।
0: अरे क्या हुआ
1: सुजल, ये सब सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएं। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये देश की उन लाखों महिलाओं और बच्चियों के सिर से आज पानी ढोने का बोझ उतर गया। अच्छा नल से जल मिलने के बाद हमारे गांव में और क्या बदलाव आया?
0: चलो पहले पानी पी लूं फिर बताऊं। देखो स्वच्छिका सिर्फ पानी ही नहीं आया, गांव के लोग भी इस योजना से जुड़ गए। ग्राम जल और स्वच्छता समिति के माध्यम से लोग मिलकर इसे संभाल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें इसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही हैं।
1: अरे ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ये क्या होता है जरा अच्छे से समझाओ ना।
0: ग्राम जल और स्वच्छता समिति यानी कि पानी समिति के लोग, जिनका गठन हर गांव में होता है और इस समिति में आधी महिलाओं का होना बहुत जरूरी है।
1: पर इनका कार्य क्या होता है?
0: चलो ये भी बताए देता हूँ। ग्राम जल और स्वच्छता समिति यानी कि पानी समिति का काम है ये सुनिश्चित करना कि गांव में पानी की सप्लाई ठीक से चलती है। नल जल मित्र ऑपरेटर की मदद से मोटर पाइपलाइन और टंकी का रख रखाव कराया जाए, लीकेज ठीक कराई जाए, पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच हो, और हाँ पानी के इस्तेमाल के लिए जो शुल्क है उसके लिए लोगों को जागरूक करना।
1: बाप रे, ये सब वो गांव वाले खुद करेंगे?
0: अरे नहीं, ये सब करने के लिए पंचायत उनकी मदद करती है, साथ में कुछ कार्य करने के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदी भी मदद करती हैं।
1: अच्छा, और ये पंचायत स्तर पर ये सरपंच जी, प्रधान, मुखिया और ये पंचायत प्रतिनिधि के क्या काम होते हैं?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है। पंचायत स्तर पर सरपंच या प्रधान या मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि पानी समिति के साथ मिलकर योजना का रख रखाव करते हैं। इनकी जिम्मेदारी है ताकि लोगों का भरोसा इस योजना पर बना रहे।
1: अरे वाह, अब समुदाय की भूमिका भी बता ही दो सुजल कुमार।
0: स्वच्छता समुदाय सबसे अहम कड़ी है, उनके साथ के बिना तो किसी भी योजना का रख रखाव और उसकी सततता कायम करना बहुत मुश्किल है। इस योजना के लिए समुदाय और हर व्यक्ति का कर्तव्य है, एक पानी समिति और पंचायत के साथ मिलकर काम करना, दो समय पर जल सेवा शुल्क दे देना, तीन पानी बर्बाद न करना, चार पानी के स्रोत की रक्षा करना और इसे बनाए रखने के लिए जल के पुनः भरण यानी कि रिचार्ज पर भी काम करना, और पांच शिकायत छिपाना नहीं, तुरंत बताना और सरकार के साथ मिलकर उसका समाधान भी ढूंढ लेना।
1: बिल्कुल सही, जब हर व्यक्ति कहे यह योजना मेरी है तभी योजना टिकाऊ होती है।
0: और इसीलिए अब योजनाओं की जानकारी पहले जैसे पानी की आपूर्ति, गुणवत्ता और रखरखाव की सार्वजनिक करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि हर व्यक्ति जानकारी के आधार पर अपनी भूमिका निभाए।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, पर योजना में भी तो कुछ खराबी आती होगी, उसे कैसे ठीक करेंगे?
0: आती है, ऐसी स्थिति में ग्रामीण अपने गांव के सरपंच या पानी समिति के सदस्यों को बता देते हैं। इसे चलाने के लिए एक ऑपरेटर होता है जिसे हम नल जल मित्र कह देते हैं, वो भी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान कर देता है। बड़ी समस्या के लिए जिले स्तर पर स्थित DTU पर संपर्क करके उनसे मदद ली जाती है।
1: यह तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की है।
0: अब इस मिशन ने अब तक क्या क्या प्रगति की है और JJM 2.0 में क्या खास है हमें बताएंगे श्री कमल किशोर सोन जी, जो जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक हैं। चलिए उनको सुनते हैं।
2: नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के माध्यम से आप सभी से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि आज का यह एपिसोड जल जीवन मिशन पर केंद्रित है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक और गांव के आंगनवाड़ी व स्कूल जैसे संस्थानों तक पाइपलाइन के माध्यम से नल से साफ और सुरक्षित पीने का पानी पहुंचे। पिछले कुछ वर्षों में हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़े हैं। आज मिशन उस चरण में पहुंच चुका है जहां कई गांवों और पंचायतों में योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और अब उनका संचालन और रखरखाव सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इसी क्रम में मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन का दूसरा चरण लागू हो चुका है, जिसके अंतर्गत मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है। इस नए चरण में जल जीवन मिशन अब नए सुधारों के साथ संचालित हो रहा है। अब हमारा ध्यान सिर्फ हर घर तक नल से जल पहुंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह सेवा नियमित, सुरक्षित और लंबे समय तक सतत रूप से बनी रहे। इसके लिए गांव के लोगों की भूमिका को और मजबूत किया जा रहा है। जल सेवा आकलन के माध्यम से गांव के लोग खुद अपनी योजना की समीक्षा करते हैं एवं पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और सेवा की स्थिति को समझते हैं। इसके बाद जिला स्तर की तकनीकी टीम यानी DTU डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल यूनिट की मदद से सेवा में सुधार की योजना तैयार करती है। DTU पंचायतों को रखरखाव एवं मरम्मत के कार्यों में भी मदद करता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु संवाद कार्यक्रम के माध्यम से दो स्तरों पर सीख और अनुभव साझा किए जा रहे हैं। सुजल ग्राम पेयजल संवाद में ग्राम और ग्राम पंचायत अपनी अच्छी पहल और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर तक साझा करते हैं, जिससे उन्हें पहचान मिलती है, उनके कार्यों को सराहा जाता है और देश के दूसरे गांव भी उनसे सीखते हैं। वहीं DC और DM पेयजल संवाद एक ऐसा मंच है जहां जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करता है, जिससे पेयजल से जुड़े प्रभावी समाधान और श्रेष्ठ कार्य पूरे जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। वहीं DC DM पेयजल संवाद में जिला प्रशासन अपने जिले के सफल उदाहरण और अनुभव साझा करते हैं, जिससे पेयजल संबंधित जरूरी समाधान और बेहतर कार्यों को पूरे जिले और अन्य स्थानों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, जल जीवन मिशन केवल पाइप और टंकी लगाने की योजना नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी पर आधारित एक जन आंदोलन है। जब गांव खुद अपनी जल व्यवस्था को समझकर संभालता है, तभी यह लंबे समय तक टिकाऊ रहती है। इसलिए जल स्रोतों की सुरक्षा, गुणवत्ता बनाए रखना और समुदाय की भागीदारी इस मिशन के प्रमुख आधार है, ताकि पानी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित बना रहे।
0: स्वच्छिका, जैसे मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन जी ने बताया, जल जीवन मिशन 2.0 में कई सुधार लाए गए हैं, जिनसे पानी की सेवा को नियमित, टिकाऊ और बेहतर तरीके से चलाया जा सके। सोचो जरा, अभी तो देश के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से जल आ रहा है। जब देश के सारे घरों में नल से जल आने लगेगा, वो भी नियमित, रेगुलर, तो लोगों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना।
1: हाँ जरूर, लेकिन जो जल नल से आएगा उसको स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सब गांव वालों को तो निभानी होगी, ताकि कोई बीमार ना पड़े। अरे ये कौन हंसा? सुजल, तुमने सुना क्या?
0: हाँ, अरे ये वही है तुम्हारी पुरानी मित्र दूषिका, तुम्हारी बातें सुनकर हंस रही है।
1: अरे मैंने कोई मजाक की बात कही नहीं।
0: अभी तो तुमने क्या कहा?
1: क्या कहा मैंने?
0: यही कि जल को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लोगों की भी होगी।
1: अरे तुम बार बार क्यों हंस रही हो? तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही हूँ। अगर तुम लोगों को साफ पानी की परख होती तो उसका महत्व पता होता तो मैं कब की यहाँ से दूर जा चुकी होती। लेकिन तुम लोग सोचते हो कि बस पानी आएगा तो सब ठीक, अगर पानी गंदा हो जाए तो बीमारी, अस्पताल, सब मेरी वजह से होगा। मैं दूषिका, पानी प्रदूषण की रानी।
0: ओ पानी प्रदूषण की रानी, अब तुम्हारा दौर खत्म हो चला।
1: इस बार हम तेरी एक नहीं चलने देंगे।
0: हमने ना ठान लिया है कि लोगों को साफ पानी की जरूरत और उनका महत्व बताएंगे।
1: तो क्या अब तक लोगों के घर पानी नहीं आता था? ऐसा क्या बदलाव आ गया है?
0: बिल्कुल आता था पहले भी, लेकिन जल जीवन मिशन में ये तय किया जाता है कि हर पेयजल स्कीम में स्रोत से आने वाली पानी को शुद्ध करने के लिए डिसइंफेक्शन यूनिट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था हो। क्लोरिनेशन, फिल्टरिंग और अन्य ट्रीटमेंट प्रक्रियाओं के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति हो सके।
1: पर पानी को तो बाद में भी गंदा किया जा सकता है और लोगों को इसका पता चलेगा कैसे?
0: तुम्हें पता नहीं है, जल जीवन मिशन में पानी की गुणवत्ता की जांच बहुत जरूरी हिस्सा है। तुम्हें पता है इसके लिए हर गांव में 5 महिलाओं और दीदियों को फील्ड टेस्टिंग किट से पानी की गुणवत्ता

0: ताकि जांच करना सिखाया गया है। जरूरत पड़ने पर सैंपल या नमूने को लैब में भी भेजा जा सकता है। जेजेएम के नए चरण में ऐसे महिला दीदी समूह को अब सुजलाम शक्ति का नाम दिया गया है।
1: अरे स्वच्छिका मैडम और सुजल भाई साहब, लोग तुमसे ज्यादा मेरी बातें मानते हैं। तुम तो लोगों को कठिन कठिन टास्क देते हो, ये धो वो साफ करो।

0: उस गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है जब सरकार और विभाग जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजनाओं को औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत एवं ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय को सौंपते हैं। इस दिन गांव का समुदाय अपनी जल व्यवस्था को गर्व, जिम्मेदारी और अपनापन के साथ स्वीकार करता है और उसे संभालने व सुरक्षित रखने का सामूहिक संकल्प लेता है।
1: जल अर्पण दिवस का क्या अब समझ में आ गया मतलब? ये जानकारी जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन साहब ने दी थी।
2: हाँ बिल्कुल आया। इस दिन का संदेश ये है कि अब पानी सिर्फ सरकार की योजना नहीं, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है। सब मिलकर इसकी देखभाल करेंगे आज, कल और आने वाले वर्षों तक। लेकिन ये तो बताओ कि यह कैसे जांचेंगे कि योजना अब हैंडओवर के लिए तैयार है? क्या क्या करना होगा?
1: योजना को गांव को सौंपने से पहले ये देखा जाता है कि पानी समिति बनी है या नहीं, क्या योजना को कुछ दिन और चलाकर जांचा गया है, पानी सही है या नहीं इसकी जांच हो चुकी है, नल जल मित्र और समिति को काम की जानकारी मिल गई है या नहीं, पूरे सिस्टम की जमीनी जांच हो गई है या नहीं, और सब जानकारी गांव में खुले में लगाई गई है। जल चौपाल करके गांव वालों को जोड़ा गया है और जल स्रोतों की सफाई भी हो चुकी है। जब ये सब पूरा हो जाता है तभी ये योजना गांव को सौंप दी जाती है।
2: अरे वाह, पर ये बताओ कि इसको कैसे मनाएंगे?
1: इसे एक समूह उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसे हम अपने स्थानीय लोक परंपरा के हिसाब से मना सकते हैं। सोर्स टू टैप समुदाय के साथ मिलकर ट्रांजेक्ट वॉक यानी कि जल परिक्रमा की जाए, गांव के स्कीम का नक्शा और जल गुणवत्ता रिपोर्ट सार्वजनिक स्थल पर लगा दी जाए और जल योजना संरचनाओं पर हम पवित्र धागा बांधकर, जल बंधन धागा बांधकर सुरक्षा का संकल्प हम अपने योजना और जल स्रोत की रक्षा करेंगे ऐसा सोचें और साथ में जल संरक्षण की आदतों को अपनाएंगे और उपाय भी करेंगे। इसके बाद इसी दिन योजना से जुड़ी सारे दस्तावेज पंचायत को हैंडओवर भी कर दिए जाएंगे ऐसा प्रावधान है। फिर ये ध्यान रहे इसे अपने स्थानीय संस्कृति के अनुसार ही मनाया जाए जो हमारा लोकल कल्चर हो। इस दिन हमारे गांव को अपने माननीय सांसद और स्थानीय मंत्री, अन्य जन प्रतिनिधियों और प्रवासी ग्रामीणों को जरूर बुला लीजिए। इसके अलावा अभी जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जल उत्सव भी मना रहे हैं।
2: जल उत्सव? ये जल उत्सव क्या है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जल उत्सव को 3 स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है ताकि हर व्यक्ति इससे जुड़ सके।
2: 3 स्तर?
1: हाँ बिल्कुल,
2: आसान भाषा में समझाओ ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर का जल महोत्सव। ये हर साल 8 मार्च जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है उससे लेकर 22 मार्च यानी कि विश्व जल दिवस तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है।
2: अच्छा, यानी पूरे देश में एक साथ पानी को लेकर जागरूकता और भागीदारी का माहौल बने।
1: बिल्कुल सही। इसमें देश भर में कार्यक्रम, संवाद, सम्मान समारोह और जन भागीदारी के आयोजन होते हैं ताकि पानी को लेकर सामूहिक जन जागरूकता का माहौल बने।
2: और दूसरा स्तर कौन सा है?
1: दूसरा है राज्य स्तर का राज्य जल उत्सव यानी कि नदी उत्सव। इसमें हर राज्य अपनी नदियों, जल परंपराओं और स्थानीय संस्कृति के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करता है।
2: मतलब हर राज्य अपने हिसाब से अपनी पहचान के साथ जल उत्सव मनाता है।
1: हाँ, जैसे कहीं नदी के किनारे कार्यक्रम होगा, कहीं जल संरक्षण अभियान होगा, तो कहीं स्थानीय त्योहारों के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा।
2: और इसका तीसरा स्तर?
1: तीसरा और सबसे अहम है गांव और पंचायत स्तर का लोक जल उत्सव।
2: अरे यह तो सबसे जरूरी है।

0: क्योंकि असली काम तो गांव में ही होता है।
1: सही कहा। ऐसे जल उत्सव में जल चौपाल भी होती है। गांव के लोग मिलकर अपनी जल योजना की समीक्षा करते हैं और यदि कोई कमी रह गई हो तो उसे ठीक करके अपनी सेवा को और बेहतर बना देते हैं। पानी के स्रोतों की सफाई की जाती है और सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि योजना को टिकाऊ बनाएंगे।
0: मतलब यह है कि देश से लेकर गांव तक हर स्तर पर पानी को एक उत्सव, एक जिम्मेदारी और एक जन भागीदारी के रूप में जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल, जल उत्सव का मतलब सिर्फ कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये जन भागीदारी से जल की जिम्मेदारी है।
0: सही कहा। और हमने इसके लिए जल अर्पण दिवस के दौरान सम्मिलित गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ के सांसद श्री रोडमल नगर जी से बात की। आइए जाने क्या कहते हैं वे इसके बारे में।
2: धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, धन्यवाद जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल साहब, धन्यवाद पूज्य योगी महाराज। एक ऐसी सोच जो मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ बिकॉज मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। पानी जो आने वाले समय पे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा धरती पर, अब उसको बचाना, उसको संजो करके रखना और वहां पर पानी की व्यवस्था, हर घर में नल से जल देने की व्यवस्था, ये बहुत बड़ी सोच थी। ये इम्पॉसिबल जैसा था, इम्पॉसिबल जैसा, लेकिन मैंने इसको पॉसिबल होते हुए अपने 6 संसदीय क्षेत्र में देखा। 2.25 लाख लीटर की टंकी लगी, ऑटो मशीन पर पानी हर घर में आ रहा है, कितनी खुशी थी। ये खुशी का कोई मापदंड नहीं।
3: जल जीवन मिशन का जो काम है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, हर घर नल से जल, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सराहना करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और राजगढ़ जिले में भी 1331 के लगभग गांव ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। ये ठीक है कुछ व्यवधान रहे, उसकी वजह से कुछ लेट लतीफ हुई है, लेकिन बहुत ही प्रशंसनीय है। कुंडी बे गांव में तो 24x7 24 घंटे नल से जल प्रदाय हो रहा है और वहां की जो पद्धति को हमने देखा और वहां से जो हमने सीख ली वो भी बड़ी अनुकरणीय है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं कि नल की टोटी निकाल देते हैं तो पानी व्यर्थ में बहता रहता है, लेकिन कुंडी बे ग्राम पंचायत के लोगों की मैं सराहना करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। हर नल में उन्होंने टोटी लगा रखी है और मैं एक दिन गांव में गया, मैंने टोटी चालू कर दी और लोगों की तरफ देखा तो लोग हंसने लगे। मैंने कहा बस मैं यही चाहता था कि टोटी बंद रहनी चाहिए और ये आप अपनी तरफ से हमारे साथ में खड़े हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक वातावरण था, बड़ा अच्छा क्षण था। और अच्छा है जल जीवन मिशन के माध्यम से जैसा कुंडी में हुआ है जैसे अन्य गांव भी हो और जल्दी से जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल, इसको देने में हम सफल होंगे। जल जीवन मिशन का काम है गांव तक पानी पहुंचाना, लेकिन गांव का वितरण करना है तो ग्राम पंचायत का ही काम है, इसके लिए जन संगठनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए जो काम करता है वहां गलतियां होती है, चूक भी होती है, कमियां भी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हम सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी और राजगढ़ मध्य प्रदेश के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। सुजल ऐसा लगता है जल अर्पण दिवस और जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की हैं।
5: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सके एवं चला सके इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता, और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
0: गोरखपुर के माननीय सांसद और राजगढ़ के सांसद से बात अभी हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई। ये तो बहुत अच्छी बात बताई सुजल। ऐसा लगता है कि जल अर्पण दिवस एवं जल उत्सव संस्कृति और जिम्मेदारी का संगम है। इसके अलावा आओ अब ये जानते हैं कि जल जीवन मिशन में कौन कौन सी डिजिटल प्रणालियां विकसित की हैं।
5: पंचायत, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और समुदाय अपनी पेयजल व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सके एवं चला सके, इसके लिए भारत सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियां विकसित की है। उसमें सबसे प्रमुख है पंचायत डैशबोर्ड। पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायत डैशबोर्ड बनाया गया है। इसके माध्यम से सरपंच और मुखिया जी योजनाओं की प्रगति, बनी हुई जल संरचनाएं, पानी की गुणवत्ता और प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी देख सकते हैं और अपनी राय व सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण डिजिटल पहल है सुजलाम डाटाबेस। इसके माध्यम से हर पाइप पेयजल योजना की जानकारी स्रोत से लेकर नल तक एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जल आपूर्ति योजना और प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट पहचान यानी सुजल गांव आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे योजना की निगरानी, प्रबंधन और सेवा वितरण को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जा सके। इसके माध्यम से आप अपने गांव की पेयजल योजना की जानकारी जल स्रोत से लेकर नल तक योजना के सभी घटकों को देख पाएंगे। योजना से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारियां भी इसमें उपलब्ध होंगी। तीसरा महत्वपूर्ण पहल है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम निर्णय सहयोग प्रणाली कहते हैं, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि पानी रहेगा तभी हम उसका उपयोग कर पाएंगे। हर योजना का भविष्य उसके जल स्रोत की सुरक्षा पर निर्भर करता है। यह प्रणाली हमारे परंपरागत स्थानीय ज्ञान, जो सदियों से जल के साथ हमारे अनुभव से विकसित हुआ है, को आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ती है। इस समन्वय से हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने जल स्रोतों को रिचार्ज कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि आज नल तक पहुंचने वाला पानी कल और आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे।
1: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
0: मैं समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। हाय राम, अब मेरा क्या होगा।
6: तैयारी पक्की, जिम्मेदारी सबकी। हम पानी बचाएंगे, योजना चलाएंगे, गांव का जल भविष्य बनाएंगे।
7: मैं आज समझ गई, सबसे ताकतवर गांव वो है जो पानी की रक्षा करता है। अब मेरा क्या होगा?
5: मैं कमल किशोर सोन, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। साथियों, ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले टाइड ग्रांट जल एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निर्धारित है। इस राशि का उपयोग गांव की पेयजल योजनाओं की देखभाल, मरम्मती, जल गुणवत्ता जांच, जल संरक्षण और लोक जल उत्सव, जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे गतिविधियों में किया जा सकता है। इससे पेयजल योजनाएं लंबे समय तक सुचारू रूप से चलती रहेंगी और ग्राम पंचायत के सहयोग से लोगों को बेहतर पेयजल सेवा मिलती रहेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाइप जल आपूर्ति योजना से मिलने वाला साफ और सुरक्षित पीने का पानी केवल सुविधा नहीं है, बल्कि यह बेहतर स्वास्थ्य की बुनियाद है। इससे डायरिया, पीलिया और अन्य जल जनित बीमारियों में कमी आती है, बच्चों और गर्भवती माताओं का स्वास्थ्य सुधरता है और परिवारों का इलाज पर होने वाला खर्च भी घटता है। स्वस्थ परिवार मतलब कामकाज में कमी नहीं, आमदनी में नुकसान नहीं। इसलिए पाइप नल योजना के माध्यम से मिलने वाला साफ पानी गांव की तरक्की की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, चूंकि मानसून अपने चरम पर है और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वर्षा जल का एक एक बूंद हमें बचाना चाहिए, मेरा सबसे आग्रह है कि पानी का समझदारी से उपयोग करें और बर्बादी से बचें। साथ ही जल संचय, जन भागीदारी, कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों के रिचार्ज की तैयारी करें ताकि हमारे पेयजल स्रोत साल भर टिकाऊ बने रहें। आइए हम सब मिलकर सरकार और समुदाय की साझा जिम्मेदारी निभाएं, अपनी पाइप पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखें, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएं और यह सुनिश्चित करें कि हर घर तक सुरक्षित और नियमित पानी पहुंचता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
0: अरे सुजल, अगले अंक के बारे में भी तो कुछ बताओ।
1: अरे हाँ, मैं तो भूल ही रहा था। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्वच्छ भारत मिशन देश के हर गांव को स्वच्छ और एक गांव को ODF प्लस ग्राम बनाने हेतु क्या प्रयास कर रहा है और क्या रहेगी इसकी रणनीति। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिए स्वच्छ सुजल गांव की कहानी और रेडियो की जवानी।
0: अगले अंक तक आप सभी को हमारा नमस्कार।
8: आओ

0: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन द्वारा संचालित, कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित
1: कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के फनकार हैं मदन मोहन जी, जो हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं, म्यूजिक डायरेक्टर। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। आइए दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मदन मोहन जी के बनाए हुए इस गीत से।

मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 को बगदाद में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल इराकी पुलिस बलों के साथ महालेखाकार के रूप में काम कर रहे थे। मदन मोहन ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष मध्य पूर्व में बिताए थे।

1932 के बाद उनका परिवार अपने गृह शहर चकवाल फिर पंजाब प्रांत पाकिस्तान झेलम जिले में लौट आया। उन्हें एक दादा दादी की देखभाल में छोड़ दिया गया जबकि उनके पिता व्यवसाय के अवसरों की तलाश में बॉम्बे आए। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक लाहौर के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की।

लाहौर में रहने के दौरान उन्होंने बहुत कम समय के लिए एक करतार सिंह से शास्त्रीय संगीत की मूल बातें सीखी। हालांकि संगीत में उन्हें कोई खास प्रशिक्षण नहीं मिला। कुछ समय बाद उनका परिवार मुंबई आ गया। मुंबई में 11 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित बच्चों के कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ ये गीत।

सन 1943 में वो सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुए। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक 2 साल तक वहां सर्विस की, फिर सेना छोड़ दी और अपने संगीत हितों को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई लौटे। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में कार्यक्रम सहायक के रूप में शामिल हुए। वहां वो उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसे विभिन्न कलाकारों के संपर्क में आए। इन दिनों के दौरान वो ऑल इंडिया रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाले कार्यक्रमों के लिए संगीत बनाते थे। चलिए दोस्तों, सुने उनका ये गीत।

0: छत पे
1: संगीतकार मदन मोहन के मामले में संगीतकार खय्याम साहब का कहना है कि वो संगीत के बेताज बादशाह थे। संगीत की जितनी विविधताएं होती हैं उन्हें उनका गहरा ज्ञान था। हालांकि कोई औपचारिक प्रशिक्षण उन्होंने कभी नहीं लिया। 1947 में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उन्होंने छोटी सी अवधि के लिए ही काम किया। 1948 में उन्हें फिल्म शहीद के लिए संगीतकार गुलाम हैदर के तहत लता मंगेशकर के साथ फिल्म युगल पिंजरे में बुलबुल बोले और मेरा छोटा दिल डोले गाने का पहला मौका मिला। बस फिर क्या था, मदन मोहन जी की किस्मत बदल गई। आइए सुने उनका ये गीत।

1946 और 1948 के बीच उन्होंने संगीतकार एस डी बर्मन को दो भाई के लिए और श्याम सुंदर को एक्ट्रेस के लिए संगीत सहायक की भूमिका भी निभाई। चलिए दोस्तों सुने उनकी फिल्म का ये गीत।

अली जाम ले बैठा हूँ कब से इस मैखाने में, कोई तो होगा मेरा साथी, कोई तो प्यास बुझा।

कौन ये जाने कब मिल जाए, रास्ते में हम रात कोई, मेरे दिल का दर्द समझ कर

समझ कर तो आंसू तो बहा।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक प्रसिद्ध गीतकार, गायक, संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। भले ही वो जन्म से अंधे थे, फिर भी वो अपनी संगीत प्रतिभा से विश्व प्रसिद्ध हुए। तो लीजिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रविंद्र जैन जी द्वारा बनाए हुए इस गीत से।

0: क्या बात है।
1: प्यार हुआ।

Ночи.

रविंद्र जैन जी का जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनके पिता इंद्रमणि जैन एक संस्कृत पंडित थे और आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी चिकित्सक थे। रविंद्र अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके 7 भाई बहन थे। वो अपने माता पिता और भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उन्हीं का बनाया हुआ ये गीत सुने।

रविंद्र जैन साहब की पैदा होने के एक दिन बाद भी जब आंखें नहीं खुली तो उनके पिता ने उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था की। हालांकि डॉक्टर उनके पलके खोलने में सफल रहे लेकिन वो देखने में असमर्थ थे। ये जानकर उनके माता पिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये नेत्रहीन बच्चा कितना

रविंद्र के पिता ने उन्हें संगीत प्रशिक्षण के लिए ये विश्वास दिलाकर दाखिला दिलाया कि वो बड़े होकर संगीतकार बनेंगे और एक संगीतकार के लिए अंधा होना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की और उनके पिता ने उन्हें उपहार के रूप में एक मिनी हारमोनियम दिया था। शुरू में रविंद्र ने घमंडी लाल और फिर जनार्दन शर्मा जी से ट्रेनिंग ली। जनार्दन शर्मा जी ने उन्हें गायन भी सिखाया। उन्हें न सिर्फ गाने का बल्कि गाने लिखने का भी शौक था। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उनका बनाया हुआ ये गीत।

भले ही रविंद्र जी अपनी विकलांगता के कारण पांचवी कक्षा से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। उस समय उनके बड़े भाई डीके जैन साहित्य पढ़ते थे और वो उनसे अपनी किताबें जोर जोर से पढ़ने का रिक्वेस्ट करते थे। इसके कारण भले ही रविंद्र जी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, फिर भी वो बहुत ज्ञानी बन गए। लीजिए दोस्तों, सुनते हैं उन्हीं का एक गीत।

रविंद्र जैन जी कुछ समय बाद कोलकाता पहुंचे अपने चचेरे भाई के पास। रविंद्र जैन जी टैगोर संगीत से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए वो अपने संगीत का अध्ययन करने के लिए आसानी से अलीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। रविंद्र ने वहां 10 साल तक रहकर न सिर्फ संगीत सीखा बल्कि लोगों को संगीत भी सिखाया।

कोलकाता में ही रविंद्र जैन ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। आइए दोस्तों सुनते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ एक और गीत।

रविंद्र के मित्र निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो उन्हें मुंबई ले जाएंगे और संगीत निर्देशन का अवसर देंगे। और आखिर में 19 सितंबर 1969 को वो राधेश्याम के साथ बॉम्बे पहुंच गए। यहां मशहूर अभिनेता और उनके पुराने दोस्त संजीव कुमार ने रविंद्र को मशहूर निर्माता एन एन सिप्पी साहब से मिलवाया। आइए दोस्तों सुने इन्हीं का एक गीत।

1973 में आई फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन को लोकप्रिय बना दिया। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन थे। सुनते हैं दोस्तों उनका ये एक और गीत।

बॉलीवुड में गाना गाने के अलावा संगीत बनाने के अलावा रविंद्र जैन ने रामायण, श्री कृष्ण, अलिफ लैला, जय गंगा मैया जैसे कई सारे विषयों पर गाने लिखे। महाभारत सीरियल जो टीवी पे आता था वो किसे ना याद होगा, उसका भी संगीत रविंद्र जैन साहब ने दिया। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: आइए दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अल्फाज से एहसास तक के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में। हमारी रेडियो दोस्त आरती रॉय जी लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता अल्फाजों का, गजलों का। गजल सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, एहसासों की एक खूबसूरत दुनिया होते हैं जहां मोहब्बत, यादें, खुशी और दर्द सब अपनी आवाज पाते हैं। तो आइए कुछ देर के लिए हर फिक्र को पीछे छोड़ दें और डूब जाएं दिल को छू जाने वाली चुनिंदा गजलों के साथ जो आरती जी हमारे लिए लेकर आई हैं। शुरू करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम को।
1: शाम महके तेरे तसव्वुर से,
2: थोड़ी सी तो मेहरबान हो जा मुझ पर भी ऐ खुशी, थोड़ी सी तो मेहरबान हो जा मुझ पर भी ऐ खुशी। थक गया हूँ हंसी की आड़ में गम को छुपाते छुपाते, थक गया हूँ हंसी की आड़ में गम को छुपाते छुपाते। आदाब, नमस्कार। 90.8 FM पर रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील पर मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त आरती रॉय। दोस्तों, आज शो अल्फाज से एहसास तक में एक बेहद खास और रूहानी शाम ढलने जा रही है। आज का दिन मेरे लिए बेहद खास और मेरी खुशकिस्मती का दिन है कि हमारे साथ मौजूद हैं 35 वर्षों का विशाल अनुभव रखने वाले 6 किताबों के लेखक, NLP प्रैक्टिशनर और रेडियो SN और रेडियो टांटिया भील के अजीम डायरेक्टर समीर गोयल जी। आज इस खास मुलाकात में हम समीर जी की जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू होंगे, उनकी आवाज का जादू, उनका लेखन और उनका तजुर्बा आज हमारे इस शो को एक नया आयाम दे देगा। तो दिल थाम कर बैठिए, आगाज करते हैं आज की इस नफीस और सुरीली गुफ्तगू का। बेहद बेहद खैर मकदम है आपका, बहुत बहुत स्वागत है समीर जी, आइए तशरीफ रखिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही मोटा सा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं टेबल के इस तरफ हूँ, आप उस तरफ हैं, तो बहुत सारी बातें जो दिल में रह जाती हैं जब मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ, वो आज शायद कहने का मौका मिलेगा। शुक्रिया।
2: बिल्कुल, ऐसा होता ही है, हम जब माइक के इस और होते हैं तो ज्यादातर अपनी बातें तो अनकही रह जाती है ना। तो आज आपके पास पूरा टाइम है समीर जी, दिल खोल के बताइएगा। तो शुरू करते हैं समीर जी, ये बताइए कि 35 वर्षों का आपका एक लंबा और कामयाब कॉर्पोरेट व मेडिकल सफर है और फिर माइक्रोफोन की इस रूहानी दुनिया से आपकी वाबस्तगी है। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर आवाज और अल्फाज के इस सफर को चुनने का ख्याल कैसे दिल में आया आपके? क्या ये एक महज शौक था या रूह की कोई पुरानी पुकार?
0: इस सवाल के कई सारे जवाब दिमाग में आते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि जिस वक्त मैं कॉरपोरेट में काम कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कई बार कमेंट किया कि आप अच्छा प्रेजेंट करते हैं और आपको थोड़ा सा इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, वो मतलब लिया उस कमेंट को एक परसेप्शन में कि हाँ ठीक है, ऑलराइट, लोग बाग खामखा में तारीफ भी करते हैं क्योंकि मैं उनसे बड़े ओहदे पर था तो वो चापलूसी करने के लिए भी हो सकता कह रहे हो।
2: ठीक है, बात तो है,
0: तो ठीक है, ओके, ज्यादा गौर नहीं किया इस बारे में, आगे बढ़ते रहे। और फिर जिस वक्त कॉर्पोरेट छूट गया, तब तक मैंने इसके ऊपर गौर नहीं किया।
2: ओके,
0: कॉर्पोरेट छूट गया और उसके बाद मैं अपनी जिंदगी कॉरपोरेट से अलग जीने के लिए जहां मैं रह रहा हूं वहां पर आया, तो वहां पर मुझे एक मौका मिला एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर काम करने का हरिद्वार में। तो 2 महीने के लिए मैं वहां गया, गया तो सोच के ये था कि मैं काफी समय तक वहीं रहूंगा, सेटल हो जाऊंगा, हरिद्वार इज ए नाइस प्लेस। लेकिन खैर 2 महीने में ही वो कार्यक्रम निपट गया। बट रेडियो स्टेशन पर सारी फैसिलिटीज थी, तब वहां पर बहुत गहराई से ये महसूस हुआ कि रेडियो क्यों बहुत ज्यादा बीमार सा हो गया है, रेडियो बहुत डिटैच हो गया है, लोग बाग रेडियो से बहुत जुदा हो गए हैं, ये सब चीजें महसूस हुई। और उस चीज को वापस लाने के जद्दोजहद में जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, हरिद्वार के ही कुछ जानी मानी लोग थे जैसे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये वो, मैंने कहा चलो इनके इंटरव्यूज लेते हैं। तो जब इंटरव्यू लेने शुरू किए तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये काम करना है, और मुझे बहुत मजा आने लगा। आता भी पहले भी था, मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह लॉन्च किया था, लेकिन इतनी गहराई से कभी महसूस नहीं किया था कि अपनी आवाज को जो सरस्वती माँ ने मुझे दिया है आशीर्वाद, उसको इतनी गहराई से और गंभीरता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शायद मेरी जिंदगी का यही लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ मुझे। तो बस इस चीज को आप कह सकती हैं जो आपने आखिरी में कहा कि
2: पुरानी पुकार,
0: रूह की वो पुरानी पुकार थी जिसने जोर मारा, और बस फिर इसके बाद ये हुआ कि सारा रेडियो टांटिया भील से जुड़े, और फिर नितिन से जुड़े, और फिर रेडियो एसएन लॉन्च हुआ, और फिर आप सब लोगों से जुड़ना शुरू हो गया, बस चल पड़ा।
2: वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बयान किया आपने। तो समीर जी, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप 6 किताबों के लेखक के तौर पर जब समीर गोयल कागज पर अपने ख्यालात उतारते हैं, तो वो कौन सी ऐसी तसल्ली या कश्मकश होती होगी जो आपको एक पूरी किताब रचने पर मजबूर कर देती है? फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच में आप बैलेंस कैसे बनाते हैं? और समीर जी, वैसे तो हर लेखक को अपनी सब कविताएं और सब अपनी किताबें बहुत अजीज होती हैं, लेकिन और अपने बच्चे की तरह दिल के करीब होती हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी 6 किताबों में से कौन सी रचना, कौन सा कोई खास किताब, कौन सा किरदार या कौन सा प्लॉट जो आपके दिल के बहुत करीब है?
0: जी
2: माफ कीजिएगा, मेरे एक सवाल में कई सवाल हैं।
0: नहीं, आपने ओके, आपने शुरू में कहा कि एक तो जब मैं अपनी ख्यालात को कागज पर उतारता हूं, तो एक तो तसल्ली वाली बात कही थी और एक जद्दोजहद वाली बात कही थी आपने। जद्दोजहद इस बात की होती है कि सच बोलूं क्या, क्योंकि जब किताब पे लिखने चलते हैं ना, तो हमारे दिल के अंदर कुछ और होता है और हम किताब पे कुछ और लिखते हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है पूरी दुनिया इसे पढ़ेगी, और अगर हमने सच्चाई लिख दी जो कि नंगी होती है वो बड़ी खराब लगेगी लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, गुडी गुडी हो जाते हैं, लोगों को खुश कर लेते हैं
2: जी।
0: तो ये तो थी वो जद्दोजहद जो हर किताब को लिखने से पहले आई, और उस जद्दोजहद पर मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 20-25% मैंने कॉम्प्रोमाइज किया कि 20-25% मैंने झूठ बोल दिया
2: जी,
0: क्योंकि नहीं तो फिर लोग गाली देते कि यार ये तो बहुत ही मुंहफट किस्म का आदमी है। और तो लेकिन फिर भी जद्दोजहद के चलते 80% टाइम्स मैंने दिमाग में ये भी आया कि ये मेरी किताब है यार, नहीं पसंद है तो नाली में फेंक दो यार, मैं तो लिखूंगा, तुम्हें नहीं पसंद है कोई बात नहीं, निकाल दो मुझे समाज से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख दी। अब बात आई, ये तो हुई जद्दोजहद, फिर बात आई तसल्ली की। तो जो भी मन में था, जो बहुत सारा कुछ कहने को होता है और कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, तो वैसे में मुझे लगा लिख दो, किसी को समझना होगा तो समझ ले, सुनना होगा तो सुन ले, वरना रहने तो मैंने मेरी बात किताब पे लिख दी, अब ये हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगी। अगर आपको पसंद आती है तो बढ़िया है, नहीं पसंद आती है तो जाने दीजिए उसको, ठीक है। तो ये जद्दोजहद और ये तसल्ली, ये दो चीजों ने मेरे को किताब लिखने पर मजबूर किया। देन फिक्शन नॉन फिक्शन के बीच में आपने चूज करने का, बैलेंस बनाने का, संतुलन बनाने का बात करी। तो सच तो ये है कि अभी तक मैंने नॉन फिक्शन तो कोई लिखा नहीं है। हाँ, कुछ प्लॉट्स ऑलरेडी हैं दिमाग में जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, फिक्शन है वो। मैंने ज्यादातर नॉन फिक्शन ही लिखने की कोशिश की है अभी तक। तो अभी मैं उस मुकाम पर पहुंचा नहीं जहां पर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाऊं कि कैसे बैलेंस बनाता हूं मैं फिक्शन और नॉन फिक्शन के बीच में। अभी वहां पहुंच नहीं पाया। तो जब मैं फिक्शन लिख लूंगा तब मैं जरूर बता पाऊंगा। मतलब ओके, यहां पर मैं एक ट्रेलर जैसे मैं बोल सकता हूं। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं वो किताब, और उसका नाम है 8000 स्पार्क्स। ये मतलब छोटा सा अगर बताना चाहूं तो आज की डेट में जिससे हम परेशान हैं और जो हमारी जिंदगी में बहुत न्यूसेंस फैला रहा है वो है हमारा फोन। लेकिन मैंने कोशिश की है कि फोन किस तरीके से किसी मौके पर हमारी जान भी बचाता है, तो उसके ऊपर ये फिक्शन गढ़ने की कोशिश जारी है कि 8000 फोन्स मिलकर किस तरीके से कुछ हजार लोगों की जानें बचाते हैं। बस एक छोटा सा प्लॉट है जो बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ओके
3: ठीक है, बड़ी मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। मतलब मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, आप तो मुझे एक अच्छे से फैंटेसी में ले गए हैं। मैं सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। बहुत
0: हाँ, मतलब एक वही क्वेश्चन खड़ा करना चाहता था सुनने वालों के दिमाग में। आपने फिक्शन की बात की थी ना, इस वजह से अब बात आती है आपके उस सवाल पे कि मेरे को सारी लिखी हुई किताबों में सबसे पसंदीदा कौन सी किताब है और कौन सा किरदार है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं पहले भी अपने पॉडकास्ट में एक जगह पर कह भी चुका हूं कि जो सबसे पहली किताब मैंने लिखी थी एकलव्य, एक अकेला योद्धा। एकलव्य मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं मैं, क्योंकि उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया, उसको कोई टीचर नहीं मिला, उसको कोई गुरु नहीं मिला। अब उसके क्या कारण रहे उस सब चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मतलब सिंपल पॉइंट इज कि उसने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया, और मैं घमंडी नहीं हो रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहां पर भी जो कुछ भी मैंने किया, चाहे रेडियो SN हो, चाहे रेडियो टांटिया भील हो, चाहे मेरी बुक्स हो, चाहे मेरे और कुछ भी हो, उसमें मुझे किसी टीचर का मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई देता। जो कुछ भी किया मैंने इंस्पायर होकर अपने आप से ही किया, तो मैं उस किताब से बहुत ज्यादा वो हूं, अटैच्ड हूं। बाकी जाहिर सी बात है दूसरी किताब जो मेरी है माई डियर MR, वो मेरी जिंदगी की कहानी है, तो उसमें किरदार मैं खुद हूं। तो ठीक है, फिर भी मैं अपने आप को सेकंड नंबर पर रखता हूं, फर्स्ट नंबर पर तो एकलव्य को ही रखूंगा। सो एकलव्य, एक अकेला योद्धा, वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा नजदीक है।

0: जी समीर जी, अब आप ये बताइए कि आप NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और एनर्जी मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं, आप एक पॉडकास्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर, क्या आपका ये इल्म आपकी आवाज के उतार चढ़ाव और सुनने वालों के दिलों को सीधे छूने में मदद करता है? क्या आवाज वाकई दिलों का इलाज कर सकती है? और थोड़ा सा प्रिसाइसली आप ये NLP को भी समझा दें हमारे सुनने वालों को।
1: न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई एम जस्ट अ प्रैक्टिशनर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ उसको प्रैक्टिस करता हूं, अपने ऊपर इस चीज को अप्लाई करता हूं और कुछ अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अगर मिल जाते हैं तो उसको फिर मैं दूसरों पर अप्लाई करने की कोशिश करता हूं चुपके से, जिसे उनको बुरा ना लगे, उनको पता ना चले।
0: अच्छा,
1: तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है कि मतलब मैं आपसे इस तरह से बात करूं कि आपको एक बात जो मुझे मनवानी है वो मैं बातों ही बातों में आपसे मनवा लूं।
0: जी,
1: ये पुरानी कहानी है। टीचर्स अपने स्टूडेंट से बात मनवा लेते हैं, बॉसेस अपने सबॉर्डिनेट से बात मनवा लेते हैं, मम्मी जो है अपने बच्चों से बात मनवा लेती है, वगैरह वगैरह, ये किसी जमाने से चलता आया है।
0: जी,
1: लेकिन इसको प्रॉपर फॉर्मेट में डाल के स्टडी करके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक टर्म बनाया गया, उसके अंदर डिटेल में उसको समझा गया, पढ़ा गया। ओके, अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक सबसे बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं, जो मैंने जाहिर सी बात है कहीं देखा था और जब थोड़ा सा जानने की कोशिश की तो पता चला वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का ही एक एक्सपेरिमेंट था। वो ये था, हमारे हिंदुस्तान में एक जगह पर चौराहे पे रेड लाइट होती है तो लोग बाग रुक जाते हैं उस पे, लेकिन कई कई बार लोग बाग उस लाइन से आगे बढ़कर कारें स्कूटर्स खड़े हो जाते हैं।
0: जी,
1: अब उसमें पुलिस वाले अगर उस चौराहे पे खड़े हुए होते हैं तो वो लोग रेड लाइट से पीछे खड़े होते हैं, अगर कोई पुलिस वाला नहीं होता तो वो रेड लाइट के आगे आ जाते हैं। तो ये एक ह्यूमन मेंटालिटी है। अब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज करके बिना किसी पुलिस वाले को वहां खड़ा किए सारे लोगों को रेड लाइट से पीछे कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही आसान सा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये बात जयपुर की है, मुझे ठीक से याद है। चौराहे के बीच में एक वो एक छोटा सा वो होता है, मतलब जिसके ऊपर पुलिस वाला खड़ा होता है, स्टैंड। उस स्टैंड के ऊपर एक पोस्टर होता है जो चारों तरफ से दिखाई देता है, मतलब एक ऊपर ऐसा कटघरा जैसा होता है। तो उसके हर फेस पर, यानी कि चार सड़क को फेस करते हुए फेसेस पर, दो बड़ी बड़ी आंखें बना दी गई, सिर्फ आंखें और कुछ नहीं, कोई चेहरा नहीं। तो क्या हुआ कि फिर ऑब्जर्व किया गया कुछ ही समय में, देखा गया कि हर आदमी रेड लाइट से पीछे ही खड़ा है, क्योंकि हर आदमी देखता है कि सामने आंखें हैं जो कि उसी को देख रही हैं। उसे ये पता है कि वो सिर्फ पोस्टर है, कोई वहां है नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में, दिमाग में, कहीं अंदर गहरे उसको ये लगता है दो आंखें उसको घूर रही हैं कि मैं गलत कर रहा हूं। तो 99.99% लोग रेड लाइट से पीछे ही खड़े होते थे। सो दैट वॉज वन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सपेरिमेंट विच वॉज वेरी फेमस एंड वेरी सक्सेसफुल। तो इस चीज को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की।
0: जी,
1: अब आपके सवाल पर आता हूं कि इसको मैं अपने वॉइस ओवर में या रेडियो में या इंटरव्यूज में कैसे यूज करता हूं या करना चाहता हूं। जी हाँ, जरूर करना चाहता हूं, और काफी हद तक मैं कामयाब भी हूं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो लोग थोड़ा सा नर्वस होते हैं, अटकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम उनको लगती है, तो मैं उनको बिल्कुल कंफर्टेबल करता हूँ वो. हाँ, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यूज करता हूँ. उनको ये बोलता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग अभी शुरू नहीं हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग एक दोस्त की तरह पहले बात करेंगे उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे, अभी नहीं करेंगे, डोंट वरी, है ना. अच्छा चलो, आप ऐसा करो मुझे एक जोक सुनाओ. चलो अच्छा मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ. अरे यार मैं फिर बिल्कुल नाटक करता हूँ और पीछे जोर से चिल्लाता हूँ अपनी वाइफ के ऊपर, अरे यार क्या कर रहे हो, इतने बर्तन क्यों बजा रहे हो. अरे यार सॉरी यार, वो पीछे हमारी वाइफ ना वो बर्तन पटक रही थी, उनको पता चल जाता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वो बर्तन पटकने लगती है. वो भी हंस देते हैं, मैं भी हंस देता हूँ. तो हमारे और उनके बीच में जो एक जो बैरियर सा था ना, एक नर्वसनेस का, वो खत्म हो जाता है.
0: Oh, wow.
1: By using this neuro-linguistic programming technique, मैं उनको बिल्कुल कंफर्टेबल कर देता हूँ और उसके बाद रिकॉर्डिंग कब ऑन होती है मैं उनको बताता ही नहीं.
0: Oh my God.
1: बस सीधे आ जाता हूँ. अरे यार छोड़ो ये सब बातें बेकार की हैं. अच्छा मुझे अपने बारे में बताइए, कहाँ हो आप, क्या करते हो, कौन हो आप. बस वो शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज द यूसेज ऑफ neuro-linguistic programming. There is a question lies of energy medicine. वो तो खैर उसके ज्यादा बड़े एक्सपर्ट जो है हमारे वो नितिन भाई हैं, इंद्राणी जी हैं. मैं तो एक सिंपल प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब वो चक्रास और मेरिडियंस एंड ये सब चीजें. तो मैं नॉर्मल रूटीन छोटे मोटे प्रैक्टिसेस करता हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और कुछ नहीं. मैं किसी को सलाह दे नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं.
0: ओके ओके, मींस यू मीन टू से के वो जो एनर्जी मेडिसिन है दैट इज प्राणिक हीलिंग.
1: प्राणिक हीलिंग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उसको हिंदी में कहेंगे तो उसको प्राणिक हीलिंग कहेंगे.
0: ओके ओके,
1: सही है.
0: यस यस राइट.
1: आप अपनी नाड़ियों को और मेरिडियंस को आप फ्रेश रखते हो वगैरह वगैरह, है ना.
0: वो तो मुझे,
1: हाँ बिल्कुल सही बात है. तो ये दो चीजें होंगी जिनका मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से जुड़ू, लोगों से कनेक्ट करूं, और जहां तक आवाज के टेक्सचर का है, आवाज के मॉड्यूलेशंस का है, वो मैं पिछले 5-6 सालों से प्रैक्टिस कर ही रहा हूं. तो मुझे लगता है और इसमें इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है. जाहिर सी बात है, अमीन सायनी साहब को मैं मेरा गुरु मानता हूं. उनको लगातार सुनता रहता हूं. उसके बाद हरीश भिमानी साहब हैं, वो भी मेरे गुरु हैं. तो इन लोगों से सीखता हूं कि मॉर्गन फ्रीमैन है जो हॉलीवुड में है, हाउ डू दे यूज देयर वॉइस टू यू नो कनेक्ट टू पीपल. वही चीज मेरी यहां पर है कि मैं लोगों को किस तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबल कर सकूं.
0: आपके इस जवाब से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है समीर जी, वो ये है कि आप तो इस मॉडर्न जमाने के हैं और आपने ये पढ़ लिया कि ये आप जो अभी टर्म यूज कर रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक व्हाटएवर प्रोग्रामिंग
1: एनएलपी, हाँ सीधा सीधा
0: एनएलपी, हाँ एनएलपी, मगर आपको क्या लगता है कि ये जो पुराने अमीन सयानी और हरीश भमानी साहब और वो जो आपने फॉरेन के बंदे का नाम दिया, उस जमाने में इन लोगों ने तो ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, तब तो इतना जमाना एडवांस नहीं था, तो वो फिर अपने आप ही उनसे ऐसे हो गया.
1: देखो आरती जी, ऐसा है कि ज्ञान जो है वो हमेशा से इस ब्रह्मांड में मौजूद है. अभी मॉडर्न टाइम्स में किसी ने इस चीज को बहुत गहराई से समझकर लिख दिया तो वो हमारे सामने किताब के शक्ल में आ गया. अदरवाइज अमीन सायानी साहब और हरीश भिमानी साहब, उनको वो ज्ञान ब्रह्मांड से मिला हुआ था. जैसे कि गौतम बुद्ध साहब थे ना, अब उनको वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाकर उनको सारा ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने कोई किताब तो पढ़ी नहीं
0: जी.
1: लेकिन उनका ज्ञान टाइमलेस है, वो आज भी चलता है.
0: बिल्कुल.
1: तो ज्ञान तो हमेशा से था, उसके रूप बदलते चले गए. मैंने उसको एनएलपी का नाम दे दिया और बता दिया, और लोगों ने मुझे बता दिया. तो लेकिन उनको पहले से पता था, तो दे वर ऑलरेडी यूजिंग इट, उनके अंदर ही था वो,
0: अंदर ही था. वही बिल्कुल. बहुत अच्छे समीर जी, मेरे भी ज्ञान के चक्षु खोल दिए आपने. अच्छा आप ये बताइए, रेडियो एसएन और रेडियो टांटिया भील को आप इस मुकाम तक पहुंचाने में आपकी भी एक अजीम सोच रही है. एक रेडियो ओनर होने के तौर पर आपका क्या नजरिया है, आप इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने सुनने वालों के दिलों में कैसा एहसास छोड़ना चाहते हैं, और इन स्टेशनों को आगे बढ़ाने फैलाने के लिए आपके आपने क्या क्या सोच रखा है, कुछ हमारे साथ शेयर करेंगे?
1: वैसे तो मैं टाइम एंड अगेन शेयर करता रहता हूँ अपने विजन को, क्योंकि सिर्फ मैं, ये जो विजन है मेरा, उस मैं मेरा विजन नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ ये सबका विजन हो। शुरुआत हुई तब जब मुझे ये महसूस हुआ कि रेडियो मर रहा है, पर मुझे उसको जिंदा करना है। एक ये पैशन मेरे को दिमाग में आया, एक ऑब्जेक्टिव मेरा बना। फिर चारों तरफ देखा तो तमाम तमाम चीजें इतिहास की वापस आती हुई दिखाई दी
0: जी।
1: बड़े बड़े चश्मे, बेल बॉटम्स और बहुत सारी चीजें
0: जी।
1: और फिर इसके बाद किसी समझदार व्यक्ति ने बहुत समय पहले कहा भी था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ
0: जी।
1: तो ठीक है, मुझे ये विश्वास हो चला कि रेडियो भी वापस आएगा। अब उसे वापस लाएगा कौन, ये बात दिमाग में थी, तो मुझे लगा व्हाई नॉट मी, मैं ही क्यों ना पहल करूं। फिर नंबर वन इज दिस, नंबर टू ये बिल्कुल सच है कि इंसान अपनी आवाज सुनना चाहता है, इंसान अपने को देखना चाहता है, आई फैक्टर। तो ठीक है, आप देख लीजिए ना, किसी भी सोशल मीडिया का बेस ही यही है, आप अपने आप को देखें, लोग बाग रील बनाते हैं
0: या सुनाएं,
1: या लोग बाग अपने को दिखाते हैं, अपने को सुनाते हैं। तो रेडियो तो किसी जमाने से सुनाने का ही माध्यम था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बस मेरा मिशन ये हुआ कि ठीक है, रेडियो पर लोग आएंगे, बोलेंगे, अपनी ही आवाज को सुनेंगे। और मजेदार वाली बात है, मैंने हिस्ट्री उठा के देखी तो रेडियो पर आज तक ढंग से, मतलब बहुत ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आम जनता को कभी इनवाइट ही नहीं किया गया। फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने इस चीज का फायदा उठाया
0: जी।
1: उन्होंने वो माध्यम जो थे वो आम पब्लिक को दे दिए और वो पॉपुलर हो गए।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा एजेंडा है कि मैं रेडियो को अब आम पब्लिक को देना चाहता हूँ, जैसे कि वो आए, वो बात करें, मैं अकेला बात ना करूं, आप अकेली बात ना करें।
0: बिल्कुल।
1: हम सब बात करें।
0: बिल्कुल।
1: तो जब ये चीज होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली रेडियो आगे बढ़ेगा। और अगर आप आगे बढ़ाने और फैलाने की बात करते हैं, तो सोचा तो दिमाग में यही है कि बाई 2030 तक मैं 10 रेडियो स्टेशंस इसी तरीके के पूरी इंडिया में खोलना चाहता हूँ। इंडिया हो या अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर कनाडा में भी बैठा कोई व्यक्ति खोलना चाहता है रेडियो एसएन का एक एक्सटेंशन, या रेडियो एसएन एक्सटेंशन क्यों कहूं मैं, रेडियो एसएन ही खोले वो एंड बी अ प्राउड ओनर ऑफ दैट स्टेशन। तो मेरा 10 स्टेशन खोलने का विजन है जो मैंने नितिन के साथ शेयर किया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमें हमारे जैसे सोच के बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो सेल्फ सेंटर्ड ना हो, जो लोगों के बारे में सोच सके, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको ये लगता हो कि सिर्फ हम ही हम हैं, हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। मैं उन लोगों से माफी चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। तो बस कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश है, चल रहे हैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी ये बात बहुत बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और बहुत समझदारी से मैंने इसको एक्सेप्ट भी किया है। बहुत अच्छे। रेडियो और आवाज के इस गहरे ताल्लुक के बाद आइए सुनते हैं अनूप जलोटा जी की आवाज में एक बेहद दर्द भरी और रूहानी गजल, जिसकी रवानगी में आप बह जाएंगे हमारे समीर जी की पसंद पर, हर शमा बुझी रफ्ता रफ्ता, हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे, शीशा ना सही पत्थर भी ना था, दिल टूट गया धीरे धीरे। आइए दोस्तों सुनते हैं समीर जी की पसंद पर ये खूबसूरत सी गजल।

0: आपकी ये बात कि आप द्रोणाचार्य नहीं बनना चाहते, ये बात मुझे बहुत, मेरे दिल को बहुत छू गई कि हम वाकई जब कुछ इल्म हासिल कर लेते हैं और फिर अहंकार आ जाता है और फिर सोचते हैं कि बस वही ना, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, तो वो चीज जो अगर आपने मिटा दी या निकाल दी अपने, हालांकि बड़ा जर्फ चाहिए ये चीज करने,
1: बहुत मुश्किल है, भयंकर मुश्किल है।
0: मैं इस बात से भी आपके साथ इत्तफाक करूंगी कि बहुत जर्फ चाहिए कि मैं इतना ज्यादा पॉपुलर हूँ, मुझे इतने लोग सुन रहे हैं, अगर मैं किसी और को दे दूंगा वो पेडेस्टल पे खड़ा करने की इजाजत, तो वो मुझसे भी ऊंचा हो जाए अगर, तो फिर मेरा मुकाम क्या रहेगा। ये जद्दोजहद भी रहती होगी, जरूर रहती होगी अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो, आपने भी महसूस की होगी, लेकिन आप उससे ऊपर उठ गए। जब एक बार आप ऊपर उठ गए तो बस फिर बुद्धा वाली सिचुएशन में आप आ जाते हैं ना
1: जी।
0: मैं ऐसा समझती हूँ।
1: सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीर जी। अब आप हमें ये बताइए समीर जी के डिजिटल दौर पे और पॉडकास्टिंग की इस भीड़ में ना कंटेंट का हुजूम है, मतलब एक चीज ढूंढने जाओ आपको कंटेंट बहुत मिल जाएगा, मगर आप अपने कंटेंट में सच्चाई, संजीदगी, और कम्युनिटी कनेक्ट को किस तरह कायम करते हैं कि मैं जो चीज कह रहा हूँ एथिकली वो सही भी है, कम्युनिटी से कनेक्ट भी हो पाती है या नहीं आपका कंटेंट, जब आप कोई पॉडकास्टिंग करते हो या आप डिजिटल में आप कुछ भी करते हो, मेरा कहने का ये मतलब है।
1: ये भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं गहराई से सोचने की कोशिश करूं तो फिल्में आरती जी किसी जमाने से बनाई जा रही हैं
0: जी।
1: एक एनालॉजी लेता हूं, फिल्में किसी जमाने से बन रही हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में इंडिया में बन चुकी हैं, और अगर इंटरनेशनली बात करें तो नंबर ही नहीं पता
0: बिल्कुल।
1: फिर भी उनमें से कुछ ही फिल्में हैं जो बहुत ज्यादा हिट होती हैं या लोगों को पसंद आती हैं। ये वही लोग हैं जो उन लाखों करोड़ों फिल्मों को भी देखने के लिए एलिजिबल है, और ये वही लोग हैं जो उनमें से 10, 12, 20, 25 फिल्मों को चूज करते हैं
0: जी।
1: सो कंटेंट तो देखो आरती जी बहुत सारा है पॉडकास्टिंग की आज की दुनिया में, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में
0: जी।
1: Everybody and anybody is free to say anything.
0: जी बिल्कुल।
1: But मुद्दा ये है कि जो एक elite class है, जो एक समझदार class है generation population की, वो क्या सुनना चाहती है, क्या देखना चाहती है, वो choose कर लेती है। एक बहुत ही प्यारी सी book है जिससे मैं बहुत बहुत बहुत ज़्यादा inspired हूँ, और I keep on, मतलब मेरे पास दो, मतलब I keep on referring it. W. Chan Kim की है बुक द ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, कि हर चीज में बहुत ज्यादा माराकाटी मची हुई है, पूरा समंदर खूनम खून लाल है,
0: oh my God.
1: लेकिन इसी समंदर में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका समंदर नीला हो जाए, साफ हो जाए, वॉट कैन यू डू अबाउट इट। तो मैं लगातार मेरे रेडियो स्टेशन के ऊपर अपने कॉन्टेंट्स को लेकर, अपने प्रोग्राम्स को लेकर लगातार मेरे ब्लू ओशन को ढूंढ रहा हूं, मैं ऐसा क्या कंटेंट क्रिएट करूं जो बाकी किसी रेडियो स्टेशन पर ना हो। तो मैं ये पता करने की कोशिश करता हूं कि बाकी रेडियो स्टेशन पर क्या है, रेडियो मिर्ची, बिग एफएम और जो भी बड़े बड़े बिग गन नेम्स हैं रेडियो पर, उन पर क्या है, जो उन पर है क्या मैं उससे अलग कुछ दे सकता हूं
0: जी।
1: तो मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, उन स्टेशंस पर लोग नहीं है। मेरे स्टेशन पर मैं लोगों को लाना चाहता हूं, जब लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट अच्छा होता जाएगा। फिर मैं कोशिश कर ही रहा हूं, दिव्य दर्शन, फिर इसके बाद बातें इधर की उधर की, थोड़ा फन हो गया, फिर मेरा गांव मेरा देश, गांव से लोग टूट रहे हैं तो गांव से जोड़ना है, चलो सिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं, किताबों के बारे में कर लेते हैं, हमारे पेट्स के बारे में कर लेते हैं, गाने गा लेते हैं, और बहुत जल्द हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं मूवीज के बारे में, तो कुछ अलग कंटेंट, बात कंटेंट की करी ना आपने, तो इलीट क्लास क्या पसंद करती है, इलीट क्लास ऐसा नहीं है।

0: कि मुझे रिक्शे वालों से कुछ प्रॉब्लम है
1: जी।
0: नहीं, मुझे रिक्शे वाले भी इंसान है, मुझे उनसे भी प्यार है। मैंने इंटरव्यू किए हैं होटल में काम करने वाले बैरों के, ऑटो ड्राइवर्स के, वो भी इंसान है, उनके पास भी कहानियां हैं। बट बात कंटेंट की है तो घूम फिर कर एक ही बात कहूंगा जो कि मेरे टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में रहती है। मैं अपने सब साथियों को कहता हूं, लोगों से बातचीत करो। बस वो कंटेंट सबसे अच्छा कंटेंट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिटी कनेक्ट
0: तभी होगा
1: ना। मैंने तभी आपसे ये सवाल पूछा है बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है, और अब तो बहुत अच्छे तरह से हो गया है कि आपके दिल में वाकई क्या है कम्युनिटी कनेक्ट को लेकर। बहुत बहुत सुंदर जवाब दिया आप। तो दोस्तों, सच्चाई और मेंटरशिप की इस सुंदर मिसाल के बाद आइए सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में खूबसूरत सी गजल, जिसे सुनकर आपको बेइंतहा मजा आएगा, क्योंकि ये हमारे समीर जी की पसंद की गजल जो है, गजल के बोल हैं, गम की जो घटा आए तो फिर झूम के बरसे, खुशी बरसे भी कुछ ऐसे कि खुशी देख के तरसे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं हमारे समीर जी की ये नफीस पसंद पंकज उदास की आवाज।

0: सच्चाई और मेंटरशिप की इस सुंदर मिसाल के बाद समीर जी, आइए अब आपसे एक और सवाल करती हूँ। वो ये है कि तजुर्बात के इस लंबे और हसीन कारवां में जिंदगी ने आपको ऐसा कौन सा सबक सिखाया है जिसने आपकी सोच और जिंदगी को देखने के नजरियात को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया, और फिर ये भी कि एक रहनुमा के नाते जो लोग हमारे नए रेडियो पॉडकास्टिंग या इस क्रिएटिव दुनिया में अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश कर रहे हैं, एक रहनुमा के नाते आप उन्हें कामयाबी और सब्र का क्या पैगाम देना चाहेंगे?
1: यहाँ पर आरती जी आपने दो चीजें पूछी हैं। पहली तो ये कि जो भी तजुर्बात रहे, इतना लंबा टाइम गुजरा, उसमें मैंने क्या सीखा, तो ये बड़ा ही मदरहुड स्टेटमेंट हो जाता है, मदरहुड क्वेश्चन हो जाता है। लोग बाग जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: सच्चाई बोलना, दूसरे का भला करना, महिलाओं की इज्जत करना, दुनिया में जंग ना हो, शांति हो, ये वो, ये सब बकवास बातें हैं
0: जी
1: मेरे हिसाब से। ठीक है जी?
0: जी,
1: जो मैंने सीखा मेरी जिंदगी से, जो कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ वो ये है कि जब आप अपनी टीम को अपने से आगे रखते हैं तो आपको प्रसिद्धि या जो खुशी या क्रेडिट या फीलिंग ऑफ ग्रैंडियर, यानी कि आप बहुत बड़े तोप हैं, वो तभी आएगी जब आप अपनी टीम को सपोर्ट करोगे, अपनी टीम को आगे रखोगे, टीम को बढ़ावा दोगे।
0: जी,
1: अगर आप झंडा लेकर हमेशा आगे चलते रहे तो आपको ऐसा महसूस होगा साइकोलॉजिकली कि आप बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं ऐसा। क्योंकि प्रसिद्ध कब होता है इंसान? जब लोग उसको फॉलो करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, और कोड़े मारकर जय जयकार नहीं कराई जाती। दिलों को जीत कर जय जयकार होती है। तो अगर आप, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं जय जयकार में, तो मुझे लोगों के दिलों को जीतना होगा। तो एक्सपीरियंस यही रहा कि आप दो कदम पीछे हट जाइए, जो कुछ भी तजर्बा आपके पास है उससे अपनी टीम को हेल्प कीजिए, टीम अपने आप आपको प्रसिद्ध बना देगी, आपके लिए थैंकफुल होगी, फिर वो चाहे कहे या ना कहे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है हर आदमी आपको आके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया करेगा, कोई जरूरी नहीं है। उनकी आंखों में भी अगर आपके लिए शुक्रिया दिखता तो काफी है। सो इस चीज को मेरी जिंदगी के तजर्बे ने मुझे सिखाया कि पीसफुल रहो और जस्ट लोगों को करने तो दो, उसके बाद अगर वो मांगने आए कि साहब हमें बताइए कि क्या करना है, तब सिखाओ। कूद के जाके फौरन स्लीव्स ऊपर करके, बाहें ऊपर करके, लाओ जी मैं करके दिखाऊं, ये कभी नहीं करना चाहिए। लेट द चाइल्ड प्ले, लेट द पर्सन परफॉर्म फर्स्ट। उसके बाद पर्सन को लगता है कि जी गलत हो गया, मुझे सीखना है, और फिर वो आता है आपसे, बोलता है कि सर ये गलत हो गया, मुझे बताइए, तब बताओ
0: जी।
1: तो एकलव्य को पहले एलिजिबल बनने दो, तब ज्ञान दो।
0: बिल्कुल।
1: और जहां तक आपने बात करी कि जो लोग बाग पॉडकास्टिंग या इस दुनिया के लोग बाग है और
0: अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढ रहे हैं,
1: जी जी जी, तो उनको अगर मैं कुछ संदेश देना चाहूंगा तो यह है कि आप कहोगी कि मैं हर बात में एक किताब की बात करता हूँ, लेकिन लेकिन जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया, वो अपनी किताबों में लिख गए, तो उसका फायदा उठाना चाहिए ना। तो एक और बुक है, बहुत ही प्यारी बुक है, देयर इज नो प्लान बी फॉर योर ए गेम, देयर इज नो प्लान बी फॉर योर ए गेम, यानी कि आपका जो गेम है वो ए है,
0: okay.
1: तो प्लान बी ए ही होना चाहिए, देयर इज नो प्लान बी। ओके, उसमें उस ईशन बो, उसने द राइटर इज ईशन बो, उसने लिखा है कि किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 15 साल लगते हैं। आप किसी भी शख्सियत को उठा के देख लीजिए, अमिताभ बच्चन, मोदी, सचिन तेंदुलकर, कोई भी, उसको अपनी कला की ऊंचाइयों तक पहुंचने में 15 साल से ज्यादा कम लगे ही नहीं है,
0: जी
1: तो आपको भी उतने ही लगने वाले हैं। तो तसल्ली बख्श, आराम से चलते रहिए, जो आप करना चाहते हैं करिए, बट चलते रहिए, इमीडिएटली रिजल्ट्स की उम्मीद मत करिए।
0: जी
1: 15 साल अगर आप करते रहे, अब जैसे मैं भी, मुझे 5 साल हो गए हैं ये रेडियो का काम करते हुए, मुझे पता है अभी 10 साल और बाकी हैं।
0: जी
1: है ना, ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है 10 साल के बाद रेडियो एस एम वुड बी ऑन हाइट्स।
0: जी
1: तो ठीक है, आई वेट, मैं वेट करूंगा, कोई बात नहीं। सो मैसेजेस दोस्तों, इंतजार कीजिए, जिस भी स्किल में आप जा रहे हैं,
0: जी
1: मैं रेडियो की बात नहीं कर रहा, कोई भी 15 साल तो लगेंगे, तो सब्र रखिए, टीचर्स ढूंढिए, उनसे मदद मांगिए, ईगो को घर पे छोड़ के आइए,
0: बिल्कुल,
1: और बस आगे बढ़ते जाइए।
0: बहुत खूब, बहुत इंस्पायरिंग आंसर है समीर जी आपका, वाकई कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाती, देर इज नो शॉर्टकट टू द सक्सेस, एनी काइंड ऑफ सक्सेस। जो भी हमारे बहुत सब मशहूर लोग हुए हैं, वो इतना लंबा वक्त तो लगा ही, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे कपिल देव हो, चाहे कोई भी हो, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो आपसे तो बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चल रहा समीर जी, और दिल कर रहा है कि बस करते ही रहे, करते ही रहे। प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा है कि अब हम आपकी लास्ट में एक गजल है जो अनप्लग वर्जन है और वो आपकी ही आवाज में है, तो आप हमें उस गजल के बारे में बताइए, फिर हम उसको प्ले करेंगे।
1: निदा फाजली साहब की ये गजल है और बहुत फेमस है, चित्रा सिंह जी ने गाई है और बहुत सारे गजल गायकों ने जरूर जरूर इसको गाया है, बल्कि अभी मैं देख रहा था शब्बीर कुमार साहब ने भी इस किसी फिल्म में इसको गाया है।
0: अच्छा।
1: कोविड के दौरान की बात है, तो मैं उस वक्त जयपुर में ही था, तो एक दवाइयों की एक होलसेल दुकान थी वहां पर काम करता था, तो जाहिर से बात है मुझे, क्योंकि कोविड में हम लोगों को अलाउड था, मेडिसिन वालों को, तो मैं जाया करता था, तो सड़कें सुनसान दिखाई देती थी, तो उस वक्त ही मुझे ये गजल कहीं से सुनने में आई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, अप्रोप्रिएट सी लगी, तो उस वक्त मैंने इसको रिकॉर्ड किया था। और बाकी जाहिर से बात है ये आज के टाइम पर भी पर्टिनेंट है, इस सेंस में कि आपको अकेले ही चलना होगा, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन धूप बहुत तेज है, देख लो, चल सको तो चलो, मैं तो चल रहा हूँ, धूप तो मेरे लिए, मैं तो बर्दाश्त करूंगा, अगर आपकी हिम्मत है तो आइए चलिए। तो मुझे इस वजह से ये गजल बहुत पसंद है कि हिम्मत वालों के लिए ये है साथ में चलना, आओ चल सको तो चलो।
0: बिल्कुल, गजल के बोल भी तो कुछ ऐसे ही है ना
1: जी,
0: के सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वेरी वेरी नाइस, बहुत। तो समीर जी आपकी हम ये अनप्लग गजल बजाते हैं, और उससे पहले अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुझ जैसे तमाम नए फनकारों का आपने हौसला बढ़ाया और हमारे सुनने वालों के साथ ना हसीन ख्याल साझा करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत बहुत, यानी कि बहुत शुक्र, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शुक्रिया समीर जी, आदाब, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, जो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस बनाकर मेरे अंदर से बड़े बड़े सच्चाई वाले जवाब निकलवा लिए, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और सुनिए, सुनने में ज्यादा मजा आता है
0: जी, बहुत। आइए दोस्तों, समीर जी की ये नया अनप्लग वर्जन को सुनते हैं, सुन के आप भी मेरी तरह दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। आइए
1: निदा फाजली साहब की लिखी हुई ये प्यारी सी गजल मुझे बहुत पसंद है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सब ही हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, किसी के भी वास्ते राहें कहां बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो देखो तो चल लो। सफर में धूप तो दोस्तों होगी, जो चल सको तो आओ चलो। यहां इस जहां में किसी को कोई रास्ता नहीं देता, जी हां यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा कर तुम संभल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। कहीं नहीं कोई सूरज, चारों तरफ धुआं धुआं ही है। खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। चुनौती है दोस्तों, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। हमारी यही तो है ना जिंदगी दोस्तों, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से अगर तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो देखिए दोस्तों होगी, अगर चल सको।

0: तरह होती हैं, अच्छी यादें हवाओं की तरह होती हैं, बंद कमरों में भी महक छोड़ जाती हैं। समीर जी की इतनी खूबसूरत बातें, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे अंदर तक महकती रहेंगी। आपने भी इनका लुत्फ उठाया होगा। दोस्तों, ये एक यादगार पल है जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। बस इसी महक और सुंदर एहसास के साथ अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। सुनते रहिए 90.8 FM पर रेडियो टांटिया भील और रेडियो SN, और आप अपनी रेडियो दोस्त हरती रॉय को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी। शबा खैर, शुभ रात्रि, रब राखा, फिर मिलेंगे।
1: वो घड़ी दो घड़ी जहां बैठी।
2: तो दोस्तों, कैसा लगा ये गुलदस्ता जो आरती जी ने सजाया? तो आज की इन गजलों ने आपके दिलों को छुआ होगा और कुछ तो खूबसूरत एहसास आपके लिए छोड़ गई होंगी। अगली मुलाकात के लिए फिर लेकर आएंगे आरती जी ऐसे ही शानदार गजलें और दिलकश नगमे। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने सभी का ख्याल रखिए। मिलते हैं।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: किसान साथियों, स्वागत करते हैं आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आज हम खेती बाड़ी के इस कार्यक्रम में जैविक बाजार संभावनाएं अपार। जी हाँ किसान साथियों, आज का हमारा जो विषय है, जो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है जैविक बाजार संभावनाएं अपार। किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा दौर है वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारे

0: ये कैसे हम भी इसमें सहभागी हो सकते हैं, कैसे हम हमारी खेती में बदलाव लाकर इनका लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं।
1: जैविक बाजार की अगर बात की जाए, लगातार अब इसका दायरा जो है बढ़ता जा रहा है, किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से अपार संभावनाएं जो है अब किसानों को इसमें नजर आ रही है। किस तरीके से संभावनाएं यहां पर हैं हमारे किसानों के सामने, उस पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट।
2: जब भी जैविक खेती की बात होती है तो हम यही समझते हैं कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशियों आदि के बिना की जाने वाली खेती, जिसमें गोबर की खाद हो, केंचुआ खाद हो, नीम आदि के बने कीटनाशी हो, मिश्रित खेती हो आदि आदि, अगर यही जैविक खेती है तो हम जैविक या जीवन की खेती के मर्म को समझने में असफल रहे हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो शायद जैविक खेती या जीवन की खेती की नई परिभाषा समझ में आएगी। प्रचलित हरित क्रांति में आधुनिक विज्ञान के सहारे जो प्रयोग हुए उनमें मशीनों व रसायनों को महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें जीने का अर्थ आवश्यकता, समझ व श्रम जैसी वास्तविकताओं की सही जानकारी के अभाव में ये मान लिया गया कि कम से कम लागत व कम से कम श्रम देकर अधिकतम उत्पादन करना ही विकास है। अब इसमें प्रकृति के साथ संबंध को समझना और इसके साथ जीना तो दूर की बात रही, बस केवल इस पर ध्यान दिया गया कि संपूर्ण प्रकृति के संसाधनों को मनमानी पूर्वक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस प्रकार मात्रात्मक रूप से उत्पादन में जो वृद्धि हुई उससे किसान और कृषि दोनों ही दिशाहीन होकर भारी संकट में हैं। फसल प्रणाली तथा खेती के संसाधन सभी लाभोन्मादी बाजार के कब्जे में हैं। उत्पादन तो बढ़ा लेकिन भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार जिस प्रकार बढ़ा है उससे तो यही लगता है कि प्रत्येक कार्य योजना असफल है। आर्थिक असंतुलन व प्राकृतिक स्तर पर जल प्रदूषण व विकिरण ने गहरे सवाल मानव जाति के सामने खड़े किए हैं। एक तरफ धरती की तबाही तो दूसरी तरफ मंगल ग्रह पर बसने की ललक ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अभी तक इस धरती के साथ जीना कैसे है इसे नहीं समझा है। इसलिए यह आवश्यकता है कि खेती करने से पहले प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था एवं उसके साथ जीने के संबंध को स्पष्ट रूप से जाना जाए। उत्पादकता प्रकृति की सहज व्यवस्था है, मानव उसमें भागीदार होकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। उपयोगी भोजन, हवा, पानी से प्रकृति सजी हुई है, जिसमें सभी वनस्पतियां एवं जीव जगत परंपरागत रूप से अपना अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई यानी मानव जीने में सफल नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के सामने है। जैविक खेती के संदर्भ में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्राकृतिक उत्पादन व्यवस्था का स्वरूप भूमि में उर्वरता बढ़ाना होना चाहिए। जंगल में मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार के शरीरधारी जीव हैं, जिनसे हर प्रकार का सह अस्तित्व सजा हुआ है। मानव जाति को उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है। मांसाहारी कम खाते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी कम है, साथ ही शाकाहारी ज्यादा चरते हैं तथा उनकी प्रजनन दर भी ज्यादा है, इसलिए कभी मांसाहारियों को भोजन का संकट नहीं रहता। साथ ही मांसाहारी के शरीर, मांस व मल की गंध से अनेक कीड़ों और बीमारियों का नियंत्रण भी होता है, जिससे वनस्पतियां रोग मुक्त रहती हैं। खेती करते समय भी किसान भाइयों को इसी सह अस्तित्व पूर्ण प्राकृतिक व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। खेती में कृत्रिम रसायनों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रकृति विरोधी है, इससे मिट्टी का अपना संसार विकृत होता है, जिससे धरती की उर्वरता में कमी आती है। भूमि में जीवांश बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे अवशेष अपघटन क्रिया के नियम। विविधता में

0: शेषों की उपलब्धता, तैयार किए गए कार्बनिक खादों व अन्य उपयोगी पदार्थों के प्रयोग, भूमि को कार्बनिक आच्छादन कर दबा कर रखना और हरी खाद के प्रयोग। आज हमारी भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जिस प्रकार प्रकृति में विविधता है, ठीक उसी प्रकार जमीन के अंदर जीवाणु भी विविधता में रहते हैं। ये विविधता प्राकृतिक ऐश्वर्य है, लेकिन एकल फसल प्रणाली से इस विविधता में भारी कमी आई है। यही कारण है कि भूमि में पर्याप्त विविधता में अवशेष उपलब्ध नहीं रहते, जिससे सूक्ष्म स्तर पर विविधता में जीवाणु भी उपलब्ध नहीं रहते। अब जैविक खेती को हम प्रकृति के साथ अपने सह अस्तित्व के रूप में देखें व समझें तो नई व सार्थक परिभाषा निकल कर आएगी। ये खेती संभव है और हमें इसे संभव बनाना होगा, वरना प्रकृति का नाश कर खड़े किए गए तथा कथित विकास का अंत पूरी मानव सभ्यता के अंत के साथ ही होगा। इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है।
1: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, जाना किस तरीके का बाजार

0: सरकार ने प्लेटफॉर्म दे दिया है,
1: बिल्कुल एक मंच जो है सरकार की तरफ से वो दिया गया।
0: तो वो अपना प्रोडक्ट लाके अपने विलेज के नाम पे, अपने नाम पे लाके वो बाजार में ला सकता है और बाजार में दे रहा है। इसी के सीरीज़ में बहुत सारी शॉप्स खोली जा रही हैं।
1: बिल्कुल, एक हम कह सकते हैं चरणबद्ध तरीके से अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और किसानों तक ये कैसे पहुंची, राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर बात कही जाती है जैसा कि यहाँ डॉक्टर कृष्ण चंद्रा ने हमें बताया काफी संख्या में जो किसान है वो जुड़ चुके हैं, आपका अनुभव कैसा रहा जैविक खेती करने से पहले और उसके बाद?
2: इसमें मुकुल जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी टीम को
1: जी।
2: मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कृष्ण चंद्रा जी का, जिन्होंने एक रास्ता खोला किसानों के लिए। उसी रास्ते के द्वारा मैं भी आज एक किसान के रूप में खड़ा हो पाया हूँ
1: जी।
2: उससे पहले जो हम खेती करते थे उसमें भी उतनी ही मेहनत लगती थी, लेकिन जो आउटकम था वो जस का तस रह जाता था
1: जी।
2: जब से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के द्वारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है
1: जी,
2: वहाँ हमने संपर्क साधा और उसके द्वारा जब हमने खेती करने का मन बनाया तो हमारे जीवन में एक ऐसा मिरेकल आया कि जो हमने कभी सोचा भी नहीं था
1: जी।
2: और जो हमारा इनपुट्स की प्रॉब्लम थी, खर्चा कहीं हो जाता था और लास्ट में जो कैलकुलेशन निकलती थी वो जस की तस रह जाती थी
1: जी।
2: आज की तारीख में हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ा है, ये तो एक बात है, उसके साथ साथ हमारी जो भूमि की जो कंडीशन थी जो दिनों दिन खराब होती जा रही थी, उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ सुधार होना शुरू हुआ है।
1: यानी वहां भी सुधार देखने को मिल रहा है
2: जी।
1: जी बिल्कुल, तो देखिए कितने फायदे हैं जैविक खेती के हम कहते हैं, लेकिन जैविक बाजार की जब खासतौर से बात कही जाती है तो ये एक बड़ा हम बाजार मान सकते हैं। मनु जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम हमारे किसानों को अगर बताएं, जैसे कि अब हम लगातार बात कर रहे हैं कितने किसान हैं जो इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन एक समस्या रहती है किसानों के सामने कि उन्होंने जैविक खेती तो कर ली, उत्पाद उनके सामने आ गया, लेकिन उस उत्पाद से उनको मुनाफा कैसे होगा, कैसे उसको बाजार तक पहुंचाएं?
3: डेढ़ साल पहले जब मैं संपर्क में आया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के और कृष्ण चंद्रा सर से, तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य सा विषय था कि किस तरह से हम चीज़ों को किसानों से खरीद के बाजार तक लाएं
1: जी।
3: क्योंकि पहले हमें जब इस उद्योग में हम लोग थे, जब इस बिजनेस में थे, तो पहले हमें बीच में किसी ट्रेडर का या किसी बीच में कोई मिडलमैन को हमें रखना पड़ता था और जिसके थ्रू हम किसानों से चीजों को खरीदते थे
1: जी। बिल्कुल,
3: लेकिन जब ये सरकार का ये नया स्कीम निकला PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना, इस स्कीम के तहत जब नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया कि ये स्कीम कैसे चलेगा, तो हम लोग अपना इसके अंदर में फॉरसाइटनेस देखे कि यहाँ इसमें किसान का काफी भलाई हो सकता है
1: जी।
3: तो क्लस्टर बनाना किसान का, क्लस्टर ग्रुप तैयार होना, एक एक ग्रुप में 50 या 60 किसानों का ग्रुप को पहले तैयार करना
1: जी,
3: वो ग्रुप को एक साथ खेती कराना, जब वो यूनिफॉर्म खेती कर रहे हैं बाजार का क्या डिमांड है उसके बेसिस पे खेती करना, तो जब ये खेती उस तरह से हो रही है बाजार के डिमांड के बेसिस पे
1: जी,
3: तो इस खेती में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दो एस्पेक्ट है जो बाजार को चाहिए। क्वालिटी एस्पेक्ट पे जब खेती हो रही है, क्वालिटी माने जैविक के स्तर पे, तो बाजार उसका उचित दाम देता है, उचित मूल्य देता है
1: जी,
3: जो किसानों तक पहुंचता है। तो ये बीच के अंदर का जो ब्रिज है, ये ब्रिज को तैयार करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, एक माध्यम बनकर
3: हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं
1: जी,
3: और इससे किसानों को काफी फायदा है। पर्टिकुलरली मैं पश्चिम बंगाल का आपको उदाहरण देता हूँ। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तीन तरह का हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंटल मोड पे तैयार किया है
1: जी।
3: तीन तरह का चावल को हमने, जो जिला स्तर या ग्राम स्तर पर वो चावल है
1: जी,
3: किसानों द्वारा पैदा किया जाता है, गोविंदो भोग, तुलाई पांजी और ब्लैक राइस
1: जी,
3: कालोनिया। अब इन चावल के बारे में शायद कोई जानते भी नहीं, जब कस्टमर को इसके जो बाजार है, जब उसको इसकी बेनिफिट समझ में आई
1: जी,
3: और जो किसान इसकी खेती करते थे पहले 200 किलो 400 किलो अपने सिर्फ खुद के कंजम्पशन के लिए खेती करते थे, जब उनको अभी उचित मूल्य मिलना शुरू हुआ तब वे उसको खेती करना बढ़ाना शुरू किया।
1: यानी उत्पादन भी ज्यादा है और मांग भी अब देखने को मिल
3: रहा है, मांग भी देखने को मिल रहा है
1: जी। बिल्कुल, बदलाव जो है वो यहाँ लगातार हमें देखने को मिल रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्रा आप भी इस बात से सहमत होंगे, अगर खासतौर से हम बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की, एक उद्देश्य जो इसमें रखे गए थे, अभी तक कहाँ तक लगता है आपको कि इसकी सार्थकता जो है योजना की वो अभी हो पाई है?
0: देखिए

0: हम तो ये कहेंगे ये बहुत बढ़ चढ़ के रिस्पांस है और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हमारे गाजियाबाद के बगल में जो कि सेंटर बगल में लोकेटेड है, पहले हमारे साथ 2 साल के पहले कोई किसान नहीं था, 20 किसान से चालू हुआ,
1: बिल्कुल
0: आज हमारे पास 10,000 किसान है। अब अगर आप जाएं मेरठ साइट तक तो 10,000 किसान है, 1,00,000 किसान हमारे पास इनडायरेक्ट जुड़ चुके हैं
1: जी।
0: और सबसे बड़ी मतलब प्राउड की बात यह है कि जितने भी हमारे ये रीजनल काउंसिल खोले गए हैं और भारत सरकार ने जितने लोगों को अपॉइंट किया है
1: जी,
0: इसके लिए सबसे बड़ी मतलब हमारा जो विजन है हमारे कृषि मंत्री जी का है, श्री राधा मोहन साहब ने, जो उन्होंने फर्स्ट डे से उन्होंने कहा था कि किसान को मेन बेनिफिट मिलना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: जो कि हम आज सोच रहे हैं, उन्होंने 2 साल पहले कहा था। और उनका यह व्यू था कि आप कुछ भी करें लेकिन किसान के पास में बेनिफिट जाए। आज की डेट में हम बता सकते हैं जो भी इस स्कीम के साथ जुड़ा है, स्कीम ना होने के बाद भी जैसा मैंने बताया कि लोगों को प्रमाणीकरण मिल रहा है, जो भी किसान जुड़ रहे हैं अगर वो ऑर्गेनिक में है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, तो उनको 10% मिनिमम मार्केट रेट से अधिक मिलता है
1: जी।
0: और अगर उनका जैविक पूरा उत्पाद है तो 30% तक उनको अकाउंट में पैसा जा रहा है।
1: बिल्कुल, जैविक उत्पाद की आपने यहां बात कही और हम अक्सर देखते हैं बाजार का जब रुख करते हैं तो जैविक उत्पाद जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन पहचान कैसे की जाए, क्योंकि उपभोक्ता तक जब तक असली एक जैविक उत्पाद नहीं पहुंचेगा शायद मांग जो है उतनी ज्यादा निकलकर नहीं आएगी, कैसे पहचान हो सकती है?
0: देखिए, प्रमाणीकरण बताया आपको, प्रमाणीकरण जैसे आपके मनु जी बैठे हुए हैं ये प्रमाणीकरण भी कर रहे हैं
1: जी,
0: ये प्रमाणीकरण के साथ साथ बाजार भी कर रहे हैं, तो प्रमाणीकरण के लिए ये लोग किसानों को जोड़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब उनका प्रोडक्ट, एक सबसे बड़ी चीज है ये सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज में दे रहे हैं कि किसान कैसे क्या उगाए, जैसे उन्होंने बताया कि पूरा क्लस्टर में कर रहे हैं, तो क्या है कि जब जैविक आपके मंच से कई प्रोग्राम हुए, बहुत सारे किसानों ने पूछा कि भाई हम अकेले कर रहे हैं और हमको बाजार नहीं मिल रही, यही देखा गया कि अकेले अगर आप कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी नहीं होती तो बाजार नहीं मिलता, तो वो उस समस्या को खत्म करने के लिए क्लस्टर में बेस में काम किया गया, तो किसानों को जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद जब वो किसान आता है इसमें तो उनको तो मालूम नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो उसकी सर्विसेज जीरो दे रहे हैं,
1: सारी जानकारी नहीं मान सकते किसान को दी जा रही है,
0: उस पे एक लोगो दिया गया जो भारत सरकार की तरफ से है, पीजीएस इंडिया, पीजीएस ग्रीन, अगर आप पहले साल दूसरे साल कर रहे हैं तो पीजीएस ग्रीन लगाते हैं उसके अंदर, तो उससे वो इंडिकेट करता है कि ये ऑर्गेनिक है, और उसके नीचे एक नंबर दिया जाता है, उसको यूआईडी नंबर हम लोग बोलते हैं, तो उस यूआईडी नंबर से कोई कंज्यूमर अगर देखना चाहे कि ये प्रोडक्ट कहां से आया है, किस किसान ने बेचा है, तो वो अपना पोर्टल पर जाके उसको चेक कर सकता है, तो ये सुविधा दी गई। इससे बड़ी चीज कहती है जब ये लोग प्रोडक्ट अपना पैकिंग करते हैं, करने के बाद मार्केट में भेज रहे हैं, उससे पहले हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बैच का ये लोग उसका रेजुअल टेस्टिंग करते हैं,
1: तमाम जो मानक है उनको देखा जाता है। मनु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान है, उनके यही जहन में बार बार आता है कि चलिए उत्पाद तैयार हो गया लेकिन मानकों पर वो खरा उतरे तभी आगे जाएगा, तो किस तरीके जो मानक हैं वो अभी तक तय किए गए हैं कि किसानों को ज्यादा मुश्किल भी ना हो और उनका जो उत्पाद है उसका भी अच्छा दाम उनको मिल सके?
2: देखिए, जब हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए पीकेवीवाई स्कीम में, पीजीएस का जब हम लोग कार्यक्रम शुरू किए तो शुरुआती दौर पर किसान बोले कि आप तो जैविक उत्पाद को ही खरीदेंगे
1: जी,
2: तो जब हमने उनको समझाया कि भारत सरकार जो ये योजना जो शुरू की, कृषि मंत्रालय द्वारा जो ये योजना है, ये योजना ऐसा नहीं है कि पहले साल की खेती को हम लोग नहीं खरीदेंगे
1: जी।
2: नॉर्मली अभी तक जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन चल रहा था, पहले जो जैविक सर्टिफिकेशन की जो क्रिया थी,
1: बिल्कुल,
2: उसमें क्या था कि 3 साल आपको वो जैविक पूरे खेती करनी होगी तभी जाके आपको प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप जैविक कर रहे हैं
1: जी।
2: तो पहले 2 साल की खेती का क्या हो, तो किसानों को पहले 2 साल उन्होंने मेहनत करा, जैविक
1: डर रहता था, शायद डर रहता उपज ना आ पाए,
2: जिसके वजह से वो डर से जैविक की तरफ अपने आप को ले उस तरफ झुकाव उनका नहीं होता था
1: जी।
2: लेकिन जब ये स्कीम आया, पीकेवीवाई का स्कीम आया, जिसमें पीजीएस ग्रीन जो सर अभी बोले हैं, पीजीएस इंडिया ग्रीन और पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये स्कीम के तहत में ऐसा है कि बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया कि पहला साल जो उपज होगा किसानों का
1: जी,
2: वो पहला साल का उपज में पीजीएस इंडिया ग्रीन दिया जाएगा, जहां रेसिडुअल टेस्टिंग होगी
1: जी।
2: और चूंकि पहले साल खेती होता है, जिस तरह से हम लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाई खाते हैं, जो इंसान के शरीर में एलोपैथिक दवाई खाने का जो आदत है, आदि है
1: जी,
2: तो रातों रात वो होम्योपैथिक में जा नहीं सकते, उसी तरह से हमारी जमीन जो है माता है
1: जी,
2: तो जमीन के अंदर में रातों रात इतने दिनों तक जो केमिकल द्वारा जमीन पे जो खेती की गई उसको अगर हम लोग जैविक की तरफ झुकाव की तरफ ले जाएंगे, तो हो सकता है उसके अंदर में केमिकल का अंश हो और अगर वो अंश हो तो हम लोग उसको पहले सर्टिफिकेशन करते हैं पीजीएस ग्रीन का
1: जी।
2: पहले साल का जो उत्पाद है वो अंश को जाते जाते ऐसा माना जाता है कि 3 साल लग जाता है, तो पहले 2 साल हम लोग उसको पीजीएस ग्रीन का सर्टिफिकेशन लोगों देते हैं ताकि किसानों को एटलीस्ट जो है उचित दाम मिले। तो नॉर्मली अभी आ जाता है हम लोग कितने दाम उस पर देंगे, जो नॉर्मल केमिकल जो कर रहा है किसान
1: जी,
2: जो उनका प्रोडक्ट है उसका जो दाम है मिनिमम उससे हम लोग 10-15%
1: बिल्कुल। मनुजी लेकिन जो दाम में फर्क हम देखते हैं ये किस वजह से आता है? एक हमारा साधारण उत्पाद हुआ, अगर जैविक उत्पाद है वहां हम देखते हैं जो बाजार में अभी शायद उपलब्ध है वहां एक दाम भी काफी ज्यादा उनके हमें लगते हैं।
2: सर इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है कि हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस
1: जी,
2: जितना ज्यादा उत्पाद बढ़ेगा उतना कम उसका दाम होगा। तो उसी तरह से वही थ्योरी अप्लाई होता है एग्रीकल्चर में
1: जी।
2: तो चूंकि उत्पाद जो है अभी जैविक उत्पाद अभी हम लोग 2 साल से ये जो नया परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान अभी इसके तरफ झुकाव किए हैं, अभी 125 करोड़ जनता में अगर 10 लाख किसान अभी तक जुड़े हैं
1: जी,
2: इतने कम समय में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये आगे जुड़ेगी। तो जितना ये किसान इसमें जुड़ेंगे और जितना ज्यादा इसका उत्पाद बढ़ेगा इसका दाम दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा जैविक प्रोडक्ट का।
1: बिल्कुल दाम कम होगा जैसा आपने कहा, और 10 लाख किसानों में से एक किसान हमारे साथ भी यहाँ मौजूद है। राणा जी आपसे हम समझना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की जैविक खेती की उसके किस तरीके परिणाम जो है अभी तक आपको मिले हैं?
3: मुकुल जी हमने जैविक खेती जब शुरुआत किया था तो सबसे पहले राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से जब संपर्क हुआ हमारा
1: जी,
3: तो वहां से हमने एक वेस्ट डिकम्पोजर नाम का प्रोडक्ट उपलब्ध करवाया था
1: जी,
3: और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस उनके द्वारा दी गई थी उसी के अनुसार उसे तैयार किया था। और
1: जी
3: उस खेती करने में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि आपका बीज संस्कारित होना चाहिए, आप अपनी फसल के साथ में फर्टिलाइजर डालते हो
1: जी,
3: आप अपनी जब फसल बढ़ती है तो उस पर स्प्रे करते हो पेस्टिसाइड और दूसरी चीजों को मारने के लिए, फिर उसके बाद में मंडी की तरफ मुंह करते हो
1: जी।
3: तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से हमको जो वेस्ट डिकम्पोजर मिला
1: जी,
3: उसमें हमको कई फायदे मिले। पहला फायदा तो हमको ये मिला कि जो बीज हम बोने जा रहे हैं
1: जी
3: उसी के द्वारा हम संस्कारित कर सकते हैं बीज को। दूसरी चीज जब हम फसल बो दिए तो जो आपको मैन्यूर चाहिए
1: जी,
3: जैसे कि खेतों में पुरानी जड़ रह जाती है या पुराना डीएपी पड़ा हुआ है या पुराना आपका गोबर पड़ा हुआ है, जो भी आपका वेस्ट पड़ा हुआ है, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बहुत प्रचुर मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध है। और इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि जो भी आपका वेस्ट है उसको बहुत जल्दी डिकम्पोज करता है और उसको एक ऑर्गेनिक मैन्यूर में कन्वर्ट कर देता है।
1: बिल्कुल ये तमाम फायदे हम मान सकते हैं जो उत्पाद देखिए लगातार तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही उत्पाद हैं जो बाजार की तरफ जाते हैं और इनसे काफी मुनाफा हमारे किसानों को आगे मिल सकता है। आगे भी हम यहाँ जानेंगे और किस तरीके से हमारे किसान जो हैं उनको मुनाफा हो सकता है, कैसे उनका उत्पाद बाजार तक पहुंचेगा और कहाँ उनको संभावनाएं अपार दिखाई देंगी। लेकिन
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
5: किसान साथियों चर्चाओं का सिलसिला यूं ही बना रहेगा, यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः मुलाकात होगी, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के साथ झाबुआ की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनू रेडियो आपड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप लगातार सुन रहे हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे जैविक खेती करके हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। किसान साथियों, चर्चा का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इसमें कुछ और एक्सपर्ट की राय।
2: पर अभी तक आपने जाना किस तरीके एक शुरुआत जो है वो हमारे किसान कर सकते हैं, लेकिन और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट।
3: जैविक खेती यानी प्रकृति के संग जीना। जैविक खेती की ओर आज पूरी दुनिया की नजर है। यूरोप में तो जैविक उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हालांकि किस कारण से जैविक उत्पादों के दाम अधिक हैं, ये थोड़ा समझ से परे है, क्योंकि कई मामलों में जैविक खेती से उपज पहले से अधिक हो रही है। जैविक खेती के द्वारा ही विश्व में धान और आलू की प्रति एकड़ सबसे अधिक उपज लेने का रिकॉर्ड भारत में ही बना है। फिर भी जैविक के खिलाफ प्रचार भी काफी हो रहा है, जिसमें उत्पादन में गिरावट आना प्रमुख है। भारत में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं। इनकी खेती की लागत में कमी करने में जैविक या प्राकृतिक कृषि की अहम भूमिका है। मिश्रित खेती, उचित दूरी, दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, केंचुआ व गोबर खाद, जैविक कीटनाशी, कीटों का जैव नियंत्रण आदि किसानों के बीच जिस तेजी से लोकप्रिय होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं।
2: इस रिपोर्ट में आपने जाना कि कैसे जो हमारे किसान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां उनके सामने भी हैं और वही चुनौती कहीं ना कहीं हमारा जो कृषि मंत्रालय उसके सामने भी रही होगी। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब तक हमने बात की कि अगर उत्पाद है कैसे वो बाजार तक पहुंचेगा, लेकिन वो किसान जिसकी शुरुआत करना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो किसान है एक डर उनमें शुरू में रहता है, लेकिन अब अगर आपकी स्थिति की हम बात करें तो क्या लगता है वो जो डर है सभी किसानों के जहन से अब निकल चुका है, अभी भी जो किसान है थोड़ा सा एक डर बाकी है उनमें कि आखिर वो अगर जैविक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है?
4: नहीं, अब काफी हद तक इसमें डर कम हो गया, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि अब डिमांड बढ़ने लगी है
2: जी।
4: तो कंज्यूमर हमारा है वो जैविक उत्पाद ढूंढना शुरू कर दिया, और किसानों को भी मालूम है कि हम अगर ये केमिकल खेती करते हैं तो इसके नुकसान काफी हैं, उनकी सेहत खुद को नुकसान हो रहा है, तो इस सब उनके में जागरूकता है। अगर जैसे ही उनको कहीं लिंक मिलता है, सोर्स मिलता है, तो वो इसके तरफ झुकाव हो जाता है
2: बिल्कुल। लेकिन जो किसान इसको करना चाहते हैं जैसे आप भी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा, या एक मानकों की अगर हम बात करते हैं कौन से वो मानक हैं जब भी किसान को अगर वो चाह रहे हैं कि अब वो जैविक खेती की शुरुआत करें?
4: जी देखिए, मानक इसमें अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है
2: जी,
4: तो ये हमारे पहले पास जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन था, अभी पीजीएस और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दोनों को एक कर दिया गया
2: जी।
4: तो एक्सपोर्ट के लिए अलग है और हमारा जो डोमेस्टिक के लिए पीजीएस कर दिया गया, लेकिन दोनों के जो स्टैंडर्ड है वो एक कर दिए गए
2: जी।
4: अभी एफएसएसआई से मीटिंग भी हुई थी, तो एफएसएसआई भी इसमें एग्री की है, और इसके बहुत जल्दी आपको नॉर्म्स दिखाई देंगे कि अब आगे आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर एक एफएसएसआई का आपका लोगो होगा, साथ में पीजीएस या थर्ड पार्टी का एक लोगो साथ में होगा
2: जी।
4: जो कि एफएसएसआई का काम क्या होगा कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट, आपको आप भी पहले रेस कर चुके हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो जुनून है कि नहीं, उसमें कुछ केमिकल है कि नहीं, वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं
2: जी।
4: ये सब दुविधा थी, तो उसको खत्म करने के लिए एफएसआई काफी आगे आ गई है, और वो सैंपल लेके टेस्टिंग करेंगे अपने लैब में, और उसके बाद ही प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकता रहेगा
2: बिल्कुल।
4: तो इससे क्या है, कंज्यूमर में अवेयरनेस आई, कंज्यूमर में एक फेथ जमेगा, और डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, तो किसान जो पहले नहीं चाहता था अब वो जुड़ना शुरू हो गया है। और जो हम लोग एजुकेट करते हैं कि आप जो जैविक खेती करें, पहले था कि जैविक खेती कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, हम लोग उसमें बोलते हैं कि नहीं, आप साइंटिफिक मेथड है, जैसे राणा जी ने बताया कि ये डिकम्पोजर यूज करिए। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपकी जो इनपुट है उसकी कॉस्ट कैसे कम की जाए। जब तक आप इनपुट कॉस्ट नहीं कम कर रहे और पूरे इनपुट नहीं दे पाएंगे फसल को, तब तक आपकी फसल का उत्पादन अच्छा नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसमें देखा गया है कि उत्पादन में कमी बहुत कम रह जाती है। और दूसरा जो है, जो हम लोग अब जो दे रहे हैं कि एक फसल चक्र पूरे साल भर का, उसमें करीब 11 क्रॉप ले रहे हैं, तो 11 क्रॉप लेने से क्या है कि जो हर ग्यारह क्रॉप का एक तो आपको उत्पाद मिल रहा है और उससे आपका बाजार भी मिल रहा है, साथ साथ आपकी जो इनकम है वो करीब चार लाख के आसपास पर एकड़ पड़ जाती है
2: जी।
4: तो ये अगर आप कंपेयर करें उससे केमिकल से तो करीब चार गुना है
2: जी।
4: तो ये इसको देखते हुए किसान काफी जुड़ रहा है और इस इनको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोगों ने कुछ विलेज अडॉप्ट कर रखे हैं
2: जी।
4: तो किसान वहां आते हैं, रुकते हैं, 20-25 दिन को ट्रेनिंग दी जाती है,
2: प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है
4: और प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि कैसे कर रहे हैं। हमारे कैंपस में भी हम लोग अपना लगाते हैं, वहां भी दिखाते हैं और जहां कहीं भी किसान चाहता है ग्रुप में अगर है तो वहां हम अपने टीम भेजते हैं, वो जाके वहां पर सिखाते हैं कैसे आप इसको खेती करें। तो ये सब चल रहे और ये भी तय बात है कि हमारे 70% किसान है तो पहुंच हमारी इतनी नहीं है, लेकिन अब केवी केस को भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है, केवी केस को भी देने आ रही है कि आप एक विलेज अडॉप्ट करें,
2: यानी धीरे धीरे दायरा को बढ़ा
4: दायरा बढ़ा रहे हैं और ये मतलब ये हमारे मंत्रालय से ये सब पॉलिसी बन चुकी है
2: जी।
4: तो बहुत जल्दी आपके हर केवी के जो 600 से ऊपर केवी के हैं वहां पर एक आपका मॉडल फॉर्म रहेगा जहां पर वो दिखाएंगे कैसे आप ऑर्गेनिक करें, तो इससे स्प्रेड होगा, किसानों को भी इन्वॉल्व किया जाए, जो हमारे किसान ऑलरेडी 10-15 साल से किसान खेती कर रहे हैं और कैसे वो उत्पाद अधिक ले रहे हैं उनके उनके उनको भी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है,
2: उनके अनुभव को भी साझा किया जाएगा,
4: वित्तीय सहायता का भी प्रावधान आगे किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो लोकल किसान उनको फायदा मिलेगा, बाहर का भी मिलेगा और इससे बड़ी चीज आ रही है कि जो आपका बाजारीकरण जो आ रहा है ये बहुत बड़े स्केल में आ रहा है। जैसे हमारे हमारे रेल मंत्री जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनसे भी हमारी एक बारी मीटिंग में उनसे अनुरोध किया गया
2: जी।
4: वो भी उन्होंने कंसर्न किया कि हम कोशिश करते हैं कि इसको जैविक थाली इसमें हम
2: बिल्कुल एक नई शुरुआत जो है, नई पहल ऐसे की जा सकती है।
4: मिड डे मील है, अब आपको मालूम है बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में उसमें जैविक का ही वो खाना परोस रहे हैं, उनको मालूम है कि डॉक्टरों को भी मालूम है, भी सजेस्ट करते हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक है और इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको मालूम होगा कि आपके हमारे कृषि भवन में भी एक शॉप खोली गई, इसी तरह से झारखंड में भी कृषि
2: यानी अलग अलग जगहों पर देखिए अब जो दुकानें हैं जहां पर सिर्फ आपको जैविक उत्पाद मिलेगा वो भी प्रमाणिक जैविक उत्पाद है वो आपको वहां मिल सकता है और उसकी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसा कि यहां कृष्णचंद्र जी हमें बता रहे हैं कि उपभोक्ता जो है बढ़ रहे हैं, मांग क्योंकि बढ़ रही है, लेकिन यहां पर मनोज चौधरी जी आपसे हम जानना चाहेंगे मांग की हम बात करते हैं, मांग बढ़ रही है, उत्पादन भी आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ जब ये पूरी प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ बाजार को देखा जाता है या जो किसान है वो बाकायदा बताया भी जाता है कि अगर ये उत्पाद उसका उत्पादन लेते हैं तो उसमें ज्यादा मुनाफा उनको होगा, यानी पूरी जानकारी उनको दी जाए कि किससे आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है और उसी उत्पाद को आगे फिर लाया जाए।
5: पहले तो मल्टी क्रॉपिंग जो सिस्टम है, जैसे एक ही जमीन पे हम लोग मल्टी क्रॉपिंग करें
2: जी,
5: एक साथ इकट्ठे जो मल्टी क्रॉप जब आता है तो हमें क्या है एक साथ में एक ही सब तरह के फलन मिलते हैं
2: जी।
5: और जो बाजार का डिमांड है जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमें मिले टाइम टू टाइम। कुछ जैसे अपने तीन सेगमेंट है, हॉर्टिकल्चर सेगमेंट है
2: जी
5: और सीरियल्स एक सेगमेंट है, तो हॉर्टिकल्चर और फिशरी एंड पोल्ट्री वो अलग सेगमेंट है। बाजार का यही तीन डिमांड है, इसी तीन डिमांड पे बाजार पूरा चल रहा है
2: जी।
5: तो अपना पीजीएस जो है हॉर्टिकल्चर और सीरियल्स पे ही अभी चल रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है वो ज्यादा डे टू डे में ज्यादा इफेक्ट ये चल रहा है
2: जी।
5: तो अब इसकी लॉन्जिबिलिटी कितने
2: फल और सब्जियां जो है उनको ज्यादा मान सकते हैं जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ दोनों ये बता रहे हैं कि किसानों को लगातार बताया जाता है कि कई सारी फसलें आपको लेनी है, लेकिन बतौर एक किसान ये थोड़ा सा मुश्किल भरा नहीं होता कि एक साथ हमें अगर कई फसलें लेनी है कैसे हम निर्भर करेंगे, कैसे उसकी उपज आएगी हमारे पास और कितना मुनाफा उससे हमको होगा?
6: शुरुआती दौर में अगर देखें तो किसान को ऐसा लगता है कि ये तो एक बड़ी समस्या है, इतना तो हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम भी आज की तारीख में जब किसानों के पास जाते हैं
2: जी,
6: जब उसे कागज पर समझाते हैं तो किसान बस कागज को देखते ही बोलता है इसमें तो बड़ी मेहनत है
2: जी,
6: ये तो हमारे से नहीं हो पाएगा। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है
2: जी।
6: सबसे पहले तो देखो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जो हमने प्रोडक्ट लिया था
2: जी,
6: मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सभी किसानों को भी ये दिखा देना चाहता हूँ
2: जी।
6: ये वो प्रोडक्ट है जो वेस्ट डिकम्पोजर है,
2: बिल्कुल।
6: इसको तैयार करने का तरीका बहुत सिंपल है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी भर लीजिए
2: जी,
6: 2 किलो गुड़ या सीरा है या कोई भी दूसरी स्वीट जैगरी है कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए
2: जी,
6: और उसमें इस बोतल को लकड़ी से खरोंच कर डाल दीजिए
2: जी,
6: आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी काम नहीं है किसान के लिए, और किसान चाहे तो सुबह शाम एक दो बार इसको घुमा सकता है
2: जी।
6: और 7 दिन में गर्मी के दिनों में ये तैयार हो जाता है, और विंटर सीजन में थोड़ा सा समय लेता है क्योंकि बैक्टीरिया है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में समय लेता है
2: जी।
6: इसके मात्र यूज से आपकी जमीन सॉफ्ट हो जाती है
2: जी।
6: कई बार आपने देखा होगा किसान को बोला जाता है जिप्सम डाल दीजिए, कैल्शियम सल्फेट W2H2 उसमें डाल दीजिए
2: जी।
6: तो जब आपकी जमीन वेस्ट डिकम्पोजर से सॉफ्ट हो रही है तो उस चीज की जो आपकी परचेज है वो घट जाती है
2: जी।
6: दूसरी चीज आपकी पोरोसिटी ऑफ द लैंड
2: जी
6: वो बढ़ जाती है, केंचुआ बहुत जल्दी आता है इसके यूज करने से, और केंचुआ जब एक बार आ जाता है खेती के अंदर तो आप देखिए कि उसके अंदर वाटर पेनिट्रेशन क्वालिटी और उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ जाता है
2: जी।
6: जमीन के अंदर ऑटोमेटिक ही एक अंडर वाटर अंडरग्राउंड रिजर्वायर का रूप ले लेता है, और आपकी फसल को सूखे से लड़ने की क्षमता इस प्रोडक्ट से आ जाती है।
2: यानी ये तमाम फायदे पहुंच सकते हैं ना सिर्फ किसान बल्कि देखिए जो हमारी मृदा है जहां से हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें मुनाफा हमें मिले, तो ये तमाम फायदे हो सकते हैं। कृष्णचंद्रा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर डीकम्पोजर की फिलहाल हम यहाँ बात करें तो किसान जो है भारी संख्या में पहुंचते भी होंगे ना सिर्फ प्रशिक्षण के लिए, लेकिन इस तरह के जो उत्पाद का क्या एक जो मूल्य है वो निर्धारित किया गया है?
4: तो एक प्रमोशन के लिए किया गया था एक्चुअली, इसकी भी एक स्टोरी थी कि पहले हम लोग डास्टी जैविक खेती केंद्र इसमें इन्वॉल्व था 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये हम लोग बैक्टीरिया या फंगस बनाते थे ये खाली इंडस्ट्री के लिए थे
2: जी।
4: तो ये नई सरकार आने के बाद बोला गया कि भाई आप किसान के लिए क्या कर रहे हैं, तब इसको डेवलप किया गया, डेवलप पहले से था लेकिन और उसको मॉडिफाई किया गया, ये ध्यान रखा गया कि इसको जो है किसान अपने आप मल्टीप्लाई करे, तो यही एक टारगेट था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि अच्छी क्वालिटी का हमारे पास मैन्योर नहीं है, जानवर इतने हैं नहीं, जो वेस्ट है उसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए ये बनाया गया। तो देखा गया कि 30 दिन के अंदर बिना किसी मैनेजमेंट के, राणा जी जैसे बता रहे हैं तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है और मतलब इन्होंने बहुत काम किया, 6 महीने से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना काम इन्होंने गांव गांव जाके किया है वो मतलब एक बहुत ही मतलब नोटिसेबल है
2: जी।
4: और इसके साथ जो हमारी आज की डेट में हमें करीब 30,000 बोतल किसानों को दी है, एक ही बोतल हम एक गांव में देते हैं ताकि उससे आप किसान आसपास ले लें। खूबी इसमें यह है कि 20 रुपए रखा गया है, एक बोतल लेने के बाद आप सालों साल इसको यूज कीजिए, जैसे बरसाना में है गौशाला है वहां पर उन्होंने दिया, तो उन्होंने 1,000 टन इससे एक बोतल से बना दिया, तो कॉस्ट आपकी अगर पर केजी देखें तो 0.001 पैसा आती है, तो कॉस्ट कुछ नहीं है। और इससे कॉस्ट आपका किसान जो तेलंगाना में है इसको स्प्रे करता है
2: जी,
4: तो वो कॉटन पे स्प्रे कर रहा है, सब हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर लेकिन वो स्प्रे कर रहा है, उसको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से आपके महाराष्ट्र में है, ऑल ओवर इंडिया इसमें मतलब सारा इसमें जुड़े हुए हैं
2: जी,
4: और हर एक किसान को आज तक अभी कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई कि इससे काम नहीं कर रहा है, और किसान जुड़ते चले जा रहे हैं, और हम लोग खाली एजुकेट करते हैं कि आप इसको अपने आप बनाएं अपने आप कर दें, यही एक हमारा मोटो रहा है कि आप इसको जितना से अधिक से यूज करें, तो उसके फायदे अनेक हैं, और एक बार जो किसान यूज करेगा वो अपने आप इसको छोड़ेगा नहीं।
7: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: कि जब बात आती है तो यहाँ पर मनु जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं वो खेती करते हैं, जैसा आपने बताया था पीजीए सिस्टम के जरिए भी 1 से 3 साल का जो समय है उसके बाद एक अच्छा उत्पाद हम कह सकते हैं वो हमारे पास होता है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जल्दी से जो उनका उत्पाद है वो बाजार में जाए उसके बाद ही, क्योंकि उनको जब तक कुछ आय नहीं मिलेगी वो नया कुछ शुरू नहीं कर सकते, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान रखा गया है? जैसा आपने कहा कि शुरुआत से हम कोशिश करते हैं जो उनका उत्पाद है उसको हम लेते हैं फिर बाजार में पहुंचाते हैं।
5: पीजीए सिस्टम के अंदर में पहले तो किसानों का किस तरह से हम लोग इनकम जनरेट करें
2: जी,
5: हम उस चर्चा पे थोड़ा आए। सबसे पहले हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इनपुट कैसे ऑन फार्म इनपुट पे कम से कम कॉस्ट में उनके खर्चे, किसान जब वो खेती कर रहे हैं तो उनका कैसे कम से कम लागत में खेती ज्यादा से ज्यादा हो
2: जी,
5: तो वहां उनका थोड़ा सा बचत
2: जी।
5: दूसरा जब हम लोग बाजार तक मंडी तक उनके फलन को लेके आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब क्लस्टर जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये क्लस्टर के अंदर ही पैकेजिंग का प्रावधान कर रहे हैं
2: जी।
5: तो पैकेजिंग जब हम उनसे करवाते हैं तो हम उस पैकेजिंग का लेबर कॉस्ट भी हम किसानों को देते हैं
2: जी,
5: वो भी उनका एक एडिशनल इनकम,
2: वो भी आय का जरिया मान,
5: एक आय का जरिया मान सकते हैं
2: जी।
5: अब जो किसान है उनके घर में और भी परिवार सदस्य हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पैकेजिंग करने के लिए
2: जी, बिल्कुल।
5: तो हमारे तरफ से पैकेजिंग चला जाता है, ब्रांडिंग, जैसे अब हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल का जो प्रोडक्ट है प्रकृति
2: जी,
5: तो वो लोगो ब्रांड हम सब प्रकृति का किसानों के पास भेज दिए, वो वहीं पे अपना लोगो लगाए, स्टिकर लगाए,
2: तो
5: वहां से उनको एक इनकम जनरेट हुआ, प्लस उनके फलन का जो दाम है वो उनको उचित दाम मिला
2: जी।
5: तो बाजारी का बाजार तक जाते जाते हम जब किसान से परचेस करें तो किसानों को सबसे पहले इनपुट में कम लगा, लागत
2: जी, लागत कम हो जाती,
5: लागत कम लगा, उससे उनकी बचत हुई। दूसरा उनको पैकेजिंग के जरिए जो एडिशनल उनको जो बेनिफिट है जो हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से उनको इनकम जनरेट हुआ
2: बिल्कुल।
5: तीसरा जो उनके फलन है उसको हम लोग जब उचित दाम दे रहे हैं जो नॉर्मल उत्पाद से, नॉर्मल जब केमिकल में खेती करते उससे थोड़ा ज्यादा ही है उनको परसेंटेज
2: जी,
5: तो वहां इनको बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं तीन सर्कल्स है, तीन तरीके से उनको पैसा मिलता है
2: जी।
5: चौथा जब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग पे, अभी क्लस्टर में एक प्रोसेसिंग प्लांट हम लोग लगा दिए तो प्रोसेसिंग प्लांट भी वहीं चली, वहां से भी जो प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए हमें जो लेबर चाहिए
2: जी,
5: उसमें कुछ वहां इनको एडिशनल बेनिफिट
2: बिल्कुल।
5: तो इस तरह का ये जो एक समीकरण है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं किसान के इनकम को
2: आय का जरिया, आय का जरिया बन सकता है
5: का आने वाला दिन में। ये पूरा जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकल्प को किया गया
2: जी,
5: जहाँ पे हम लोग एक गांव में सभी कुछ पूरे सेंटर को देख रहे हैं आने वाले दिन में
2: जी,
5: पैकेजिंग सेंटर, प्रोसेसिंग सेंटर, और वहीं हमारा लॉजिस्टिक गाड़ी चली गई और हम लोग लेके। लेकिन अब जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है, अब उसका डिमांड, कोई सब्जी अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में है और उसका डिमांड आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में सूखा पड़ा
2: जी,
5: तो हम सब्जी अगर बंगाल से महाराष्ट्र में दे सके और सूखा पड़ गया, कभी कभार होता ही है, तो ये सब्जी को कैसे लेके कैरी करें ट्रेन में या रोड में? तो अगर ट्रेन में हमें रेफ्रिजरेटेड जगह मिलता है तो हम लोग उसमें कैरी करें तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा रहेगी
2: जी,
5: तो जितना जल्दी जल्दी पहुंचे
2: उत्पाद है वो खराब नहीं होगा,
5: खराब नहीं।
2: लेकिन अगर उत्पादों की हम बात करते हैं मनु जी, कौन कौन से उत्पाद हैं जो तैयार किए जा रहे हैं या क्या क्या विकल्प हम ये कह सकते हैं किसानों के सामने है अगर वो इसमें अपने उत्पाद तैयार करना चाहते हैं तो?
5: देखिए उत्पाद में तो मैं अपने पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और जो हम लोग अपने सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर पे ही बात करते हैं
2: जी।
5: तो जहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन है और सब्जियों का प्रोडक्शन है तो इसी का सबसे ज्यादा उत्पाद होता है। जो किसान जो उत्पाद कर रहा है जिसमें वो बेहतर है उसी वही वो कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोलते कुछ अलग करो
2: जी,
5: क्योंकि उन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही खेती करते आए हैं
2: बिल्कुल,
5: और जिसमें वो एक्सपर्ट है तो वही वो कर पाए जो वो करते हैं, क्योंकि उनको क्रॉपिंग पैटर्न पता है उस प्रोडक्ट के बारे में, और हमें बाजार में वही प्रोडक्ट को भेजना है जो वो खेती कर रहे हैं, बस उसमें बेहतर इनपुट दे, जैविक इनपुट,
2: कैसे उसकी जो गुणवत्ता है उसको और बढ़ाया जाए, मूल्य संवर्धन जो है उसमें किया जा सके। कृष्णचंद्र जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ मनु जी ने हमें बताया और हम ये भी मान सकते हैं कि वो किसान जो मतलब ग्रामीण हम कह सकते हैं उनको जिनके पास शायद भूमि नहीं है कृषि के लिए, वो भी अगर इस तरह की इकाइयां लगती हैं प्रसंस्करण की इकाई है इसके जरिए उनको भी इकाई का जरिया मिल सकता है?
4: बिल्कुल मिल रहा है, और जैसा इन्होंने बताया वेस्ट बंगाल इस तरह से आपके साउथ में जाए केरला है, तमिलनाडु है, वहां पर जो स्पाइसिस वगैरह हो रहा है वहां का जो प्रोडक्ट है, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रोडक्ट है वो उन्होंने इंटरलिंक कर दिया है
2: जी।
4: तो ये जितने हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं एक दूसरे से जुड़ गए, तो जो इनके पास डिमांड है इनके पास से दूसरे के भेजते हैं, दूसरे का इनके पास आता है, तो एक इस तरह से आदान प्रदान चालू हुआ है। तो अभी तक क्या है कि उत्पाद नहीं था, अब ये इस साल से अभी नवंबर से इन्होंने चालू किया, तो आप देखेंगे अक्रॉस द इंडिया हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा, स्पाइसिस वहां हो रहा है तो वहां से यहां आएगा, तो आपको वहां केरला का भी मटेरियल दिखाई देगा, तमिलनाडु भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट का भी मटेरियल देगा, तो सारे के सारे एक साथ आपको हर शॉप पे दिखाई देंगे।
2: बिल्कुल
4: ये ऑलरेडी चालू हो चुका है और वो बहुत जल्दी आपको मार्केट में इसके उपलब्धि
2: उपलब्धता हो सकेगी। साथ ही साथ यहाँ राणा जी आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, उत्पाद आपने बताया, डिकम्पोजर की भी आपने बात की, इससे क्या फायदे हुए? लेकिन अगर हम बात करते हैं आने वाले समय में, अगर एक किसान की हम बात करते हैं किस तरह का बदलाव वो चाहता है कि जैविक खेती जो है वो तो कर रहे हैं लेकिन बदलाव कैसा है जिससे और आसानी उसको हो सके और ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती करें और उसके बाद अपने उत्पाद को बेच सकें?
8: आज की तारीख में मुगल जी किसान के सामने एक समस्या रहती है कि उसको आमदनी का जरिया उसका घटता जा रहा है
2: जी,
8: और उसके खर्चे खेती पर बढ़ते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के द्वारा जो हमको खेती से संबंधित जो भी वेस्ट डिकम्पोजर है और दूसरे सॉइल हेल्थ रिवाइवल, और डॉक्टर साहब से आप बीच में पूछ भी सकते हैं कि और भी इस पर ये काम कर रहे हैं, तो इन चीजों को लेकर के जब हम खेती करना शुरू करते हैं तो हमारी खेती में जो फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड का और दूसरी चीजों का खर्चा है ये ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाता है
2: जी,
8: तो ये हमारी एक बचत हो जाती है।
2: बिल्कुल।
8: दूसरी चीज किसान सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन घट जाएगा, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम से जब हम खेती कर रहे हैं हम देखते हैं कि कहीं पर भी प्रोडक्शन घटता नहीं है
2: जी,
8: कहीं पर भी प्रोडक्शन नहीं घटता है, और बल्कि और ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है कहने के लिए, कई गुना प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है
2: जी। ये आपका निजी अनुभव है? यानी
8: मेरा अपना अनुभव है
2: जी।
8: दूसरे जो भी प्रोडक्शन आ रहा है वो ऑर्गेनिक आ रहा है, और समाज को भी चाहिए, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको कंज्यूमर के रूप में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल जाता है, किसान को उसका अच्छा दाम मिल जाएगा, तो इससे अच्छा ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जो काम चल रहा है
2: जी।
8: इसमें आजकल आप देखते हो कि पराली को जलाना बहुत एक समस्या के रूप में खड़ा हो रहा है
2: जी।
8: तो ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है
2: जी,
8: अपने आप में जो भी आपका रेसिड्यू बचता है उसको बहुत 15-20 दिन में ही गला करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है,
2: फसल अवशेष जो है उसके लिए भी ये काफी लाभदायक
8: है। जी हाँ, उसको कन्वर्ट कर देता है
2: जी।
8: और जो आप बाहर से फर्टिलाइजर खरीदते हो उस सब की पूर्ति इसी के अंदर हो जाती है, जमीन सॉफ्ट हो जाती है, आपको प्रोडक्शन अच्छा आता है
2: जी।
8: आलू की फसल में देखें कि भाई पोटाश डाल दो और दूसरी चीजें डाल दो, या इस पे अर्ली ब्लाइट आएगा, लेट ब्लाइट आएगा, कई बार किसान इन चीजों को समझ नहीं पाता है। ये सिंपल फंडा है, फसल अगर पानी देना है तो इसको एक एकड़ में 200 लीटर का ड्रम बनता है उसे पानी के साथ चलाइए। दूसरे आपको स्प्रे करना है तो 10% 20% से लेकर के इसका स्प्रे कीजिए
2: जी।
8: तीसरे आपका जो काव डंग्स है, दूसरा वेस्ट है, उसका मैन्यूर बनाना है तो 40 दिन में पूरी तरह से इसको मैन्यूर बना के कन्वर्ट करके आपके हाथ में देता है, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान एकमात्र इस बोतल से होता है
2: जी।
8: और आप इससे कितना ही आप खेती कर सकते हो, 1000 बीघे तक खेती आप कर सकते हो।
2: बिल्कुल, ये तमाम फायदे इसके हम मान सकते हैं, और इसका लाभ देखिए जो किसान है उनको सीधे तौर पर मिल भी रहा है। डॉक्टर कृष्णचंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बदलाव की, तो आने वाले समय की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हमें नजर आएगी जैविक खेती की, और उसके बाद जैविक बाजार की भी हम बात करते हैं, सिक्किम के बाद और कितने राज्य हैं जो इस श्रेणी में आने वाले हैं?
4: देखिए, इसमें मूवमेंट तो हर जगह, सारे स्टेट्स ने कुछ न कुछ ऑर्गेनिक ऊपर शुरू कर दिया
2: जी।
4: तालुकाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने इस पे ऊपर काम चालू हो गया। और जहां तक ये राणा जी बता रहे हैं, तो ये आपको इस समय शायद देखने में लग रहा हो कि एक बोतल में क्या क्या गुण है
2: जी।
4: तो ये बिल्कुल जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बोल रहे हैं
2: जी।
4: और इसमें ऐड करना चाहेंगे कि कोई भी किसान, कोई भी साइंटिस्ट इसको लेके यूज करके देख ले
2: जी,
4: उसको रिजल्ट बहुत मिलेगा। और इसके साथ साथ जो जिन्होंने बताया ना सॉइल रिवाइवल की बात, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो मेन क्या समस्या आपको मालूम है कि इंटरनेशनली भी, अपना नेशनली भी जमीन के लिए काफी काम चल रहा है, जमीन हमारी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए उन्होंने रिवाइवल बनाया। तो रिवाइवल इसने नाम रखा है कि जमीन जो खराब हो गई है, अगर आप 6 महीने उसको आप पानी के साथ डालते रहे, 6 महीने बाद आपकी पूरी जमीन चेंज हो जाएगी। अब ये मतलब अभी आपको लग रहा है थ्योरेटिकल, लेकिन इसको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे
2: जी।
4: आपके
2: योगात्मक रूप से अगर हम माने तो हो सकता है,
4: दिखाएंगे या है
2: जी।
4: और वो हम लोग चालू कर दिए काम, और कुछ किसानों के खेत में ऑलरेडी हमने किया हुआ, पूरी जमीन चेंज हो गई। इसके साथ साथ हम और एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जब स्प्रे करेंगे तो प्लांट की सारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी हो जाएगी। ये सब आने वाले, इनमें सब में खूबी है कि ये सब चीजें आप एक बोतल लेंगे, फिर आप सालों साल उसको आप बनाते रहिए, आप 10,000 लीटर, 20,000 लीटर, 1,000, 1,00,000 लीटर तक बनाइए, दोबारा आपको पास हमारे पास आने जरूरत नहीं है, आप खुद प्रोडक्शन कीजिए। तो टेक्निक ऐसी डेवलप की जाएगी कि किसान अपने आप बनाए। तो ये आने वाले दिनों में एक रिवोल्यूशन होगा, और ये कहना मतलब हम अतिशयोक्ति नहीं समझते कि किसानों को जो आगे बेनिफिट मिलने वाला है, एक तो ये इनपुट के जरिए, दूसरा मार्केट के जरिए, और तीसरा जो उनको आगे इनकम होने वाली है, वो मुझे लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है 2022 तक डबल की है, तो हमें लगता है 3 गुने 4 गुने हम लोग जैविक

0: जरिए कर सकते हैं
1: जी।
0: और उसका लॉजिक भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी जो है 60% जो लैंड है
1: जी
0: स्ट्रेस में है, आपकी रेनफेड एरिया है। तो रेनफेड एरिया अगर हम देखते हैं तो 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड हमारी इसके अंदर में है, जहां की उत्पादन आपका 30% कम है
1: जी।
0: अगर आप जैविक अडॉप्ट करते हैं तो 22% आपका उत्पादन बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो उससे आपकी जो फूड सिक्योरिटी की बात होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी।
1: बिल्कुल, खाद्य सुरक्षा की बात जो है उसकी भी सार्थकता
0: और क्वालिटी, आप जो लेते हैं इतनी बड़ी थाली ले रहे हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके केमिकल्स पड़े हुए हैं, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं है। जब आप ऑर्गेनिक लेंगे छोटी थाली लेंगे, लेकिन उसमें हर चीज आपके है, कार्बोहाइड्रेट एलिमेंट सब कुछ आपको प्रेजेंट है जो आपकी बॉडी के लिए सही है। और ये भी तय है कि अगर आप जैविक उत्पाद को खाली प्योर उत्पाद खाएं, 6 महीने बाद आप अपनी बॉडी में चेंज देखेंगे
1: जी।
0: जो आपको शुगर की बीमारी हो रही है, बीपी हाई है, लो है, आपका जो तरह तरह की बीमारियां हो रही है, ये सब इससे निवारण है।
1: बिल्कुल डॉक्टर चंद्रा, जो किसान है वो तो आपने बताया कैसे जुड़ेंगे, लेकिन उपभोक्ता भी है,
0: उपभोक्ता के लिए भी, मतलब
1: किसानों
0: के लिए भी है, उपभोक्ता के लिए। और सबसे बड़ी बात अपनी जमीन को बचाना है तो आपको जैविक के ही तरफ जाना है। अगर आगे फ्यूचर में एनवायरमेंट के लिए, आपके सॉइल के लिए, हर चीज के लिए सोल्यूशन आपका जैविक है। और इसके साथ साथ

0: बाजार के लिए हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया देखिए हमने करीब 250 रीजनल काउंसिल गवर्नमेंट को बना रखा है जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सारे हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में हमारे ट्रेडर्स जुड़े हुए हैं, प्राइवेट्स वाले जुड़े हुए हैं, करीब 44 ट्रेडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। तो गवर्नमेंट से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ट्रेडर्स से भी ले सकते हैं। ट्रेडर्स से लेने में फायदा ये है कि आपको डायरेक्ट मार्केट मिल जाती है, ये लोग एश्योर कर देते हैं कि डायरेक्ट मार्केट है और आपको बाकी जो सर्विसेज हैं इनके थ्रू मिल सकती है। तो हर एक स्टेट में आपके पास रीजनल काउंसिल जुड़ा हुआ है, पोर्टल पर जाइए आपका pgsindia.gov.in, उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी,
1: इस पर सारी जानकारी जो है
0: सारी जानकारी है और उसको उनको आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी आपको प्रोवाइड करेंगे।
1: बिल्कुल तमाम जानकारी देखिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी और कोशिश यही कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो इससे जुड़ सकें। साथ ही बाजार की जब बात कही जाती है तो ये जरूरी हो जाता है किसान उस बाजार को समझे और साथ ही साथ उस बाजार के पीछे जो अर्थशास्त्र यानी कैसे उनको मुनाफा मिल सकता है उसकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जा सके। और वही जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं और आज भी हम उम्मीद यही करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उन्होंने इस बात को और बेहतर ढंग से जाना होगा कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं उससे उत्पाद जो आपका तैयार होता है कैसे आप उसको बाजार में पहुंचाएंगे। और यही जानकारी जो हमारे आज विशेषज्ञ स्टूडियो में आए मेहमान हमारे आप तीनों ने दी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां जब बात कही जाती है कि जैविक बाजार और संभावनाएं अपार यानी एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, मुनाफा है, लाभ है सिर्फ किसानों को, और वही जानकारी आज आपने यहां पर इस कार्यक्रम के जरिए उस जानकारी को जाना। लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, आपको थोड़ा सा और कदम जो है एक कदम आगे बढ़ाना होगा और उस जो किसान हमारे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनकी श्रेणी में आना होगा जिससे ना सिर्फ हमारे किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, दोगुनी हमें करनी होगी। तो ये एक विकल्प है, साथ ही विकल्प है हमारी जो मृदा है उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए, यानी हमारी जो मृदा है उसकी सेहत का सुधार हम करेंगे, किसानों की आय भी होगी और उसके साथ साथ हमारी सेहत का भी यानी हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी अगर हम जैविक उत्पाद का सेवन करते हैं।
2: तो जी हाँ किसान साथियों, यहाँ पर हमें रुख करने की आवश्यकता है जैविक कृषि की ओर। किसान साथियों, आपने आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से जाना कैसे और किसे कहते हैं जैविक खेती। किसान साथियों, जैविक खेती के माध्यम से ना केवल हम हमारी मृदा का स्वास्थ्य सुधारते हैं बल्कि हमारा जो स्वास्थ्य है उन्हें भी हम सुधारते हैं। साथ ही जो जैविक कृषि के जो उत्पाद है उसे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इससे हमारे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान साथियों, आशा करते हैं आज के इस कार्यक्रम में आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टंट्याभील 90.8 FM के साथ। किसान साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्याभील 90.8 FM झाबुआ की आवाज, खेतीबाड़ी कार्यक्रम। किसान साथियों, एक बार पुनः खेतीबाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। किसान साथियों, रेडियो टंट्याभील 90.8 FM आपके लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुँचाने के प्रयासों में लगी हुई है। किसान साथियों, हमारा यह हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो किसान है उसकी आजीविका सशक्त हो, हमारा किसान खेती में नई से नई तकनीकों को सीखे, साथ ही उन्नत कृषि कैसे कर सके आदि जानकारियों को आप तक पहुंचाने की हमारी यह पहल कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आजीविका को सशक्त बनाने की एक पहल है। किसान साथियों, हमारे पूर्वज पहले से ही कृषि करते आ रहे हैं लेकिन हमें यहाँ पर कृषि को पुनः एक नवीनतम उसमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो किसान साथियों, यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण है, हमारी प्रकृति है, वो बदलती जा रही है, प्रकृति में बदलाव आते जा रहे हैं और हमारा जो किसान है उन्होंने रासायनिकों का हमने अंधाधुंध प्रयोग के माध्यम से कहीं कहीं पर इसके काफी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पर जरूरत है हमें एक बदलाव की और परिवर्तन के साथ प्रकृति के साथ मिलकर हमें कृषि करने की आवश्यकता है। तो यही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम ध्यान में रखते हुए अच्छी से अच्छी कृषि कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान

0: साथियों, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी जो आजीविका के स्रोत हैं, जो हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उन सब बिंदुओं पर हम नज़र डालते हैं और सोचते और देखते हैं कैसे मधुमक्खी पालन के माध्यम से, मछली पालन के माध्यम से, फूलों की खेती करके, वनस्पति की खेती करके और अन्य खेती के माध्यम से भी हम कितने अच्छे मुनाफे ले सकते हैं, जो हमारा पूर्वज था वह सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए खाद्यान्न फसलों की ही खेती करता था, लेकिन आज का किसान औषधीय पौधों की हम खेती करना शुरू कर दिए हैं, साथ ही हमने मत्स्य पालन शुरू किया है, कुक्कुट पालन शुरू किया है और भी अन्य खेती के बहुत सारे ऐसे साधन है जिनके मदद से हमने हमारी खेती में एक नए बदलाव को महसूस किया है। तो किसान साथियों, हमारा रेडियो टांडिया भील 90.8 FM का यही प्रयास रहा है कि हमारा किसान है वो भिन्न भिन्न और उन्नत कृषि करे और हमारी अपनी कृषि में नए बदलावों को करे, नए बदलावों को देखे, सीखे और अपने साथी किसान साथियों को भी बताए और हम हमारे एक्सपर्ट की राय से भी हमारी कृषि में एक उन्नति ला सके, एक नवीनता ला सके। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहूं बातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM। किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मुर्गी पालन को लेकर और देसी गाय की किस्मों को लेकर, हमें कैसे इनका रखरखाव करना है, क्या इनके लिए कैसा प्रबंधन करना है, साथ ही हमें किन किन बातों में इनका ध्यान रखना है और कैसे हम इसमें इनका ख्याल रख के हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सके। तो आइए शुरू करते हैं।
1: जैसे बात करते हैं अधिराज जी, अब जैसे कि हम देसी गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम एक आम किसान, एक पशुपालक की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये क्या है?
2: देखिए, ये हम बताएंगे कि देसी नस्ल जो हम बोलते हैं, पहले क्रॉस ब्रीडिंग करके विदेशी नस्ल को यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था, पर अभी हमने ये देखा है कि देसी नस्ल भी हमारे उतने ही अच्छे दूध दे रहे हैं, उनके गुणवत्ता भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए भारत सरकार का ये योजना है कि कैसे देसी नस्ल का संवर्धन किया जाए और उसका कैसे भी डेवलपमेंट किया जा सके, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट ये दोनों का किया जा सके, इसलिए ये किया जाता है। इनको अगर देखेंगे कम लागत में इनसे ज़्यादा हमें फायदा मिल सकता है, जो कि भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई गई है, 2014 से चल रही है, जिसको हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताते हैं। उस योजना के तहत देसी नस्ल का संवर्धन किसानों को कैसे पहुंच सके, ये योजना हम चला रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, एक समय था जब हम क्रॉस ब्रीड का काफी हमारे जो किसान थे, पशुपालक थे, डेयरी से जुड़े जो हमारे पशुपालक थे, उनमें क्रेज रहता था, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रही है, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती की ओर हम रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में देसी गायों की भूमिका या फिर कहें उनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
0: इसी के साथ किसान साथियों, यहां पर डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर और जानेंगे क्या है महत्वपूर्ण बिंदु जिन पे हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिन पे हमें काम करने की आवश्यकता है और उनकी मदद से हम कैसे हमारी आय में वृद्धि कर सकते हैं, हमारी कृषि को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर इस रिपोर्ट पर।
3: पशुओं को किसानों का धन माना जाता है और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी देसी नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की दिशा में लगातार अहम कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन और मांग में संतुलन के लिए भी काफी कोशिशें की जा रही हैं। व्यवसायिक फार्म प्रबंधन और बढ़िया पोषाहार के जरिए भारत में देसी नस्लों की उत्पादकता में बढ़ोतरी करने की काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 2014 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। इस मिशन के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम को केंद्र में रखा गया है। इसके तहत स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य दुधारू पशुओं के स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है। योजना के जरिए दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। साहिवाल, राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए बाकी नस्लों को उन्नत बनाने का काम भी किया जा रहा है।
1: लोगों के लिए काम कर रही है, हमारे पशुपालक इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और देसी गाय संरक्षण और संवर्धन को और गति दी जा रही है। चलिए बात करते हैं आज का जो हमारा दूसरा विषय है, यानी मुर्गी पालन। डॉक्टर पंकज, मुर्गी पालन की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे मुझे समझ आता है और जैसे एक्सपर्ट से बात हुई मेरी, तो बीते इन दो सालों में कोरोना काल में काफी इससे सेटबैक रहा, मतलब काफी नुकसान हुआ मुर्गी पालकों को। अभी मौजूदा स्थिति क्या है?
4: जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वो एक बहुत नाजुक व्यवसाय है, और जैसा कि आपने कहा और सत्य भी है कि विगत कोरोना काल में शुरुआती तौर पे इस मुर्गी को ही कोरोना संक्रमण फैलने का कारण मान लिया गया था, जो तथा कदापि उचित नहीं था और ना तथ्यों से भरा हुआ था। सब तथ्यों से परे भ्रामक प्रचार के कारण जो हमारा मुर्गी का उद्योग था, जो मुर्गी पालन का उद्योग था, उसको काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा। और लगभग 2020 की अगर हम बात करें तो मार्च से लेकर के और जुलाई तक के बीच में जो एस्टिमेटेड आंकड़े हमें बताते हैं, लगभग 25,000 करोड़ का भारतीय जो हमारा मुर्गी पालन का व्यवसाय था उसको नुकसान हुआ था। धीरे धीरे जब लोगों में समझ बढ़ी और उनको पता चला कि ये एक पौष्टिक और संतुलित प्रोटीन का सोर्स है और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता जी, है जी, जी। तो अगले 3 महीनों में इस उत्पाद की खपत अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा बढ़ी, लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और उसके परिणाम भी हमको देखने को मिले कि लोग तेजी से स्वस्थ होते गए और अपना पुराना जो विगर था उसको उन्होंने पुनः प्राप्त किया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारत में भी मुर्गी पालन जो है काफी एडवांस स्टेज पे है। अगर आप पुराने 70 के दशक की बात करें तो हम इस मुर्गी को पिछवाड़े में पाले जाने वाले एक बर्ड के रूप में जानते थे, जिससे कुछ अंडों की प्राप्ति होती थी। 80 के दशक में हमने ये जानना प्रारंभ किया कि एक और प्रजाति मुर्गी की विकसित हुई जिसे ब्रॉयलर के नाम से जानते हैं और ये मांस उत्पादन की दृष्टि से पाली गई। और उसके बाद 90 का दशक आते आते धीरे धीरे इसके प्रसंस्करण और इसके प्रोसेसिंग पर भी विचार किया गया, और अब जो हमारा एरा चल रहा है वो एक क्वालिटी एग और मीट को डिलीवर करने का है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो वो 70 के दशक से आज की अगर हम तुलना करते हैं तो जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है कई सैकड़ों गुना बढ़ा है। वैश्विक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो भारत का अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 3रा स्थान है। जो प्रथम स्थान है वो चाइना का है, जो दूसरा स्थान है वो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और भारत में भी अगर आज की तारीख पे हम देखें तो लगभग जो अंडे का उत्पादन है वो 122 बिलियन अंडा है, जो लगभग जो दूसरा स्थान है विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके बहुत करीब है। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आने वाले समय में हम इस दूसरे स्थान को प्राप्त कर लें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर पंकज कि ये बहुत संवेदनशील है और इसीलिए हमारे जो मुर्गी पालक हैं उन्हें बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। जैसे चेंज ऑफ वेदर होता है या फिर कोई इन्फेक्शन अगर एक मुर्गी में दिखाई दिया तो बहुत जल्दी उसे कदम उठाने की जरूरत होती है। टीकाकरण को कई बार लेकर के हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो उतने संजीदा नहीं रहते, उतना ध्यान नहीं देते, उससे भी बहुत तरह के नुकसान हो जाते हैं। तो जैसे कि हमें डॉक्टर पंकज बता रहे हैं कि जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही सुखद है और इसमें लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं और आने वाले समय में हम बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र में। फिलहाल देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
3: अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो ये एक मुनाफे का व्यवसाय साबित होता है। मुर्गी पालन करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाएं तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताजी हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने की जगह को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दें और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दें। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दें उसे हर दो दिन के अंतराल में साफ करें। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुएं, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा।
0: किसान साथियों, अभी आपने एक सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी को लिया है, कैसे हमें मुर्गी पालन के जो मुर्गी पालन करना चाहता है जो किसान, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें थोड़ा सा खुले में उन्हें रखना चाहिए, साथ ही उनके लिए जो रात में बल्ब की सुविधा होना चाहिए, उनके लिए भरपूर पानी की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को मुर्गी पालन से जुड़ी हुई और गाय से जुड़ी हुई।
1: अधिराज, जैसे कि हम देसी गायों के संवर्धन और संरक्षण की बात कर रहे हैं, दरअसल इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझे और इसमें हमारे किसान किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें किस तरह का इससे लाभ भी होगा, ये भी बताएं।
2: देखिए, ये बता सकते हैं कि अभी भारत में जो ब्रीड रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो देसी नस्ल अगर गायों का हम देखेंगे तो लगभग 50 देसी नस्ल गायों के हैं और 17 देसी नस्ल जो भैंसों के हैं। तो इसमें हम देखेंगे, अगर दूध की बात करते हैं, अगर गाय जो किसान भाई पालन करना चाहते हैं, तो देसी नस्ल जैसे गिर है, साहिवाल है, रेड सिंधी है, इस तरीके के जो नस्ल हैं ये अच्छे दूध देते हैं और डिजीज रेजिस्टेंस भी ये है, जो कि उनके कम उनके रोग लगते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे संकर जाति हैं या विदेशी नस्ल के हैं। तो उससे क्योंकि ये हमारे और हीट टॉलरेंट भी हैं, जो कि हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं और कम लागत में अच्छी तरह इसका दूध भी उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है और गुणवत्ता भी इस दूध का भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टडीज में
1: और ये भी इसमें बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, पोषक तत्वों से भरपूर है देसी दूध, देसी गाय का दूध। और अब देखिए, इसका बाजार भी काफी विस्तार लेता जा रहा है कि उपभोक्ता भी मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार है, तो किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए बहुत अच्छा बाजार खुल रहा है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं।
2: जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हम आपको बताना चाहते हैं, भारत सरकार की तरफ से ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो चलाई गई है, 2019 से शुरू गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी से उसका उद्घाटन किया गया था और इसके तहत हमने लगभग 600 जिले लिए थे देश के, जहां पे ये जो आप बोल रहे हैं देसी नस्ल के गाय का जो सीमेन होता है उसको उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि निःशुल्क किया जाता है भारत सरकार की तरफ से, जो कि हमारे AI टेक्नीशियंस हैं, वो आपके घर पहुंचेंगे, कहीं पे भी होता है आप निकटतम।
1: जी, लेकिन डॉक्टर अधिराज, इनका सवाल था वो यही कि अच्छा वीर्य मिले कहां से जो देसी बछड़े का हो, तो इसके लिए कहां संपर्क करें। कई बार जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पशुपालकों को भी कैसे पता चले कि हाँ वो जो चाहते हैं, जो करना चाह रहे वही है।
2: देखिए, सारे राज्यों में ये हमारे जो सीमेन स्टेशंस हैं, सीमेन स्टेशन से अच्छी देसी नस्ल के जो सीमेन बनते हैं, तो वो सीमेन सारे राज्यों को सप्लाई किया जाता है और सारे राज्यों का निकटतम पशु चिकित्सालय जो है वहां से संपर्क कीजिए और जो AI टेक्नीशियन है जो आपके घर में आके कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उनसे संपर्क कीजिए और जो नस्ल के आपको चाहिए वहां पे अवेलेबल किया गया है तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। और बेसिकली हम बताना चाहते हैं कि रीजन वाइज भी हमने कुछ किया है, जो कि अपने स्टेट का जो ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से कोई कोई स्टेट अपने जो देसी नस्ल चाहिए उनके राज्यों के लिए, जो उनके राज्यों के लिए सही हो सकता है, उस हिसाब से किया गया है।
0: जी हाँ, किसान भाइयों, अगर आप में से कोई किसान साथी देसी गायों का पालन करना चाहता है कि वो गर्भाशय कराए, तो अपने पास के केवी की केंद्र में हम संपर्क कर सकते हैं और ये भी अभी हमें मिल सकता है। अभी इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका शुभारंभ कर चुके हैं। हमारे देसी गाय का जो दूध हो सकता है कि थोड़ा कम जरूर देती है, लेकिन उसमें जो गुण है वो काफी उच्च गुण है उनमें। तो किसान साथियों, हमारे में से काफी किसान साथी देसी गाय का घी है, देसी गाय का दूध है, उसकी महत्वता को जानते हैं, समझते हैं और इसे पालते भी है। तो यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारी देसी गाय का घी तुलनात्मक बाकी घीयों की तुलना में काफ़ी महंगा मिलता है, और अधिकतर तो ये मिलना अभी दुर्लभ हो चुका है क्योंकि अधिकतर लोग जर्सी गाय ही रखते हैं, लेकिन देसी गाय का घी जो होता है काफ़ी गुणकारी होता है, ये बात हमारा किसान अच्छे से जानता है और ये काफ़ी दुर्लभ है। साथ ही अगर हम बात करें हमारे देसी मुर्गियों की, तो देसी मुर्गी का अंडा भी काफ़ी गुणकारी माना जाता है और यह भी काफ़ी दुर्लभ होता जा रहा है। किसान साथियों, यहाँ पर हम आइए लेते हैं एक्सपर्ट से राय कि अगर कोई देसी मुर्गी का पालन करना चाहता है कोई किसान साथी, तो कैसे कर सकता है। हाँ, हमें हमारे पास की किसान साथियों से ये मिल जाता है, लेकिन क्या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या अन्य संस्थाओं पर क्या इसकी उपलब्धता है, या इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए जानते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की राय।
4: मुर्गी पालन की लगभग सारे ही क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। अगर विस्तृत दृष्टि से देखें तो मुर्गी पालन दो प्रकार का होता है, एक वो जो हम घर के पिछवाड़े पे पालते हैं जिसको हम कहते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री, और दूसरा जो बहुत एडवांस स्टेज पे हम मुर्गी को पालते हैं और आजकल वो उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग लेते हैं। प्रयास ये करना चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप कम संख्या में मुर्गी को पहले पालने का प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत संसाधन आपको कितने आवश्यक हैं, उन संसाधनों के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त करें। अगर मीडियम स्तर पर या बीच वाले स्तर पर आप इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो आपको खासकर धन के क्या स्रोत होंगे और आपके पास क्या संसाधन हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना चाहिए, और फिर नस्ल का चयन करना चाहिए कि आप अंडे की मुर्गी पालना चाहते हैं, अंडा देने वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मांस उत्पादन वाली मुर्गी पालना चाहते हैं, या मुर्गियों की अन्य नस्लें जो इस देश में उपलब्ध हैं उनको पालना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास जापानी बटेर भी है, हमारे पास चीनी मुर्गा या गिनी फाउल भी है, हमारे पास टर्की भी है, तो आप किस प्रकार की मुर्गी पालना चाहते हैं वो भी आपको निर्धारित करना होगा। और संसाधनों के जो आपके पास उपलब्ध हैं, आपके पास धन की उपलब्धता है, उनके आधार पर सामान्यतया विशेषज्ञों की यह सलाह होती है कि आप पहले छोटे स्तर से इस कार्य को प्रारंभ करें और जैसे जैसे इस कार्य में आप निपुण होते जाएं आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते जाएं और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं। तो ये पूर्णतः आपका चयन होगा। जहां तक आप थोड़ा बैकयार्ड से और मीडियम स्केल से प्रारंभ करेंगे तो उचित होगा। अंडा देने वाली अगर मुर्गी पालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको व्यवस्था करनी होगी, उसकी व्यवस्थाएं अलग हैं, और जो मांस उत्पादन वाली मुर्गी है ब्रॉयलर, उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं। पर ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके जो विचार है वो क्या है, आपके संसाधन क्या हैं, और आपके जो धन का या पूंजी का स्रोत है वो क्या है, और उसके साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो ये भी होता है कि आपका जब उत्पाद बाजार में जाने के लिए तैयार होगा तो उसके विपणन की व्यवस्था क्या है, ताकि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति करें कि कम से कम लागत से ज़्यादा मुनाफा उठा सकें और उसके अनुरूप कार्रवाई करें।
1: जी।

0: ब्रेक के बाद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान साथियों खेती बाड़ी कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को, साथ ही हमारी देसी गायों की नस्ल है उसके गुणों को। तो किसान साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को।
1: कहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हमारे कोई कुछ सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो सूरतगढ़ में हैं, जहां पे थारपारकर ब्रीड आपको अवेलेबल हो सकता है, वहां से आप संपर्क करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप निकटतम जो आपके पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, जहां पे अच्छे किसान होते हैं जो ये फार्म अच्छा खोलते हैं, वहां से भी आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत और एक योजना भी चल रहा है जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी अभी ये प्रावधान किया गया है कि जो 200 गाय या भैंस रख के, मिनिमम 200 रख के अपना फार्म खोलना चाहते हैं, उधर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से 2 करोड़ की सब्सिडी है, वो भी फार्म्स जहाँ पे एस्टेब्लिश हो गए हैं वहाँ से आप देसी नस्ल के गाय ले सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, तो अभी आप समझ चुके हैं कि कहां से आप देसी नस्ल की गाय प्राप्त कर सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: कि कौन सी नस्ल अच्छी देती है, तो अगर हम दूध की बात करें तो गिर जो कि बहुत अच्छी है उसको हम रख सकते हैं, साहिवाल एक ब्रीड है जिसको भी हम पाल सकते हैं, और इसके अलावा रेड सिंधी भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं जो कि दूध देने वाले नस्ल हैं, ये अच्छे दूध देते हैं। और इसका भी अगर आपके पास कोई भी अपने घर में गाय है तो उसको भी, उससे भी आप अपना यही ब्रीड निकाल सकते हैं। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, इस जो सीमेन अवेलेबल होता है इससे करवाइए और आपके घर में भी ये अच्छी पैदा हो सकते हैं।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: गर्भधारण नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, फिर भी हम आपको कुछ साधारण उपाय बताते हैं, वो आप देख लीजिए। पहले तो एक है उसका बॉडी वेट कितना हुआ, अगर सफिशिएंट बॉडी वेट बन गया है तो गर्भधारण कर सकता है। उसके अलावा ये भी देखना है सफिशिएंट अगर प्रोटीन का मात्रा अगर सही है उसके जो आहार में प्रोटीन का मात्रा सही है उसको आप देख सकते हैं। कुल्थी भी दे सकते हैं उसके प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के लिए। और उसके अलावा अगर देखेंगे कोई इन्फेक्शन, मुझे नहीं लगता है क्योंकि ये पहली बार आपको इसके लिए कर रहे हैं तो इसके इन्फेक्शन का चांसेस नहीं हो सकते हैं, पर फिर भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो कुछ कमियां रहते हैं जैसे ओवरी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ होगा, उसको दिखाने के लिए एक बार आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से बात कर लीजिए, वो एक बार आपके पशु का जाँच करवा लें और जाँच करने के बाद वो कुछ उपाय बता सकते हैं जो कि मेडिसिन मिलते हैं जो कि प्रॉपर उसका गर्भधारण करवा सकते हैं। इसके अलावा छोटे से कुछ भी चीजें होते हैं जैसे कि कीड़े होते हैं, जो पेट के कीड़े होते हैं, अगर कीड़े भी हैं तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो भी आप एक बार उसका फीकल सैंपल जांच करवा लें और कीड़े अगर हैं या नहीं तो प्रॉपर जांच करवा के एक बार देख लीजिए, तो मुझे लगता है ये सही हो जाएगा क्योंकि गिर नस्ल बहुत अच्छा है तो कुछ तकलीफ नहीं आना चाहिए इसके।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: सामान्यतः हमारे यहाँ जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन है भी वृहद स्तर पर देखा गया है और लोग कर भी रहे हैं, तो क्या ग्रोथ ज्यादा होगी या उसकी बढ़ोतरी ज्यादा होगी? तो शांत जी, मेरा एक आपको मशविरा है कि जो ये पक्षी है जो ब्रॉयलर है, वो ब्रॉयलर पहले जो 2 महीने में बाजार जाने के लिए तैयार होता था, अब उस वृद्धि को वो 28 दिन में प्राप्त कर लेता है, 1 किलो से 1.5 किलो हो जाता है। सो प्रतिदिन उसकी आहार व्यवस्था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इसमें उसको बहुत ही संतुलित आहार देना होता है। और खासकर जब उसमें ग्रोथ हो रही हो तो उस समय पे हमको उसको स्टार्टर राशन देना होता है। जब वो बड़ा हो चुका होता है तो और बाजार में जाने के लिए तैयार होता है तो फिनिशर राशन देना होता है। सामान्यतया इसका जो हम लोग चयन करते हैं वो पहले 4 हफ्ते स्टार्टर राशन और उसके बाद फिर हम लोग फिनिशर राशन देते हैं। इसको कई जगह पे खासकर जो नए नीति बन रही हैं, जो लोगों के नए फीडिंग शेड्यूल्स बन रहे हैं, उसके अनुसार 3-3 हफ्ते में इसको बांट दिया गया है। पहले प्रथम 2 सप्ताह हम उनको स्टार्टर राशन देते हैं और उसके बाद फिनिशर राशन प्रारंभ कर देते हैं ताकि मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि दर हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा मांस का उत्पादन हो और बाजार में जाते समय उसका वजन ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रही बात ग्रोथ प्रोमोटर की, तो आजकल अगर आप देख रहे हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर कई तरीके के होते हैं। इस स्तर पे इसको समझना बूझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारे देश में 2-3 समस्याएं इस समय चल रही हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल रेसिड्यू की प्रॉब्लम है और कई ग्रोथ प्रोमोटर हैं जो नेचुरल ग्रोथ प्रोमोटर हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु संतुलित भोजन के सबसे ज्यादा आवश्यक है और उसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर डालते हैं तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन को संतुलित रखते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर की आपको आवश्यकता होती ही नहीं है।
2: जी जी।
4: और दूसरा, अगर आप पक्षी को एक सामान्यतया स्वस्थ वातावरण में रखते हैं तो उसमें भी ग्रोथ प्रोमोटर की आवश्यकता नहीं होती है। उसको सामान्य तरीके से आप

0: पाल सकते हैं, किंतु हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आहार संतुलित नहीं होगा, आपका आहार पक्षी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगा, तो आपको पक्षी में वृद्धि दर नहीं मिलेगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी का चुनाव जो उसका जर्मप्लाज्म है वो बहुत अच्छा हो, और दूसरा उसको जो आप फीड देते हैं वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का और संतुलित हो।
1: जी बिल्कुल, और जैसे कि आपने यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर अजय की, माफ कीजिएगा डॉक्टर पंकज की, जो अगर आप संतुलित आहार देते हैं तो वैसे ही आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप मुर्गियों को संतुलित आहार दें।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
3: जरूर उपयोग करेगा देसी, देखिए देसी नस्ल की बात, हम गाय की नस्ल की बात कर रहे हैं, ये हमारे भारत के ही हैं, ये कहीं बाहर के नहीं हैं, ये हमारे एरिया के ही हैं, तो इसको हम पालन कर सकते हैं। और जरूर आपके एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप मतलब दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो गिर रख सकते हैं, साहिवाल रख सकते हैं, उसमें कुछ दुविधा नहीं होगी। इसके अलावा ये भी हम बता सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और भी योजनाएं शुरू की गई हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, जो कि IVF भी आप करवा सकते हैं अपने जो भी घर में पशु है, जो गाय है, उसका IVF आप करवा के गिर या एक साहिवाल हो या जो भी आप भैंस का भी चाहते हैं, मुर्रा चाहते हैं, जो जहां भैंस रखते हैं लोग, तो वो भी आप उसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की एक सब्सिडी भी रखी गई है, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप देसी गाय अगर आप पालना चाहते हैं या फिर डेयरी लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु के अनुकूल ही होती है तो बहुत ज्यादा इसमें समस्या नहीं होती है। अब मैं डॉक्टर पंकज आफिस बचना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आए लेकिन जो मुख्य सवाल थे उन पर अभी तक हम नहीं जा पाए हैं। तो जो नए हमारे मुर्गी पालक हैं अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपने ज्यादातर हमारे किसानों को ये बताया कि कम से शुरुआत करें, मुख्य बातें कौन कौन सी होती जिसका ध्यान रखना चाहिए।
0: देखिए, जब भी मुर्गी पालन का व्यवसाय आप अपनाना चाहें तो मुख्य मुख्य बातें हमने कर ली कि हमें सबसे पहले अपने जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद अपने संसाधनों को तलाशना चाहिए और अपने पूंजीगत व्यय जो आप करने की स्थिति में हैं उसका एक असेसमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि ये जो मुर्गी और मुर्गी से पाए जो प्राप्त होते हैं उत्पाद वो सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, उनको लंबा समय तक आप स्टोर करके अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो जैसे ही वो तैयार होते हैं उनको तुरंत मार्केट में भेजने के लिए विपणन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो शुरुआती तौर पर हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटे स्तर से इस व्यवसाय को प्रारंभ करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कुछ आगे पीछे या नफा नुकसान भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, आप दोबारा से उस व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं, और जो मात्रा प्रोडक्ट की आपके पास होती है उसकी भी विपणन व्यवस्था आप बहुत आराम से अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं हमारे देश का जो उत्पादन का स्थिति है वो काफ़ी वृहद स्तर पर हो रहा है, और पूर्व में भी हम लोगों ने इस बात पर चर्चा कर ली है कि भारत ने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है, मुर्गी और मुर्गी के उत्पाद की दृष्टि से वैश्विक स्थान भी बना लिया है, और इन सारे उत्पादों का लगभग 20-27% हमारा इस बैकयार्ड से आता है, जो हमारे घर के पिछवाड़े में मुर्गी पालन होता है उससे आता है। और इसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती यह होती है कि जब ग्रामीण परिवेश में हमारे किसान भाई इसको घर के पिछवाड़े पे एक सहयोगी धंधे के रूप में अपनाते हैं, अपने कृषि कार्यों के साथ साथ 50 या 100 मुर्गियों को पीछे रख करके उनसे इस व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, तो होता क्या है उसके जो अंडे प्राप्त होते हैं वो आपके परिवार के लिए, परिवार के इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं, आपको एक संतुलित प्रोटीन और संतुलित आहार की प्राप्ति आपको और आपके परिवार को होती है। उसके साथ साथ कभी जब आवश्यकता पड़े तो ये मुर्गी आपके लिए एक ATM का कार्य भी करती है, आप उसको रूरल मार्केट में 100-200-250 रुपए में बेच भी सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो एक इन दो उद्देश्यों के साथ साथ अगर इस व्यवसाय को आप रखते हैं तो आपको फायदा भी होता है, और धीरे धीरे जब आप इस मुर्गी पालन के व्यवसाय में परिपक्व होते जाते हैं तो इस व्यवसाय को थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में विपणन की व्यवस्था बहुत ज्यादा हमें करनी नहीं होती है, पर हाँ, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो वो है मुर्गी के एक विपणन व्यवस्था, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हमारे भारत में नहीं है। यद्यपि अब हम लोग औद्योगिक स्तर पे पहुंच गए हैं और अब बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी अभी हमारी जो मार्केटिंग की व्यवस्था है, जो विपणन की व्यवस्था है, बहुत ही प्राथमिक टाइप की है।
1: सप्लाई चेन जो है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तभी और बेहतर हमारे जो मुर्गी पालक है उन्हें लाभ होगा।
0: एग्जैक्टली, और उसके साथ साथ अब तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से पॉइंट ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी संभाल ली है। सो जितने एंसिलरी यूनिट्स हैं जो मुर्गी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनने भी काम किया है। आपने कोरोना के समय पे देखा कि अगर आपको मुर्गी की या मुर्गी के मांस की या मुर्गी के अंडे की आवश्यकता थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी ये सारी चीजें उपलब्ध थी। आप चाहते जिस समय आप चाहें उस समय पे इन उत्पादों को अपने घर पे बैठे हुए प्रोसेस्ड हों या रॉ हों आप बुलवा सकते थे। तो धीरे धीरे इसकी विपणन व्यवस्था ने एक नया आयाम लेना शुरू किया है, डिजिटल मार्केटिंग भी शुरू हुआ है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आने के बाद इसकी मार्केटिंग थोड़ी सी ईज आउट हुई है। उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक दूसरे के साथ साझेदारी भी शुरू की है। तो जिनको अगर बड़े लार्ज स्केल में मुर्गी के उत्पादों की आवश्यकता होती है, जैसे चिकन की आवश्यकता होती है या अंडों की आवश्यकता होती है, तो वो बैकवर्ड लिंकेजेस अपने डेवलप करते हैं, कुछ फार्म्स और फार्मर्स के साथ बात करते हैं, उनके जितने भी उत्पाद होता है वो डायरेक्ट लेते हैं और अपने अनुरूप उनको पैदा करवाते हैं, इससे वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, यानी धीरे धीरे जैसा कि आप बता रहे हैं कि और ऑर्गेनाइज्ड होता जा रहा है ये सेक्टर।
4: किसान साथियों, मुर्गी का व्यवसाय हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है, यह बात हमारे झाबुआ का किसान बहुत ही अच्छे से जानता है। जब भी हमारा जो किसान है, जब भी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है, वे हाट का जो हमारा दिन होता है, हाट बाजार के दिन में आते हैं और जो मुर्गी है वो अभी 300 से 400 रुपए के बीच में बिक रही है। साथ ही अगर हम मुर्गे की बात करें तो मुर्गा 700 से 1000 के बीच में ही बिकता है, और अगर हम देसी मुर्गा और कड़कनाथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा दाम मिलता है। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। साथ ही जैसे कि हम प्रारंभ में हम चर्चा कर रहे थे कि जो देसी अंडे हैं, देसी अंडे का जो अभी मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। हमें बाजार में अंडे ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन जो देसी अंडा है जिसका स्वाद अलग होता है और वो गुणकारी होता है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा किसान भाई इसमें थोड़ा सा और ध्यान लगा दे और जो हमारे घर के पीछे हम पालते हैं, हमारे घर पे ही हमारे पेड़ों पे जो मुर्गियां होती है, उकेड़ा है, उकेड़े में से वो काफ़ी अपने ज़रूरतमंद ज़रूरी कीड़ों को वो खाती है, और इस तरीके से हमारा हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये कम लागत पर होने वाली कृषि है। तो किसान साथियों, आप इसमें भी अपना रुख कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा और ज़्यादा मुनाफा इसके माध्यम से भी हम कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
3: साहिवाल भी बहुत अच्छा है। थारपारकर, देखिए थारपारकर साहिवाल अगर देखेंगे सिर्फ दूध उत्पादन के लिए रखना चाहते हैं तो साहिवाल बहुत ही अच्छा है, और थारपारकर अगर देखेंगे ये डुअल पर्पस है, मतलब इसे दूध का लाभ भी ले सकते हैं और अगर मतलब मेल काफ हो गया तो उसको आप मतलब खेती में भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीज बहुत अच्छे हैं आपके राजस्थान के लिए। और हमारा एक जो मैंने पहले भी बताया था एक कि राजस्थान में हमारा सूरतगढ़ में एक सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म है जहाँ पे थारपारकर की उपलब्धि भी हो सकती है, वहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं और कहाँ अवेलेबल है बता सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं इसकी फायदा।
1: जी बिल्कुल। साथ ही अधिराज जी बताया कि जैसे कि आपने हमें ई गोपाला ऐप के बारे में भी बताया था कार्यक्रम से पहले, हम जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि ये बहुत हमारे किसानों के लिए अच्छी सुविधा है, तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं और किस किस तरह की जानकारी या फिर सर्विसेज इस ऐप पर उपलब्ध हैं?
3: जैसे कि अभी सर ने बताया था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब सारी चीजें अवेलेबल हो रहे हैं, तो वही डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्टिवेट करने के लिए और किसानों को सुविधा मिलने के लिए ये ई गोपाला ऐप का भी लॉन्च जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था, तो ये जो हुआ था तो इसमें क्या है, आप अगर कोई अच्छे नस्ल के पशु चाहते हैं, जो गाय है या भैंस है वो भी चाहते हैं, वो वहां पे रजिस्टर्ड है, तो उसको आप खरीदारी कर सकते हैं और उसके जो किसान है उससे बात करके ये ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो सिमेन जो कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए चाहिए उस वो भी वहाँ अवेलेबल है, और कहाँ से आप ले सकते हैं वो भी सारा, और उसके पर्टिकुलर प्राइस के साथ कितना मूल्य है वो भी अवेलेबल है, किस सांड का है वो भी सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एम्ब्रियो अगर चाहते हैं, अगर कोई IVF करना चाहता है तो उसके लिए एम्ब्रियो अवेलेबिलिटी भी वहीं दिया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ें दिए गए हैं कि कोई अगर रोग आ जाता है, मतलब छोटा कंडीशन आ जाता है, उसका कैसे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उसको लगा के हम, जैसे कोई पत्ता हो या कोई फूल हो उसको लेके हम, कोई एक छोटा सा अगर बुखार आ रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज का भी वीडियोज दिया गए हैं जो जिसका फायदा कोई किसान ले सकते हैं। उसके अलावा पशुपोषण का भी वहाँ पे प्रावधान रखा गया, अगर कोई किसान उसमें रजिस्टर्ड करते हैं अपने पशु को दूध दे रहा है, 5 लीटर दूध दे रहा है या 10 लीटर दूध दे रहा है, उसके हिसाब से उसको जितना पोषण चाहिए उसका भी कैलकुलेशन वो करवा के अपने हिसाब से वो ले सकता है।
1: जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी लाभ हमारे पशुपालक ले सकते हैं, और खास तौर पर ये ई गोपाला ऐप है जिसे खुद प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, और इससे बहुत तरह की सुविधाएं आपकी बिल्कुल डोर स्टेप पर भी मिलेगी।
4: किसान साथियों, अभी आपने ई गोपाला ऐप के बारे में सुना, क्या है ई गोपाला है किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा एक मौका है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती है, हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो भी जानकारी हमें चाहिए हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही पहले हमें इन सारी चीज़ों को ढूंढने की काफ़ी दिक्कत होती थी, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके पास मिलेगा आदि चीज़ों की हमें दिक्कत होती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस ऐप का शुभारंभ किया है और ये बहुत ही अच्छी ऐप है। इसके माध्यम से हम अच्छे से अच्छी किस्म की वीर्य प्राप्त कर सकते हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को इस ऐप के माध्यम से हम ले सकते हैं।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: देखिए इसका कारण है ये फैट नहीं आ रही है जिसके वे आप जो दूध बेच रहे हैं उसका प्राइस भी कम हो रहा होगा। आप जो आहार देते हैं उसको संतुलित आहार दीजिए, जो कॉमर्शियल फीड मिलता है वो कॉमर्शियल फीड बाहर से खरीद के दीजिए, और उसके साथ आप उसको हरा चारा का भी सफिशिएंट हरा चारा दीजिए। मिनिमम उसको ये 5-6 लीटर दूध दे रहा है तो मिनिमम 25 किलो हरा चारा उसको रेगुलर चाहिए। ये देखिए दूसरा चीज़ है, आप कॉमर्शियल फीड जो मिल रहा है बाहर गाय के लिए मिल रहा है उसका अवेलेबिलिटी करवाइए। अगर हम देखते हैं कि जो पोषण हम देते हैं तो अगर वो हर 2.5 लीटर दूध के लिए 1 किलो कॉमर्शियल फीड हमें उसको देना चाहिए तो इसका एक बार देखिए। दूसरा चीज़ आपको देखना होगा कि अगर कुछ मिनरल मिक्सचर उसके फीड में डाल सकते हैं वो डालने से भी, अगर डेली 50 ग्राम अगर मिनरल मिक्सचर जो मिल रहा है बाहर कॉमर्शियली अवेलेबल है, फीड सप्लीमेंट की तरह अवेलेबल होता है, उसको भी आप डाल के उसके आहार में डालिए तो इसके हिसाब से आपका जो गाढ़ापन आ जाएगा दूध में।
1: जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर पंकज, जैसे कि मैं जानना चाह रही थी आपसे कि कौन कौन से नस्लें हैं जो सक्सेसफुल हैं, जो अलग अलग जो उद्देश्य हैं हमारे मुर्गी पालकों के उसके अनुसार जिसका चुनाव कर सकते हैं।
0: देखिए नस्लों के मामले में भारत इस समय मैं अगर कहूं कि सबसे सर्वप्रथम है और सबसे उच्च स्थान पर है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास से विभिन्न जो हमारे इको क्लाइमेटिक जोन हैं उनके हिसाब से और उत्पादन की दृष्टि से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बर्ड्स तैयार कर लिए हैं। हमारे पास अगर घर के पिछवाड़े में पाले जाने वाली मुर्गियों की करीब करीब 13 से 17 नस्लें हमारे पास उपलब्ध हैं, अलग अलग इलाकों में ये विकसित की गई हैं और उन इलाकों में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। अगर विकसित उत्पादन वाली मुर्गियों को अगर हम देखें तो अंडा देने वाली हो या ब्रॉयलर हो, उस पर भी उत्पादन की दृष्टि से उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है और हमारे पास वो सारी नस्लें जो विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो भारत में मौजूद हैं। और इनकी विपणन व्यवस्था भी देखें, इनकी उपलब्धता भी देखें, तो जो हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनीज हैं, जो हमारे यहाँ की सरकारी हैचरीज भी हैं, उसमें इनका उत्पादन अपेक्षाकृत जितना भी आवश्यकता है उस स्तर पर किया जा रहा है। और बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है कि हम थोड़े ही समय में अंडा उत्पादन करने वाले दूसरे देश बन जाएं वैश्विक स्तर पर। तो ये सारी चीज़ें इस इन बातों पे डिपेंड करती हैं कि हमारे पास चूजों की उपलब्धता है कि नहीं है, आवश्यकता के अनुरूप चूजे की मांग बढ़ती और घटती रहती है, क्योंकि आपने देखा है कि भारत हमारा जो है वो

0: क्योंकि नॉर्मल आप जो बता रहे हैं और मैं समझ पा रहा हूं, दो समस्याओं के कारण ये हो सकता है। एक कि आपने मुर्गी को प्रथम दिवस पे जो टीका लगाना होता है, जो हैचरी के स्तर पे टीका लगाना होता है, वो होता है मैरेक्स डिसीज का, जिसके कारण दोनों टांगों में पैरालिसिस होता है। उस कारण में अगर प्राथमिक स्तर पर आप देखें और एक सप्ताह दो सप्ताह के अंदर ये बीमारी हो रही है तो वो उस कारण से हो सकती है, और अगर 3 से 4 सप्ताह के अंतर पर यह बीमारी हो रही है तो वो सामान्यतया जो हमारा B2 होता है उसकी डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन B2। तो बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग करें उसके लिए, अगर उससे करेक्ट हो जाता है तो ये मानिए कि वो विटामिन के कारण है। परंतु अगर जब इसमें मृत्यु दर हो रही है या ये पक्षी अपंग हो रहा है तो इसका चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराएं और ये जानने का प्रयास करें कि ये बीमारी के कारण हो रहा है या ये किसी डेफिशिएंसी के कारण।
1: मैरेक्स के बारे में जैसे आपने बताया डॉक्टर साहब, तो उसमें भी बताते हैं कि बहुत एकदम शुरुआत में ही चूजों को टीका लगा दे।

आता है। चेन्नई हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण सिटी है, बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर है और तमिलनाडु की कैपिटल है। ऑफ कोर्स बहुत बहुत सारे लोग वहां से हैं, तो बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ ये पहला नगमा।

0: प्रीति जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत के लिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब भी आप कहाँ रहते हैं और उस जगह के बारे में क्या खास है?
1: अभी हम गुजरात में है, बड़ौदा शहर में है। बड़ौदा को बोलते हैं संस्कार नगरी
0: जी।
1: और ये पहले हुआ करता था, सयाजीराव गायकवाड़ का किंगडम हुआ करता था। तो यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं और गुजरात तो आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहीं से हैं, तो बहुत ही बढ़िया स्टेट है।
0: वेरी नाइस।
1: या
0: ओके।

0: ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, बहुत अच्छा है बड़ौदा। आप लोगों को कभी आना हो तो जरूर आइएगा घूमने के लिए।
1: जी जरूर जरूर। तो दोस्तों आइए सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ ये गीत।

0: दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।
1: प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी आप क्या करती हैं? मतलब क्या किसी प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, या क्या करती हैं आप?
2: नहीं, एक्चुअली मैं, शादी जब हुई थी मेरी तो मैं आर्मी ऑफिसर से शादी हुई, तो हम पूरे इंडिया में घूमे थे। तो हमारे लिए टीचिंग का जॉब बहुत अच्छा था, क्योंकि कहीं और जॉब ले तो बहुत मुश्किल होता था ट्रांसफर वगैरह। तो जहाँ जहाँ हम पोस्टिंग होती थी, मैं टीचिंग करती थी, प्राइमरी टीचर हूँ। तो इसके कारण बच्चों के साथ रहना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो टीचिंग हूँ। पर अभी मैं घर में हूँ, मेरा हस्बैंड रिटायर हो गए, तो हम दोनों अभी घूमते हैं और सर्विस करते हैं लोगों को। लाइक वी लाइक टू रीच आउट टू पीपल। ये है जी।
1: वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं प्रीति जी का गाया हुआ एक और गीत।

0: रेड्डी जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि गाना गाने का शौक आपको कब से हुआ? आपको कब से महसूस हुआ कि आपको संगीत में रुचि है, आपको गाना गाना चाहिए?
1: मैं हम लोगों का मेरा 4 भाई और 3 बहन, हम लोग 7 सिबलिंग्स हैं, और मैं सबसे लास्ट थी, और मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी, तो सबको सुनते सुनते मैं भी गाने लगी। मेरा सबसे पहला, मुझे याद है, मैं जब 3rd स्टैंडर्ड में थी तो मेरी मैम मुझे गाने को बोला और रोज मेरे से गवाती थी क्लास में। तब करते करते मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं गा सकती हूँ मेरी मम्मी और दीदी की सबकी तरह।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए दोस्तों, एक और गीत सुनते हैं प्रीति जी का।

0: अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको संगीत में क्या पसंद है, किस तरह के गाने आपको पसंद है, फिल्मी गाने हो या नॉन फिल्मी गाने, गजल्स, भजन, शास्त्रीय संगीत या क्या?
1: मुझे फिल्मी गाने बहुत पसंद है एंड खास करके मुझे सैड सॉन्ग इतने अच्छे नहीं लगते, आई लाइक हैप्पी सॉन्ग्स या भजन भी अच्छे लगते हैं एंड बेसिकली पॉजिटिव जो हो वैसे गाने मुझे अच्छे लगते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि गीत जो है, संगीत जो है, वो तो किसी भी व्यक्ति के मानस को, उसके मन को अच्छा करने के लिए, उसको अच्छा महसूस कराने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको और दुख में डाल दें, गमगीन कर दें। तो बहुत सुंदर। तो आइए दोस्तों एक और गीत सुनते हैं।

0: दोस्तों, जिस तरह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे भोजन की जरूरत होती है, अच्छे पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इसलिए कहा भी गया है कि लगातार अच्छे विचारों को, अच्छे संगीत को सुनते रहिए, और जब आप सुनेंगे तो उनकी अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक छवियां बनाएंगे अपने दिमाग में। तो दिमाग मेहनत करेगा, दिमाग की एक्सरसाइज होगी, व्यायाम होगा और वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, ये चीज आपको किसी और माध्यम में नहीं मिलेगी।
1: प्रीति जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
2: मुझे लता मंगेशकर, आशा, मोहम्मद रफी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और यूं कहना तो मुश्किल है क्योंकि वे आर ग्रेट सिंगर्स, और मैं कोशिश करती हूँ लता और आशा का और थोड़ा सा मेरे में आए, मेरे गायकी में। तो या
1: फिर भी किसी एक गायिका को या एक गायक को चुनिए तो सही।
2: आई लाइक लता मंगेशकर।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम लोग बस कुछ नहीं, एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं कि देखें तो सही हमें सचमुच। यूं देखा जाए तो आपने सही कहा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, दोनों में से किसी को चुनना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक चुनने की कोशिश करते हैं, वो वाली बात हुई। तो दोस्तों, आपने सुना प्रीति जी का जो पसंदीदा गायिका है वो लता मंगेशकर है, और इसी बात पर प्रीति जी का गाया हुआ एक गीत सुनते हैं।

0: बहुत बढ़िया प्रीति जी, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी पसंद का गीत कौन सा है और क्यों?
1: बाप रे, कितना मुश्किल सवाल है। मुझे तो इतने

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू, लाइन वहीं।
1: धमाका तो होना ही था।